मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है और आप सभी का इस सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण।

0: बड़ा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.31 मीटर और FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर श्रोता हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्ते अर्चना।

जब मन ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है तब जीवन में शांति, संतोष और सकारात्मकता का संचार होता है। आइए कुछ पल सांसारिक चिंताओं से दूर होकर भक्ति के मधुर रस में डूब जाएं और करते हैं प्रार्थना आराधना उस परमपिता परमात्मा की।

श्रोता आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। भक्ति वो मार्ग है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और जीवन को नई दिशा देता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करें और सुने ये अगली भक्ति रचना।

और श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न करते हैं। आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम में आपने स्वर सुने अनूप जलोटा, रूप कुमार राठौर, बेला सुलाखे, अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौर व साथी, और सीमा मिश्रा और साथियों के।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवासे पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती

राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना, अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरितमानस गान। आज के मुख्य स्वर थे भूपेंद्र सिंह और महेंद्र कपूर के। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए आप सुनिए पर्यावरण चेतना के कार्यक्रम आबोहवा में, बने पर्यावरण मित्र। इस विषय पर लघु वार्ता, वार्ताकार हैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज हम अपने घर में हर व्यक्ति को सुनागरिक बनने का संदेश देते हैं और ये कहा जाता है कि अच्छे नागरिक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं और जब समाज अच्छा होगा तो निश्चित रूप से देश भी अच्छा होगा। लेकिन ये जो हमारे संस्कार हैं, ये संस्कार अगर हम पुराने बात करें तो पुराने जमाने में हमें पर्यावरण से मित्र बनाते हुए संस्कार दिए जाते थे। आपको घर में कभी भी ये कहा जाएगा कि आप अगर खाना खाएंगे तो आप खाना नहीं छोड़ेंगे। तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि खाना जो है व्यर्थ होगा, खाना तो व्यर्थ होगा ही होगा, साथ में जिस खाने को हमने बनाया है उस खाने के बनाने में जो ऊर्जा लगी है, जो हमने गैस जलाई है, उसका अपव्यय हो रहा है। क्योंकि अगर हम कम खाना बनाएंगे तो गैस भी कम लगेगी। जब कम खाना अगर हमने बनाया है तो हमने पेड़ों को भी नुकसान कम पहुंचाया है। आपने पेड़ों से तो फल सब्जी तोड़ लिए लेकिन उनको व्यर्थ कर दिया, तो हमने पर्यावरण को क्या पहुंचाई है? हानि पहुंचाई है खाना व्यर्थ कर। आपने देखा होगा कि आजकल हम जब शादी विवाह में जाते हैं, क्योंकि आजकल खाने की प्रवृत्ति ऐसी है कि हम खुद लेते हैं और खुद खाते हैं, तो हम सोचते हैं यार इतनी भीड़ है, इतनी धक्कम पेल होगी, उसे एक बार में एक प्लेट में बहुत सारा खाना डाल लेते हैं, चाहे वो हमसे खाया गया चाहे नहीं खाया गया। अंत में हम उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो उस शादी समारोह के समापन के बाद आप देखेंगे कि सारा जो है खाद्य सामग्री कचरा पात्र में पड़ी हुई होगी, साथ ही साथ खाद्य सामग्री के साथ साथ जो डिस्पोजेबल कप ग्लास काम में लिए जाते हैं वो भी होंगे। को जो है क्या सिद्ध करते हैं कि हम पर्यावरण के शत्रु हैं, जाने अनजाने हम पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। तो श्रोताओं, हमें आज इस बात को सोचना चाहिए कि

पर्यावरण मित्र बनने का प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमेशा आप पर निगरानी रख रही है। आप ये सोचें कि आप प्रकृति से सब कुछ लेते जा रहे हैं, बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और प्रकृति कोई विरोध नहीं करेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। आजकल जो सुनामी आ रहे हैं, जो तूफान आ रहे हैं, जो तापक्रम घट रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि जो है प्रकृति ने अपना विकराल रूप हमें दिखाना शुरू कर दिया है। तो अगर आज भी हम नहीं चेते कि हमने अपनी प्रकृति को, पर्यावरण को शत्रु

0: प्रकृति ने अपना विकराल रूप हमें दिखाना शुरू कर दिया है। तो अगर आज भी हम नहीं चेते कि हमने अपनी प्रकृति को, पर्यावरण को शत्रु बना लिया है, हमें वापस उसका मित्र बनने की जरूरत है, तो जो है आने वाली पीढ़ियां इसका इतना नुकसान अगर उठा सकती हैं, इसकी कल्पना हमारे से नहीं की जा सकती। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे छोटे छोटे काम इस तरह के हों जो कि हमको पर्यावरण मित्र बनाए। उदाहरण के तौर पर आप क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर, ये कर सकते हैं कि हम बाजार जाते हैं, हम बाजार गए, बाजार से जाते ही हम कोई भी सामान लेते हैं, सब्जी लेते हैं, उसे कहते हैं लाओ भाई थैली दो, और थैली अगर वो नहीं देगा तो हम कहेंगे हम कैसे ले जाएंगे सामान। लेकिन अगर आप अपने घर में दादी या अपनी नानी से बातचीत करें तो वो बताएंगे कि हम पुराने जमाने में कपड़े की थैली लेके जाते थे, अपना थैला खुद लेके जाते थे, उसमें सामान लेकर आते थे, और बाद में लाके उस जो थैला है उसको गंदा हो जाता था तो उसको धो लेते थे, तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब हम क्या हो गए, पर्यावरण के शत्रु हो रहे हैं, मित्रता का भाव तो हमें खत्म हो गया है। तो मित्रता का भाव जब खत्म हो गया तो हम प्लास्टिक की थैली लाते हैं, काम में लिए और उसको उड़ा दी, उड़ाई इस तरीके से कि हमने डस्टबिन में डाल दी। सुबह कचरा बीनने वाला आया या हमने कचरे में डाली तो वो थैली जो है पानी में बहती हुई कहाँ पहुंच जाएगी, समुद्र में पहुंच जाएगी। तो जब समुद्र में पहुंचेगी तब तक उसमें बहुत सारा कचरा चिपक जाएगा, तो समुद्री जीव जो है उसको खाद्य पदार्थ समझकर क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, और वो उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो इस तरह से हम जाने अनजाने खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचाते हैं, और खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण को हानि भी पहुंचाते हैं। तो हम अपने स्तर पर वापस जो है जागे और अपने स्तर पर प्रयास करें, जैसे कि घरों में क्या लगाएं, आजकल फ्लैट्स में हम रहते हैं या फ्लैट्स में नहीं भी रहते, मकान में भी रह रहे हैं, तो हम सब पूरा घर सीमेंटेड करा देते हैं। तो यहाँ पर पहले जो प्राचीन संस्कृति थी कि हमारे घर में तुलसी के पौधे पाए जाते थे जो कि वातावरण को शुद्ध तो करते ही करते थे, साथ ही साथ जो है हमें भी बीमारियों से, रोगों से बचाते थे। अखबार में आपने पढ़ा होगा कि कैंसर के रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज पुनः हम अपने संस्कारों की ओर लौटें और ऐसे प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयास अपने स्तर पर करें कि हम पर्यावरण को जो है वापस मित्र बना सकें, और साथ ही साथ जो है प्रकृति वापस से जाने कि हाँ मेरे को जो है वापस पूजनीय स्थान मिल गया है। हम आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, तो हम अपने जो है वापस संस्कारों को जोड़ें, प्रकृति को मित्र बनाएं, छोटा सा प्रयास हम करें कि हम पर्यावरण मित्र बने, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार प्रकृति के पास देने को जो है सब कुछ है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति कर सकती है, लेकिन हमारे लालच के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं है। तो आइए आज संकल्प करें कि हम पर्यावरण मित्र बनेंगे और पर्यावरण को सुधारेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव से लघु वार्ता, विषय था बने पर्यावरण मित्र, कार्यक्रम आबोहवा में।

श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको जानकारी देते हैं हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, और शुरुआत करते हैं इस सभा के कार्यक्रमों के साथ। सुबह 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पेट संबंधी रोगों के कारण और उपचार, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर संदीप गोयल। सुबह 7 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम नमस्कार कोटा लेकर हाजिर होंगे। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर आर एस गोगावत से भेंट वार्ता सुनिएगा और विषय रहेगा योगाभ्यास के लाभ। साथ ही साथ आपके लिए शहर की गतिविधियां होंगी, प्रेरक विचार और चर्चा के विषय रहेंगे। फिल्म संगीत 7:30 पर लेकर हाजिर होंगे, और आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीर्षक गीत। आज का शीर्षक जादू। बहनों का कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:30 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी संयुक्त परिवार के लाभ, इस विषय पर। साथ ही साथ डॉक्टर तिथि जैन से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा, स्पीच थेरेपी उसका रहेगा।

और श्रोता सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपको सुनवाएंगे। उसके बाद पुनः आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। हमारे केंद्र से शाम 5 बजे प्रसारित होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का संवाद नेत्रदान महादान रंगीलो राजस्थान। इस सेगमेंट में आज आपको जानकारी देंगे सांगानेरी और बगरू प्रिंट के बारे में, और साथ ही साथ डॉक्टर कुलवंत गौड़ से की गई भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे। आपकी आंखें किसी और की उम्मीद बन सकती है, ये रहेगा भेंट वार्ता का विषय। और भी होंगी बहुत सारी जानकारी भरी बातें, रोजगार सूचनाएं भी आपको देंगे। फिल्म संगीत की बात करें श्रोताओं, तो शाम 6:05 पर, रात 8 बजे चित्रपट संगीत, और रात 9 बजे फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। और वो कार्यक्रम होगा आज के कलाकार पर आधारित, आज के कलाकार होंगे मीका सिंह। और इस बीच किसान भाई सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे से। आज का ये कार्यक्रम होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। डॉक्टर नाथूलाल मीणा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। प्रसारण के दौरान खरीफ फसलों को कीट रोगों से बचाव कैसे करें, ये रहेगा आज की चर्चा का विषय। और सभा के अंत में रात 11:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की कड़ी संख्या 10। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.31 मीटर, एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: रच्य पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमंत्री जेम्स मायापे त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसर च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्याय शुभकामनाः अयच्छताम्। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्याः उपवेशनमेकम् अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते, यत्र अस्याः संयुत्याः प्रशासनस्य द्वादश वर्षपूर्त्यवसरे तथा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः दीर्घसमयपर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुम् उपलक्ष्ये उत्सवः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं भाजपा दलस्य शीर्षनेतृत्वं च समेत्य संयुत्याः सर्वे घटकाः उपवेशने भागं ग्रहीष्यन्ति इति आशास्यते। एतस्मिन् उपवेशने अनया संयुत्या शासितानां सर्वेषां द्वाविंशति राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्यमन्त्रिणम् उपमुख्यमन्त्रिणं च समेत्य सर्वेषां घटकानां नेतारः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित आततिपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता तथा कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहिताक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं चिन्तां न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरपि आह्वानम् अकरोत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य बुल्गेरिया फिनलैंड देशयो द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् डॉ जयशंकरः बुल्गेरिया देशस्य स्वीय यात्रावधौ तत्रत्य नेतृत्वेन सह मेलनं करिष्यति तथा स्व समकक्षेण सह चर्चां विधास्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आपने ट्यून किया है FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज। और साथ ही साथ श्रोता हमारा प्रसारण दूर दराज सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार कोठा।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है नमस्कार कोटा। और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी साथी सीमा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक प्रेरक विचार के साथ। गौरतलब है कि मुश्किलें और असफलताएं देखकर कई लोग बीच रास्ते में हिम्मत छोड़ देते हैं, लेकिन मजबूत लोग जो होते हैं वो गिरकर भी दोबारा उठते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। लगातार कोशिश करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो इस बात का समाधान भी ये है कि हार पर दुखी होने की बजाय उससे हम सीखें, धैर्य रखें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। और साथियों, इस मजबूती को और बढ़ाने का एक साधन म्यूजिक भी तो है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गाना, और फिर गाने के बाद हाजिर होंगे फिर से कार्यक्रम में कुछ और बातें लेकर।

0: श्रोता सुन रहे हैं अपने दिलों की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल प्रोग्राम है नमस्कार कोटा। साथियों, कार्यक्रम नमस्कार कोटा अब शुरू हो चुका है, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता का विषय है योगाभ्यास के लाभ और वार्ताकार हैं डॉक्टर आर एस गोगावत। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश महावर।
1: श्रोताओ नमस्कार। श्रोताओ बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस बातचीत में। आज की बातचीत जिसका विषय योग पर आधारित है और योग क्यों करना चाहिए, योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, इस विषय पर हम बात करेंगे हमारे आज के अतिथि डॉक्टर आर एस गोगावत यानी राजेंद्र सिंह गोगावत से। आपके बारे में इतना हम आपको बताएं, आप रिटायर्ड एडिशनल एसपी, 2019 में आपने अपनी सेवा से निवृत्ति ली और उसके भी सालों पहले योग को आपने अपने जीवन में अपनाया। तो श्रोताओं, मैं राजेश महावर आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस बातचीत के जरिए आपको इतना चेताना चाहूंगा कि यदि आपने अपने जीवन में योग को नहीं अपनाया तो उसे इस बातचीत के साथ अपना लीजिएगा। तो आरंभ करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का डॉक्टर आर एस गोगावत साहब का। नमस्कार
2: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत स्वागत है साहब आपका। और आपका एक छोटा सा परिचय हमने अपने श्रोता

0: श्रोताओं को दिया साहब
1: जी।
0: आपका व्यस्त जीवन रहा जब आप सेवा काल में रहे
1: जी,
0: और उस व्यस्ततम सेवा काल के जीवन के दौरान भी आपने योग को सालों पहले अपना लिया। क्या आवश्यकता आपने महसूस की कि योग को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ा?
1: फिजिकली फिट रहने के लिए और पुलिस के जॉब में व्यक्ति अनावश्यक तनाव में लाइन ऑर्डर की ड्यूटीज, एक्स्ट्रा वर्क, 24 घंटे की जिम्मेदारी, ऐसे माहौल में मेंटली फिजिकली इमोशनली फिट रहना जरूरी है, इसलिए योग सबसे बेहतरीन उपाय है
0: जी। ये आपको जानकारी मिली कि योग सबसे बेहतरीन उपाय है। वैसे हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वो अपनी कल्पना शक्ति से हमारे शब्दों को और जोड़ लें, और ये कि पुलिस के व्यस्ततम और तनाव भरे जीवन से रिटायर होने के बाद आपके चेहरे पर ये जो शांति का भाव हम देख रहे हैं, आपके व्यस्ततम सेवाकाल की जिंदगी में भी ये तनाव योग के दौरान खत्म हो गया था या रिटायरमेंट के बाद ही आपने अपने जीवन में इतनी शांति लेकर के आ पाए?
1: सर्विस के दौरान इससे बहुत बेनिफिट मिला, और रिटायरमेंट के बाद तो कंप्लीट चेंजेज आ गया इससे
0: जी,
1: स्वभाव में, वाणी में, विचार में।
0: क्या बात है।
1: AV AV
0: जी, अर्थात
1: आहार विहार आचार
0: व्यवहार। क्या बात है साहब, क्या
1: परिवर्तन
0: है, क्या बात है। तो ये जो AV AV है
1: जी,
0: ये हमारे श्रोताओं को आज एक मंत्र मिला है और योग से ही इस मंत्र को सार्थक किया जा सकता है जी। राजेंद्र सिंह गोगावत साहब, आपने जैसा कि बताया कि जीवन में तनाव को समाप्त करने के लिए आपने योग अपनाया
1: जी,
0: योग की ये जानकारी आपको कहां से मिली, कैसे मिली?
1: बहुत लंबे समय से मन में गहरी इच्छा थी कि योग सीखें, सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा था
0: जी।
1: किसी से पूछते थे तो छोटा सा एक बता देते, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि,
0: यही
1: योग है।
0: हाँ जी।
1: लेकिन इसकी गहराई में नहीं जा पाए। जब रामदेव जी लोकप्रिय हुए तो उनसे काफी प्रेरणा मिली, और 13 जिलों में पोस्टिंग रही, सब जगह योग गुरु मिल गए, उनसे मिल करके अपने आसन प्राणायाम, उनकी गलतियां ठीक करी, उनसे सीखा, और धीरे धीरे इस पथ पे चरैवेति। वेदों का एक वाक्य है कि योग के पथ पे चलते जाए, उसका अनुकरण किया।
0: आपने ये बताया कि आपने अपने योगासनों में सुधार किया, इसका अर्थ यह है कि कई लोग जब स्वयं से योग करते हैं तो उसमें कई गलतियां रह जाती होंगी और उसके दुष्प्रभाव भी होते होंगे,
1: साइड इफेक्ट भी होते हैं, प्राणायाम के भी होते हैं, आसन के भी होते हैं, इसलिए योग्य गुरु के निर्देशन में ही सीखें और करें, पारंगत होने के बाद में फिर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं
0: जी। तो ये आपने बताया, तो योग के प्रकार क्या क्या हैं? आरंभ यदि व्यक्ति करता है तो स्वयं से बिल्कुल नहीं करना चाहिए?
1: कुछ आसन जो सरल है, जैसे वृक्षासन है, ताड़ासन है, शवासन है, ये सिंपल आसन तो खुद कर सकता है, लेकिन जब वो एडवांस आसन की तरफ जाएगा तब उसको योग गुरु की जरूरत पड़ती है। षटकर्म, शरीर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। आम आदमी योग का मतलब समझता है कि कुछ आसन कर लिए, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लिया। योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें शरीर का शुद्धिकरण आम आदमी नहीं करता, केवल पार्क में बैठ के देखा देखी योग करता है। तो देखा देखी कीनी जोग बाड़े रोग छीजे काया, तो अगर आप देखा देखी योग करते हैं तो रोग की वृद्धि होती है। शरीर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, और इसके लिए हठ योग के ग्रंथों में षटकर्म का प्रावधान है
0: जी।
1: कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, नेति दोस्ती बस्ती न्योली त्राटक कपालवाती, ये 6 मुख्य क्रियाएं, इससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, तब शरीर का सशक्तिकरण होगा, और जब सशक्तिकरण हो गया तब जीवन का निर्माण और निर्वाण व्यक्ति खुद कर सकता है, अपनी प्रतिमा खुद गढ़ सकता है, अपनी प्रतिभा खुद निखार सकता है।
0: आपने जीवन के निर्माण की बात कही, वो तो सही है, लोग समझते हैं कि हमें जीवन को निर्मित करना ही चाहिए, हर कदम जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन का निर्माण होता है, किंतु आपने एक और शब्द का प्रयोग किया, निर्वाण। अक्सर निर्वाण को लोग मृत्यु समझते हैं और उससे भय भी खाते हैं, इसके बारे में जरा खुलासा करेंगे साहब?
1: निर्वाण का बहुत गहरा अर्थ होता है। ये भ्रांति है कि निर्वाण का मतलब देह त्याग करना हो गया
0: जी,
1: एक मोक्ष शब्द भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जीते जी भी मोक्ष होती है और देह त्याग करने के बाद भी मोक्ष होती है। आप पूरी तरह से सात्विक हो गए, ये भी मोक्ष ही है। आप ईश्वर प्राणी धाना धा, आपने ईश्वर में अपने चित्त को लगा लिया, वो भी एक मोक्ष का ही स्वरूप
0: जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम योग के बारे में अन्य बातें करें, योग कितने प्रकार के हैं और हम स्वभावतः किस किस को प्राप्त कर सकते हैं, किस किस को हमें सीखना चाहिए?
1: देखिए, योग की एक बड़ी परिभाषा है, योग का मतलब मैंने पहले भी बताया।

0: था कि महर्षि पतंजलि ने इसके 8 अंग बताए, उसको कहते हैं अष्टांग योग।
1: जी
0: कुछ ऋषियों ने चतुरंग योग दिया, गोरक्षनाथ जी ने षडंग योग दिया, पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। तो इसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि।
1: जी
0: ये तो पूरी योग की डेफिनेशन हो गई।
1: जी
0: आम आदमी समझता है कि योग का मतलब है आसन, तो हम आसन को लेते हैं। स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक बैठ करके और कुछ स्थिति विशेष अपने शरीर की बना सकें, वो आसन है। तो कुछ आसन करने चाहिए, कुछ प्राणायाम करने चाहिए और समय मिले तो मेडिटेशन करना चाहिए,
1: यानी ध्यान करना चाहिए।
0: जी
1: जी ये जो आपने बताया योग, योग का अर्थ है, गणित की बात अगर हम करें तो उसका अर्थ होता है जोड़ना। हम किससे किसको जोड़ सकते हैं?
0: इस योग का भी मतलब ये है कि जोड़ना है। है और ठे का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, रई और प्राण का मिलन, चंद्रमा और सूर्य का मिलन, ये सब योगी है।
1: वाह क्या बात है। आपने ह और ठ की बात कही, कहने का अर्थ हठ योग।
0: जी
1: हठ योग, लोग ये कहते हैं कि जो हठ पूर्वक किया जाए वो हठ योग है, आपकी दृष्टि में ये क्या है?
0: ये गलत धारणा बना रखी है लोगों ने। हठ पूर्वक योग को हठ योग नहीं कहते। शिव जी ने सबसे पहले माता पार्वती को हठ योग का उपदेश दिया और तत्पश्चात 7 ऋषियों को दिया, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, अत्रि और कश्यप। इन्होंने पूरे विश्व में योग को फैलाया। हठ योग का मतलब है, ये नाथ परंपरा ने इस योग को आगे बढ़ाया है। शिव जी से प्रारंभ हुआ ये योग, आज इसमें क्रियाएं, आसन और प्राणायाम और ध्यान, ये सब मिलाकर के हठ योग बनता है।
1: इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इसे हम हठ योग कहते हैं, ना कि जबरन किसी काम को करना हठ कहलाता है।
0: हाँ, वो नहीं है।
1: जी ये एक विधि है,
0: ये विधि है, इसमें इसका बड़ा वृहद क्षेत्र है।
1: जी आम व्यक्ति योग की बात जब करता है तो वो ये कहते हैं कि हमें अपने शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना है, इसीलिए योग करना है। आप क्या मानते हैं, योग इसके लिए भी लाभकारी होता है?
0: ये इसका एक पहलू है।
1: जी
0: ये फिजिकली, इमोशनली और मेंटली तीनों क्षेत्रों पे काम करता है योग। आपका जो अंतःकरण है वो पवित्र होता है, रज और तम गुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उभार होता है।
1: क्या बात है।
0: और योग का बड़ा फायदा है, हम रामायण, गीता, वहां से हम योग को देख सकते हैं। जैसे राम ने लक्ष्मण से कहा कि पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा दृष्टाम से यौनम एकांते कंचनम दृष्टा कश्योन्य विचलितम। बताइए लक्ष्मण, जिस व्यक्ति ने अच्छा फल दिखा तोड़ने को मन करता है, अच्छा फूल दिखा तोड़ने को मन करता है, यौवन दिखा भोगने को मन करता है, एकांत में धन दिखा लूटने को मन करता है,
1: जी
0: इसका क्या उपाय है, आम व्यक्ति इससे कैसे उभरे? तब लक्ष्मण ने बताया कि उभाव्यो संभूतो, ऐसा पिता जो आत्मा से पवित्र हो,
1: जी
0: और ऐसी माता जो पतिव्रता हो, उनसे जो संतान उत्पन्न होगी और जो श्री राम और योग को अपनाएगा वो इन कंचन, कामनी, कीर्ति के प्रलोभनों से उभर जाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लगता है कि आपके इस वाणी को फिर से हम सुने, किंतु हमारे श्रोता समझ गए होंगे। अब आपने जो बात बताई कि ये जो तत्व हैं, व्यक्ति लालायित रहता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए, किंतु योग के बाद में उन्हें ये पता लगता है कि इनका इतना अस्तित्व जीवन के लिए नहीं है। जी बहुत सुंदर आपने बात कही। अब साहब, हम अपने सामान्य जन के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए अगर आपसे ये पूछना चाहें कि उन्होंने जो सुना है कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, ये क्या है?
0: देखिए, शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करनी चाहिए ताकि शरीर की जो नस नाड़ियां हैं वो एक्टिव हो जाए, अनावश्यक कोई मसल्स पुल नहीं हो। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें, उसमें रनिंग हो सकती है, रेट्रो रनिंग हो सकती है, उल्टा दौड़ना, कुछ पीटी, गर्दन, कलाई, कंधे, घुटने, पंजे, इनके मूवमेंट के बाद में कुछ आसन कर ले। अगर आपने अपनी स्पाइन के 5 मूवमेंट नित्य कर लिए तो आप 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे।
1: क्या बात है। ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य नमस्कार, जी उसमें संपूर्ण,
0: हाँ इसके संपूर्ण व्यायाम कहा गया है, क्योंकि इसमें आसन है, इसमें प्राणायाम है, इसमें ध्यान है और इसमें चक्र जागरण है, इसलिए संपूर्ण व्यायाम है।
1: क्या बात है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी भारतीय जीवन शैली में शतायु व्यक्ति की एक निश्चित आयु मानी जाती है, किंतु आयु में अभी जो क्षीणता आई है, क्या वो इन आसनों की कमी की वजह से हुई हम मान सकते हैं?

0: ये जीवन शैली हमारी बिगड़ गई है। हमारे डीएनए के अंदर 1,96,08,53,127 साल पुरानी सेल मेमोरी है।
1: क्या बात है साहब।
0: तो उस सेल मेमोरी में योग है, यजन है, भजन है। हम
1: हाँ
0: कैफेटेरियन फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पेस्टिसाइड मिला हुआ खाना खा रहे हैं, पूरी नींद नहीं ले पा रहे। दिनचर्या हमारी दिन भर आधा समय तो मोबाइल में लगे रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं। इन सब से हमारी हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है,
1: जी
0: खानपान और आलस दोनों की वजह से।
1: जी क्या बात है साहब। आपने जो बताया कि पुरानी जो मेमोरी है वो हमारे अंदर
0: डीएनए
1: रची
0: में है
1: डीएनए में रची बसी है,
0: जी,
1: लेकिन हम उसके विरुद्ध कार्य कर रहे
0: हाँ,
1: हैं,
0: इसलिए हम दुष्परिणाम भुगतते रहे।
1: इसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। जी एक बार फिर से अपने श्रोताओं को हम ये बता दें, डॉक्टर आर एस गोगावत साहब हमारे साथ हैं। श्रोताओं, रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं आप। ये पद हम इसलिए बता रहे हैं कि एक प्रभावशाली पद माना जाता है, और ऐसे पद पर अपनी सेवा दे चुके व्यक्ति की बातें हम सुनना ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं। और आज विषय भी बड़ा प्रभावशाली है कि हमारे जीवन में हम योग को अगर अपनाएंगे तो उसके अनेक अनेक फायदे होंगे। डॉक्टर साहब, सूर्य नमस्कार का वर्णन आपने किया, ये किन किन व्यक्ति को करना चाहिए, इसकी शुरुआत, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के जीवन में योग नहीं है, अगर वो शुरुआत करना चाहें तो क्या सूर्य नमस्कार एक समुचित योग है कि उन्हें वहीं से आरंभ करना चाहिए?
0: ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं सूर्य नमस्कार का विशेषज्ञ हूँ, मैंने इस पे पोस्टर बनाया है, मैंने कुछ इस पे यूनिट्स लिखी है जो विश्वविद्यालय के कोर्स में है, वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के।
1: क्या बात है।
0: सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। इसका हम इतिहास देखना चाहें तो गीता, रामायण, वेद और उपनिषद में कहीं भी सूर्य नमस्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना पुराणों में हुआ, ना किसी ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ। ये
1: जी
0: तो हमारी ऋषि मुनियों ने अच्छे स्वास्थ्य को सूर्य की आराधना करते हुए कैसे मेंटेन करें, और ये एक व्यायाम रस दिया। इसमें अलग अलग कालखंड में हम देखें तो 8 साल से ऊपर के बच्चे को यदि हम सूर्य नमस्कार कराते हैं
1: जी
0: तो जो आर्ष ग्रंथ है उनमें ये लिखा हुआ है कि 8 साल से ऊपर के बच्चे की पीनियल ग्लैंड का क्षय होना शुरू हो जाता है। तब पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी पूरी मनमानी करती है और वो बच्चा भावनात्मक और शारीरिक विकास में के तारतम्य को
1: खो बैठता
0: सही
1: है।
0: ढंग से बखूबी नहीं निभा पाता।
1: जी
0: कभी भावावेश में खो जाता है, कभी मोबाइल में लगा रहेगा,
1: हाँ
0: होमवर्क नहीं करेगा, कहना नहीं मानेगा, एक चेंजेज आता है बच्चे में। फिर प्यूबर्टी आती है
1: जी
0: महिलाओं में, लड़कियों में और लड़कों में, लड़की लड़की जैसे दिखने लग जाती है, लड़का हार्मोन चेंज होते हैं, आवाज़ थोड़ी चेंज होती है, थोड़ी मूछाने लग जाती है।
1: जी
0: उस समय उसके भावनात्मक विकास को मेंटेन करने के लिए 4 चीजें जितने भी हमारे श्रोता है उनसे निवेदन करूंगा कि अपने 8 साल से ऊपर के बच्चे को सांभवी मुद्रा का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, गायत्री मंत्र का उच्चारण और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, इनमें से कोई एक प्राणायाम जो बच्चा कर सके, अगर ये 4 अभ्यास आप करवाते हैं तो बच्चा अपनी क्लास में अव्वल आएगा।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: ये बच्चों के लिए, सभी पुरुषों के लिए ये एक वरदान जैसा है
1: जी
0: क्योंकि इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज है। लेकिन महिलाओं के लिए मैं जहां भी शिविर में जाता हूं उनको मोटिवेट करता हूं कि ये महावरदान है। कैसे है महावरदान? मैनार्की से लेके जो 12-13 साल की उम्र से स्टार्ट होती है और मेनोपॉज तक का सफर बड़ा आसान होता है।
1: जी
0: हर महीने जो स्पोजमेटिक डिसमेनोरिया होता है जिसको कष्टातरु कहते हैं, अनचाहा कष्ट आता है 27 दिन के साइकिल के बाद,
1: जी जी
0: वो लगभग 90% खत्म हो जाता है अगर महिला पूरे महीने विधिवत रूप से सूर्य नमस्कार करती है तो।
1: जी
0: एक लाभ। दूसरा, जो बच्चा प्लान करती है महिलाएं तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस भी 90-95% बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइनल वाल्स है, ये सब स्ट्रेंथन हो जाती है, डिलीवरी नॉर्मल होगी। फिर उनके बच्चे का क्वालिटी ऑफ द मिल्क एंड क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड क्वालिटी ऑफ द कोलोस्ट्रम एंड द क्वांटिटी ऑफ द कोलोस्ट्रम ये इंप्रूव हो जाएगी। तब जो नवजात बच्चा आएगा, कोलोस्ट्रम कहते हैं जो पीला पहला माँ का दूध होता है,
1: जी
0: ये गाय माता के भी बड़ा उपयोगी होता है और महिलाओं को भी अपने बच्चों को इसका पान अवश्य कराना चाहिए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव हो जाती है
1: जी।
0: और फिर मेनापोज के, प्री मेनापोज के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, उसमें महिला

0: कमजोरी महसूस करती है, हार्मोनल चेंजेज आते हैं और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, सीढ़ियों चढ़ने में थकान होती है, नींद कम आती है, कम खा रही है वजन बढ़ रहा है, ज़्यादा खा रही है वजन कम हो रहा है। ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, इनसे अगर रेगुलर सूर्य नमस्कार करते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। एक अरिथमिया होता है, आपकी हार्ट बीट कभी
1: जी
0: तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो कभी आपका बीपी बढ़ जाता है तो कभी डाउन हो जाता है। इन सबसे मुक्ति मिलती है अगर आप रेगुलर सूर्य नमस्कार करते हैं।
1: जी अब साहब, ये तो इतनी काम की बात आपने बताई और आपके मुख से हमारे श्रोताओं ने सुनी तो उनके लिए जरूर लाभकारी होगा। अब यूं कि जब हम जिस बात के लिए कहते हैं वो हम अपने जीवन में अगर पहले अपना लें, तब ऐसा माना जाता है कि उसका असर ज्यादा होता है।
0: जी
1: अब हम आपसे एक प्रश्न आपके व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहेंगे, आपको क्या याद आता है अपने जीवन में आप कब बीमार पड़े?
0: मैं कब बीमार हुआ है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 20-25 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ।
1: क्या बात है
0: आज भी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ
1: जी,
0: और लगभग 4 घंटे में योग प्राणायाम करता हूँ।
1: वाह
0: 67 से ऊपर हूँ।
1: जी, आपने बताया 24 घंटे में से लगभग 4 घंटे आप योग प्राणायाम करते हैं।
0: जी
1: कुछ लोग जो समय का वैसे तो समुचित प्रयोग नहीं करते, किंतु 4 घंटे योग करने को वो समय की बर्बादी भी मान सकते हैं। आप अपनी ओर से उनको क्या अपने सकारात्मक शब्द कहेंगे?
0: अगर आप व्यस्त हैं तो कम से कम 1 घंटे योगाभ्यास और प्राणायाम को दीजिए। समय है तो इसको बढ़ाइए, और समय है तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए।
1: क्योंकि आने वाले समय में जब स्वास्थ्य खराब होगा तब ये समय हमें याद आएगा जो कभी लौट
0: जी
1: कर नहीं आ सकता। जी क्या बात है साहब, आज आपकी बातें हमारे श्रोताओं को अवश्य और अवश्य ही स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करेंगी। आपने आकाशवाणी आकर अपने जीवन का ये अनमोल जो ज्ञान है वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, आपका
0: जी
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद राजेश जी।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर RS गोगावत से योगाभ्यास के लाभ, और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश महावर। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा, और हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं तापमान। अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें आज का सूर्यास्त होगा शाम 7:21 पर, और कल सूर्योदय आप देखेंगे सुबह 5:35 पर। आपके लिए लाए हैं श्रोताओं बिजली बंद से संबंधित जानकारी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शॉपिंग सेंटर क्षेत्र, फोटोमैक, IDBI बैंक के आसपास का क्षेत्र, वल्लभ नगर चौराहा, मेन रोड के आसपास का क्षेत्र, यहां बिजली बंद रहेगी सुबह 7 बजे से। यानी बिजली जा चुकी है, अब आएगी 10 बजे। और सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चश्मे की बावड़ी के पास का इलाका, उमर कॉलोनी, सैयद चौक, चंद्रघाटा, मोहरपाड़ा और बम भोला महादेव क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। समय आपको हमने बता दिया है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सुबह 9:10 पर लाइट जाएगी और 1:10 पर आएगी अक्षरधाम, जगन विहार और अक्षरधाम गली नंबर 1 के आसपास के क्षेत्र में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से 14 जून को होने वाली PTET 2026 परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, और खबर यह है कि प्रदेश में BEd कॉलेजों की सीटों की तुलना में आवेदनों की संख्या अधिक नहीं होने से पात्र अभ्यर्थियों को कॉलेज मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बार फिर से आपको बधाई। और श्रोताओं अब प्रोग्राम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रोग्राम अब समाप्ति की ओर है। एक बहुत ही प्रचलित गीत आपने सुना होगा, देश रंगीला मेरा, देश रंगीला मेरा। जी हाँ, हमारा देश भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, त्योहार, कला, संगीत और धार्मिक परंपराओं की अद्भुत विविधता देखने को मिली।

रहती है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है। फिर भी भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधे रखने वाली सबसे बड़ी शक्ति है आपसी समझ, सम्मान और सह अस्तित्व की हमारी भावना। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न संस्कृतियां साथ साथ विकसित हो रही है। इस विविधता के बावजूद लोग एक दूसरे की भावनाओं, परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, पोंगल, बैसाखी, ओणम और नवरात्रि जैसे विभिन्न पर्व पूरे देश में उत्साह और सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं। ये परंपराएं हमें सिखाती हैं कि विभिन्नताओं के बावजूद हम सब एक ही राष्ट्र परिवार के सदस्य हैं। आपसी समझ का अर्थ केवल एक दूसरे की बात सुनना नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, विचारों और जीवन शैली को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना होता है। जब लोग एक दूसरे की परंपराओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं तब सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और भाईचारा मजबूत होता है। भारतीय संविधान भी सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर इसी भावना को प्रोत्साहित करता है। आज के समय में जब पूरी दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत की अनेकता में एकता की भावना पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच हमारी आपसी समझ और सम्मान न केवल सामाजिक शांति बनाए रखता है बल्कि राष्ट्र के विकास और प्रगति का आधार भी बनता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो विविधताओं का सम्मान करे, संवाद को बढ़ावा दें और प्रेम, सहयोग तथा सद्भाव की भावना को मजबूत बनाएं।

और साथियों, प्रोग्राम में आखिर में आपसे चर्चा करेंगे स्वाद की, रसोई की और मसालों की। जी हाँ, भारतीय संस्कृति में खान पान का अपना अलग ही महत्व है। हमारे अलग अलग प्रदेश, अलग अलग प्रांत और अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है और उनका स्वाद ही अनूठा और अलग अलग है। मसलन गुजरात का खान पान मीठा और साउथ इंडियन खाना इडली डोसा रसम सांभर यानी खट्टा और चटपटा खाना। तो श्रोताओ, मोटी बात यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति में मसालों को स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी माना गया है। तो इन मसालों का समय समय पर सही उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जीरा अजवाइन पाचन को बेहतर बनाते हैं, उसी तरह दालचीनी लौंग और काली मिर्च शरीर को अनेक रोगों से बचाने में सहायक होती है। तो भारतीय रसोई में मसालों का संतुलन उपयोग भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। तो बस आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने भोजन में संतुलित मसालों का उपयोग जरूर करें। और अब प्रोग्राम बिल्कुल समाप्ति की ओर हो चुका है। घड़ी कह रही है कि सीमा, अब इस प्रोग्राम से अनुमति लो अपने श्रोताओं से, क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर भी तो हाजिर होना है। तो चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीणा जी ने और प्रस्तुति सहयोग राजेश महावर जी की। अब अनुमति दीजिए अपनी साथी सीमा को। नमस्कार कोटा।

श्रोता अभी सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का और श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है जादू। तो चलिए समय को बिना गवाए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

जी हाँ, गाने की शुरुआत से आप समझ चुके हैं कि गाना कौन सा है। आप बताते हैं, ये गीत हमने लिया है फिल्म धर्मात्मा से, आवाज किशोर कुमार की, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, शब्द लिखे इंदीवर ने।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। आज सुन रहे हैं शीर्षक गीत, आज का शीर्षक जादू। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम डर, संगीत शिव हरिका और गीत लिखा आनंद बख्शी ने। जादू

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी पेट संबंधी रोगों के कारण और उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर संदीप गोयल। यदि आप इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें। कोटा का एसटीडी कोड लगाएं 0744 और हमारे स्टूडियो का नंबर 2941142। तो जरूर सुनिएगा सुबह 8:15 से 9 बजे तक कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
2: बड़ी बहू
3: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
4: और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी आपके नाम।
7: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो
6: क्या
7: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: और श्रोताओं लीजिए अब कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं।

हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म हम आपके हैं कौन से। लता मंगेशकर की आवाज है, उनका साथ दिया एसपी बाला सुब्रमण्यम ने और गीत लिखा रविंद्र रावल ने और उसे संगीत से सजाया राम लक्ष्मण ने।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर और आज का शीर्षक है जादू। श्रोताओं, जादू नाम से जितने गीत अभी आपने सुने हमारे केंद्र से और बहुत सारे हजारों गीत हैं जादू शीर्षक को लेकर, आपके मन में भी चल रहे होंगे गीत कि अब शायद ये गीत आने वाला है, तो अब आप सोचें कि आगे कौन सा गीत आने वाला है। चलिए बता ही देते हैं, कुदरत फिल्म का ये गीत हमने लिया है, आवाज लता मंगेशकर की, गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। अब आप गीत भी समझ चुके हैं शायद, चलिए सुनिए।

जितने भी हमारे श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं उनमें से कईयों के दिमाग में ये गीत आ गया होगा जब हमने नाम बताया था फिल्म का। चलिए एक और गीत आपको सुनवाएंगे, जादू उसमें शीर्षक रहेगा। उससे पहले आपको देना चाहेंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना। सुबह 8:15 से 9 बजे तक सुनिएगा कार्यक्रम आरोग्य वाणी। डॉक्टर संदीप गोयल आज हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान उपस्थित रहेंगे और जानकारी देंगे पेट संबंधी रोगों के कारण और उपचार इस विषय पर। यदि आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो प्रसारण के दौरान हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करके आप सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2491142 और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड 0744 जरूर लगाएं। तो सुनना ना भूलिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी इस सभा में सुबह 8:15 से 9 बजे तक।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोई मिल गया का ये युगल गीत। आवाजें थी अदनान सामी और अलका याग्निक की।
1: परियों को कभी किसी ने देखा तो नहीं, उनकी खूबसूरती शायद ऐसी होगी।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। मीडियम वेव 212.31 मीटर और एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक

0: देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स

0: के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा

0: 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 25,00,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1,413 किलोहर्ट्स और FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्स पर। साथ ही साथ आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यवाणी।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा। किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा, अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाए अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।
2: तो श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य वाणी शुरू हो गया है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और आज का विषय आपको बता देते हैं, आज का विषय है पेट संबंधी रोगों के कारण और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संदीप गोयल जी। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोता, स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन आज की जो भागदौड़ भरी जीवन शैली है, आज का जो हमारा खान पान है, गलत आदतें हैं, इसके कारण पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे आज हम इस कार्यक्रम में। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, ये कार्यक्रम अब से लेकर सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से जुड़ने के लिए आप हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें। कोटा का एसटीडी कोड लगाएं 0744 और उसके बाद हमारे स्टूडियो का नंबर 2491142 0744 एसटीडी कोड और उसके बाद स्टूडियो का नंबर 2491142 और फिर आप सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका एक बार पुनः स्वागत करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं हमारी चर्चा की ओर, जैसा कि आज का विषय है पेट संबंधी रोगों के कारण और उपचार। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पेट से जुड़ी सबसे आम समस्याएं कौन कौन सी है।
4: धन्यवाद। आज के जमाने में जैसे कि आपके कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया, ये गलत खान पान, हमारी जीवन शैली, ये सब एक बहुत बड़े कारण बनते जा रहे हैं पेट संबंधी समस्याओं के।
2: जी, जी, जी।
4: तो सबसे ज्यादा जो आजकल लोग अनुभव करते हैं वो करते हैं एसिडिटी का, पेट में जलन, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, बार बार शौच कर ले

0: जाना या बार बार लेटिन जाने का अनुभव करना, या फिर दिन में दो या तीन बार जाना, या फिर दो या तीन दिन में एक बार जाना, मतलब कब जो जाना या पतले दस्त हो जाना, जाना फील करते हैं, खाना मुंह में आना, खट्टी डकारे आना, इसे सामान्य भाषा में अपच या एसिडिटी कहते हैं। तो ये सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।
1: जी जी जी जी। अच्छा, पेट की बीमारियों के अब कारण आपसे जानना चाहेंगे।
0: पेट की बीमारियों के अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग, जैसे जैसे किसी को एसिडिटी है तो उसका अलग कारण होता है, किसी को मल में खून आता है तो उसका अलग कारण होता है।
1: जी।
0: तो सबसे पहले जैसे आपने बताया कि गलत खान पान और जीवन शैली तो उसका कारण है ही, इसके अलावा जो बुरी आदतें होती है, जैसे किसी को शराब पीने की लत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है।
1: डॉक्टर साहब, हम एक एक समस्या के साथ एक एक कारण पे चलते हैं। सबसे पहले गैस की आजकल की बहुत ज्यादा समस्या छोटे छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बच्चों में भी देखी जाती है, 8 से 9 महीने के जो बच्चे हैं उनके पेट में भी गैस है, और बड़े बूढ़ों को भी ये परेशानी हो रही जो कि आमतौर पर पहले नहीं देखी जाती थी। तो गैस के कारण पहले आप बताएं।
0: गैस या सारा बात में बोलते हैं पेट का फूलना या फाट का आना, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारा चलना फिरने की कमी होना, शारीरिक गतिविधि की कमी होना। इसके कारण जब हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि गेहूं, मैदा, सूजी, इनकी मात्रा ज्यादा होती है, तो जब ये हमारे आंतों में पचाए जाते हैं तो इनके द्वारा गैस रिलीज होती है। अधिकतर ये गैस अवशोषित हो जाती है या फिर मल के द्वारा निकल जाती है। परंतु यदि ये नहीं, खाने में प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, मीठा ज्यादा है, तो खाने में गैस ज्यादा बनती है।
1: अच्छा।
0: आजकल की जो जीवन शैली हो गई है, जंक फूड हो गया है, या फिर हम खाने में प्रोटीन कम खाते हैं, सब्जियां कम खाते हैं, लोग दालें कम खाते हैं, ज्यादातर वो रोटी से पेट भरना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को गैस ज्यादा बनती है, तो फिर वो पेट का खाना खाने के बाद पेट का फूलना महसूस करते हैं। ये दूसरा गैस का बहुत बड़ा कारण होता है कि आप बहुत लंबे समय तक भूखे रहें।
1: अच्छा।
0: और अचानक फिर एक साथ बहुत सारा खाना खा लें, जैसे किसी ने व्रत रखा है और शाम के टाइम अचानक फिर वो तीन समय का खाना एक बार ही खाते हैं, या फिर खाना व्रत के टाइम फिर पूड़ी वगैरह इस तरह का खाना बनता है, आलू, इस सब इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, स्टार्च होता है, तो ये जब पचता है तो फिर गैस बनती है इससे।
1: और डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि आजकल का जो हमारा खान पान है उसका बेस जो है वो मैदा और गेहूं का आटा, ये ज्यादा उपयोग में आ रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि इनके पचने के बाद शरीर एक गैस बनाता है अंदर से, और वो क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ गई है इस वजह से गैस की भी मात्रा बढ़ रही है और उससे लोगों को परेशानी हो रही है। जी, अब आते हैं एसिडिटी पर।
0: एसिडिटी से बोलते हैं कि सीने में जलन होना, खट्टी डकारे आना, मुंह में पानी आना, या पेट में जलन होना। अगर सीने में जलन होती है तो उसका कारण होता है जो पेट से जो एसिड बनता है, एसिड हमारे शरीर का एक जरूरी पार्ट है जो हमारे कीटाणुओं को मारता है, जो हम खाने के साथ अंदर निगल लेते हैं, खाने को पचाने में मदद करता है, परंतु यही एसिड अगदी वापस ऊपर भोजन नली की तरफ प्रवाहित होता है तो हम सीने में जलन का महसूस करते हैं। इसका कारण होता है यदि बहुत लंबे समय तक आप भूखे रहें, एक साथ बहुत सारा खाना खा लें, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, या फिर बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाना, तेली वाला खाना खाना, जिससे जो भोजन नली का वॉल्व है ये ढीला हो जाता है और जो तेजाब होता है एसिड वो ऊपर की तरफ प्रभावित होता है नीचे जाने की बजाय, तो भोजन नली की अंदरूनी सतह को ये नष्ट करता है और हम जलन का महसूस करते हैं। दूसरा कारण पेट में जलन होती है तो इसका कारण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, कीटाणु, जो भारत देश में 70 से 80% लोगों के शरीर में पाया जाता है।
1: अच्छा।
0: यह कीटाणु जब सक्रिय हो जाता है तो हमारे आमाशय की अंदरूनी परत को नष्ट कर देता है, इसकी वजह से ये एसिड जो हमारा तेजाब बनता है हमारे खुद के शरीर को ही हम महसूस करने लगते हैं, हमारे खुद के शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है और अल्सर बनाता है। तो दूसरा नंबर कारण है इसका एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जो कि पेट में जलन करता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम बात कर ही रहे हैं खान पान की, तो क्या अनियमित खान पान और जंक फूड पेट की समस्याओं को बढ़ाता है? ये तो जाहिर सी बात है, कैसे, इसका क्या रहता है? अनियमित खान पान और जंक फूड दोनों को जोड़ते हुए आप इसकी समस्या जो बनती है उसका कारण बताएं।
0: अनियमित और खान पान और जंक फूड तो शरीर की हर बीमारी को पैदा करेगा।
1: एक श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं, कॉल लेने। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्कार, नाम बताए, कौन बोल रहे?
2: मैं महेश बोल रहा हूँ।
1: जी महेश जी, स्वागत है आपका।
2: और मेरे को गैस बहुत बनती है डॉक्टर साहब, और जबकि मैं बिल्कुल नियमित आहार है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं खाता, मैं बाहर का नहीं खाता, तेल चिकना कुछ नहीं खाता मैं।
0: यदि आप खाना खाने के बाद गैस का महसूस कर रहे हैं तो यदि आपको उसमें देखिए कि अभी खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होगी, मैंने जैसे बताया कि
2: देखो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में आलू राइस वगैरह कोई काम में नहीं लेता,
0: गेहूं भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही मात्रा आती है, यदि आप अत्यधिक गेहूं की मात्रा का सेवन करते हैं तो वो भी गैस है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं।

0: ऐसे दूध होता है, इससे भी बहुत ज्यादा गैस बनती है। और नंबर दो शक्कर, यदि आप दूध खाने में दूध को बंद करेंगे, शक्कर की मात्रा बिल्कुल हटा लेंगे, मीठा हटा लेंगे, मल्टीग्रेन की रोटी खाएंगे एक रोटी, और खाने में सब्जियों की मात्रा, हरी सब्जियों, फल नहीं, हरी सब्जियां, क्योंकि फलों में भी शुगर होती है, तो इनसे गैस कम बनेगी आपको। नंबर दो, कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से भी हमारे आंतों के जीवाणु प्रभावित होते हैं, तो उसकी वजह से भी गैस बनती है। आजकल से जो लोग मल्टीपल मेडिसिन पे होते हैं, कार्डियक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स, इसमें आंतों के जीवाणु प्रभावित हो जाते हैं, तो वो लोग भी खाने के बाद बहुत ज्यादा गैस का अनुभव करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट, मीठा और दूध, इसकी मात्रा को आप कम करके इस गैस की समस्या को कम कर सकते हैं काफी ज्यादा।
1: डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल, ये समझ लो अब मैं क्या खराब रहना है, मैं दूध वगैरह तो कुछ नहीं लेता बिल्कुल भी। अब मैं, मेरे को ये थोड़ा सा लगता, और देखो ये गैस की गोली सुबह जो मैं मॉर्निंग में पेंटाप्रोजोल या एस्माप्रोजोल है, ये 2007 से ही चल रही है।
0: ये गैस की गोली नहीं होती, ये एसिडिटी की गोली है।
1: पर्टिकुलर जांच हो सकती है क्या, ऐसी कोई जांच हो?
0: पहले तो इतने लोग ये पेंटोपेजोल ओमेप्रजोल को गैस की गोली समझ के खाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है समाज में। पेंटोपेजोल ओमेप्रजोल गैस की गोली नहीं होती है, ये पेट के अल्सर की गोली होती है और पेट का एसिड कम करती है। यदि आप लंबे समय तक पेंटोपेजोल ओमेप्रजोल ले रहे हैं तो ये खुद एक गैस बनने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पेंटोपेजोल ओमेप्रजोल जब हम लंबे समय तक लेते हैं तो ये हमारे शरीर का एसिड बहुत ज्यादा कम कर देती है, इसकी वजह से जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि बढ़ जाती है। तो ये जो सोच रहे हैं गैस की गोली नहीं है, बल्कि ये गैस को बढ़ाने की गोली है। तो ना, और गैस की जांचें कई तरह की होती हैं वो तो, लेकिन निर्भर करता है कि यदि आपको कुछ उसमें खतरनाक लक्षण है, जैसा वजन में कमी आ रही हो, खून में कमी आ रही हो, आपके पैरों में सूजन आ रही हो, पेट में पानी हो, वजन में बहुत ज्यादा कमी आ गई है, तो फिर इसलिए पेट की जांचें कराई जाती है। अन्यथा दवाइयों में थोड़ा हेर फेर करके और थोड़ा सा खाने में पीने में बदलाव करके भी आप मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप पेट में जलन एसिडिटी नहीं है तो पेंटोप्रजोल को सेवन ना करें। पेंटोप्रजोल ओमेप्रजोल पेट का एसिड कम करती हैं, तो ये सिर्फ जलन में काम करेंगी, ये गैस में काम नहीं करती हैं। ये और बल्कि गैस को बढ़ाएंगी आप लंबे समय तक, दो तो तीन तीन साल, पांच पांच साल तक ऐसे लेते रहेंगे तो
1: 2007 ही ले रहा हूँ, तब ये तो इसका कारण ये भी हो सकता है।
0: बिल्कुल होगा जी, क्योंकि आपका अगर पेट में एसिड नहीं बनेगा तो कीटाणु मरेंगे कैसे, हानिकारक जीवाणु बढ़ते जाएंगे। तो भगवान ने जब हमें एसिड बनाने की जो क्षमता प्रदान की है उसका अनावश्यक रूप से कम क्यों कर रहे हैं? आपको एसिडिटी है ही नहीं तो आप क्यों एसिडिटी की गोली खाए जा रहे हैं उसे गैस की गोली समझ के? आप डॉक्टर से मिलिए, उनको जरूरत लगेगी तो बिल्कुल करेंगे। एंडोस्कोपी पेट के अल्सर की जांच करने के लिए, पेट के ट्यूमर पकड़ने के लिए, पेट में गठान पकड़ने के लिए, या फिर हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो मैंने कीटाणु बताया जो पेट में जलन का अनुभव, पेट फूलने के अनुभव करते हैं, उसके लिए की जाती है जांच। एंडोस्कोपी की जाती है, उसके निर्धारित इंडिकेशन है।
1: डॉक्टर साहब आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं या सिर्फ?
0: नहीं, मैं निजी क्षेत्र में काम करता हूँ।
1: थैंक यू
2: कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी।
1: बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत
2: जी। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे अनियमित खानपान और जंक फूड से होने वाली समस्याओं के बारे में।
0: अनियमित खानपान और जंक फूड तो शरीर में हर बीमारी पैदा करता है, हार्ट की, लीवर की, किडनी की। यदि हम पाचन तंत्र से संबंधित बातें करें तो हमारी बॉडी के अंदर एक मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। जैसे हम सुबह उठते ही हमें मल त्यागने का अनुभव होता है, भूख लगती है, कुछ करती है, उसी तरह से माइंड के अंदर हर चीज का एक टाइम सेट है। जैसे हम किसी से बातें करते हैं, बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं, फोन पे बात करते करते घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि माइंड के अंदर रिफ्लेक्स होता है।
2: जी, जी, जी।
0: तो यदि आप अनियमित खान पान रखेंगे तो हमारी बॉडी का सारा मेमोरी, पूरा हार्मोनल चेंजेस, केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो सब बदल जाएंगे, तो हमारे माइंड को पता ही नहीं लगेगा कि खाने का टाइम क्या है, कौन से समय कौन सा पाचक तंत्र का कौन सा जूस, कौन से रस को सीक्रेट करना है, स्त्रावित करना है, क्योंकि हर चीज की बॉडी में एक फिक्स टाइमिंग होती है। आधा घंटे ऊपर नीचे चल जाता है, कब तुम्हारे पित्त को बनना है, कब अग्नाशय के रस को बनना है, कब कौन से रस को बनना है, इसका एक समय होता है। यदि कोई बॉडी का फिक्स टाइमिंग ही नहीं है, अनियमित खान पान है, तो वो पाचक रस उनका तालमेल नहीं, आपने खाना खाया उस टाइम रस नहीं बने,
2: बिल्कुल
0: तो खाना पचेगा कैसे? नंबर दो बात करिए आपने जंक फूड की, बिल्कुल जंक फूड से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी।
2: एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो,
3: नमस्कार।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप ये भी बताएं और फिर सवाल पूछें।
3: मेरा नाम रामेश्वर राठौड़ है।
2: जी रामेश्वर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
3: गोविंद नगर कोटा डपरिया से बोल रहा हूँ।
2: जी जी पूछे।
3: मेरी उम्र 80 साल है। तो खाना खाने के बाद कभी कभी बहुत थोड़ा पेट में तकलीफ पैदा हो जाती है।
2: किस तरह की तकलीफ?
3: रात को कुछ, मेरी बात कर रहा हूँ मैं ही।
0: क्या तकलीफ होती है आपको खाना खाने के बाद?
3: मतलब जैसे

0: चावल खा लिए, तो चावल खाने के बाद तो जरूर तकलीफ चालू हो जाती है।
1: क्या तकलीफ होती है? वही तो समझना चाहते हैं, पेट फूलता है, जलन होती है, कब्ज हो जाती है खाना।
0: हाँ हाँ हाँ, सुबह मतलब बिल्कुल कब्जे की शिकायत रहती है, अलार्म लगा खाना खा लो तो दाल रोटी खा ली या सब्जी रोटी खा ली, तो उसमें भी सुबह शौच जाने में बड़ी दिक्कत होती है।
1: देखिए, 80 साल की उम्र में कब्ज का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें जो मल त्यागने के लिए जो हमारी मांसपेशियां होती हैं मल द्वार के आसपास, वो कमजोर हो जाती हैं, उनका सामंजस्य बिगड़ जाता है, इसे हम एनोरेक्टल डिसएनर्जिया बोलते हैं। तो जैसे जैसे शरीर की उम्र होती है, मांसपेशियां भी कमजोर होंगी, शरीर की क्षमता भी कमजोर होगी। परंतु यदि मल में खून आता है, आपका वजन कम हो रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको उसके आपको धीरे धीरे आपको अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने की कुछ कसरतें होती हैं, जैसे कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं, वो करनी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण होते हैं ना, मांसपेशियों की कमजोरी, जब हम मल त्याग करते हैं तो गुदा द्वार को ढीला नहीं छोड़ पाते हैं, ऊपर से पूरी तरह से दम नहीं लगा पाते हैं, कभी कभी खाने की मात्रा भी उम्र के साथ साथ इतनी कम हो जाती है कि मल बनता ही नहीं है। तो इसका बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, यदि आप कब्ज से ज्यादा प्रभावित है, तो आप कोई लग्जेटिव या कोई दवाई आती है पेट साफ होने की, उसको कम मात्रा में ले सकते हैं, और फिर भी आराम ना पड़े तो किसी समय लेकर किसी डॉक्टर से मिलिए, तो आपको कुछ कसरतें या कुछ वो सिखाएंगे जिससे आपको थोड़ा सा आराम पड़े। नहीं, उसमें सोते समय जो भी पेट साफ होने की, रात को सोते समय ली जाती है वो। पर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, कब्ज हो जाती है उम्र के साथ साथ। जैसे मैंने बताया, खतरनाक लक्षण नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर से मिलकर छोटी मोटी इसके लिए दवाई लिखवा सकते हैं, और वो आपको कुछ तरीके भी बताएंगे जिससे मल त्यागने में आपको आसानी होगी।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य वाणी जारी है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। डॉक्टर संदीप गोयल हमारे बीच उपस्थित हैं, चर्चा हो रही है पेट संबंधित रोगों के कारण और उपचार पर। अभी एक अंतराल के लिए रुकते हैं और फिर पुनः हाजिर होंगे डॉक्टर साहब और हम आपकी सेवा में।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा। किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा, अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाए अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ। दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध। आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल, कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं पुनः स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम आरोग्य वाणी में। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। आज चर्चा हो रही है पेट संबंधी रोगों के कारण और उपचार पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गोयल हमारे बीच उपस्थित हैं। और डॉक्टर साहब, जंक फूड की हम बात कर रहे थे, कॉलर आ गए थे। जी जी जी,
3: तो जंक फूड से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पर जो मैं सब एक बीमारी की तो ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है मोटापा। इस वक्त पूरे विश्व में मोटापा एक सबसे बड़ी बीमारी बढ़ती जा रही है, जो लीवर खराब होने का इस टाइम एक प्रमुख कारण कह सकता हूँ, प्रथम कारण हो गया है। जितने भी लीवर प्रत्यारोपण इस टाइम दुनिया में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा उसका कारण मोटापे के कारण लीवर खराब होना है। जो हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, गुर्दे के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, सबके कारण ओबेसिटी और मोटापा है। जैसे कि आपने देखा कि अभी एक नई दवाई मार्केट में आई है मोटापा कम करने की, उसकी जिस तरह से बिक्री हो रही है भारत देश में, इसका कारण क्या है कि मोटापा इतना ज्यादा बढ़ चुका
2: जी,
3: है। लोग चाहते हैं इजी वे आउट, कि आसानी से मोटापे से मुक्ति मिल जाए, तो इंजेक्शन लगा के
2: दर्द की दवा खाई और दर्द खत्म हो गया,
3: वैसे पैरासिटामोल खाई बुखार उतर गया, मोटापे का इंजेक्शन लगाया और मोटापा खत्म हो गया।
2: जी जी,
3: जंक फूड से सबसे ज्यादा बढ़ता है मोटापा, मोटापे के कारण होता है फैटी लीवर और लीवर खराब होना। आज भारत में हर तीसरे आदमी को फैटी लीवर, आप मान सकते हैं हर तीसरा आदमी, मतलब हर दूसरे को छोड़ के तीसरा आदमी फैटी लीवर से शिकायत है। और इन तीन हर तीसरे आदमी में से हर चार में से एक को एडवांस लीवर की खराबी है, आगे लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस की बीमारी।

0: जारी हो रही है। तो जंक फूड आपके लीवर को खराब करता है, या आपके मोटापे को बढ़ाता है, आपके पेट का चर्बी को बढ़ाता है, इसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इससे गैस तो बनती है, जैसे बताया कि पाचन तंत्र में मैदा और ये सब होती है, ये मैदा में फाइबर नहीं होता। जितने भी जंक फूड होते हैं ये मैदा ओरिएंटेड होते हैं, मैदा के बेस पे बनते हैं। मैदा का मतलब होता है फाइबर लेस गेहूं।
1: डॉक्टर साहब एक श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: नमस्कार, मैं अर्जुन जाट बोल रहा हूँ पुलिस से।
1: जी अर्जुन जी, पूछे क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से?
2: ये मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि जैसे मैं खाना खाता हूँ ना तो तुरंत मुझे शौचालय जाना पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब,
0: जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बात करी कि आजकल खाना दिन में 3-4 बार शौच जाना, खाना खाते के बाद मल त्यागने का अनुभव करना, ये समस्याएं भी बढ़ रही हैं। यदि इसमें आपके साथ आपके वजन में कमी आ रही है, यदि आपका वजन बढ़ नहीं पा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तब तक आपको पेट की जाँच करानी चाहिए। कई बार फूड इंटॉलरेंस, गेहूँ से एलर्जी, वीट एलर्जी, सीलिएक डिजीज होती है, इसके कारण होते हैं, आंतों में छाले के कारण भी हो सकता है। तो आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ है आपका, या आपको कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, इस तरह के लक्षण हैं कोई इसके साथ?
2: नहीं ऐसा।
0: कितने साल से है आपको ये समस्या?
1: हेलो अर्जुन जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करें, आपकी आवाज बराबर नहीं मिल रही है।
2: जी अब आ रही है?
0: हाँ जी, साल डेढ़ साल से यदि आप इससे समझते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा। एक बात देखिए कि विशेष प्रकार के खाने के बाद ही ऐसा होता है, जैसे कुछ लोगों को दूध पीने के बाद ऐसा होता है, तो जब वो खाने में दूध की मात्रा बंद करते हैं तो उनको इससे मुक्ति मिल।
2: मैं दूध भी नहीं पीता
0: सर। या फिर आपको ऐसा कहे कि सिर्फ गेहूँ रोटी खाने के बाद ऐसा होता हो, चावल खाने के बाद नहीं होता हो, रात को?
2: नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी खा लूँ, मुझे जाना ही पड़ता है बस।
0: हाँ तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आकर आप चिकित्सक से मिलें, हो सकता है कि वो आपको कोलोनोस्कोपी की जाँच के लिए बोलें, इसका कोई और कारण तो नहीं है। यदि आपको 1-1.5 साल से ये मतलब रिसेंट समस्या हो, ये पहले नहीं थी, तो इसके लिए तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए एक बार। कई बार क्रॉन्स डिजीज होती है ऐसे, उसमें भी ऐसा होता है।
2: एक सवाल सर, जैसे मैं अगर तो कुछ भी नहीं खाता तो वापस मुझे ऐसा लगता है कि गैस बन गई है।
0: मतलब गैस बन गई क्या? पेट फूलता है आपका, क्या होता है?
2: हाँ जी पेट फूल जाता है।
0: हाँ यदि खाली पेट रहेंगे तो उसमें पेट में खाली पेट जो एसिड बनेगा वो भी अपने आपको गैस का बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके वो। तो आप इसलिए बोलते हैं नियमित समय पे थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना चाहिए, सुबह के टाइम 8-9 बजे के आसपास, दिन में 2 बजे के आसपास, शाम को 4 बजे के आसपास। तो लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे तो बिल्कुल आप पेट में फूलना या हमारे आंतों में जो संकुचन होंगे उसकी वजह से पेट में दर्द होना ये सब तो महसूस करेंगे, पेट में गुड़गुड़ का होना।
2: सुबह खाता हूँ बस, शाम को खाता हूँ, दिन में कुछ भी नहीं करता हूँ।
0: हाँ तो सब बदल सकते हैं अपनी, आपकी जीवन शैली बदलती जा रही है, पाश्चात्य जीवन शैली हमारे आती जा रही है, अब हम गाड़ियों पर चलते हैं, स्कूटर कार पे हैं, सोफे पे बैठते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जिस तरह से पहले खाते थे सुबह और शाम का खाना वो थोड़ा बदल सकते हैं। आप दिन में 2 या 3 बार थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, ये भी करते हैं, उससे आपको आराम मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए आपको यदि टुकड़ों में करके खाएं तो। पर यदि आपको बार बार शौच में जाना है और आप परेशान हो रहे हैं तो मेरा सलाह कि एक बार आप चिकित्सक से मिल लीजिए, और हो सकता है वो कोलोनोस्कोपी के लिए बोलें तो उसको करवा के देखिए कि पेट में कोई कोलाइटिस या कोई और बीमारी तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से बार बार शौच के लिए जाना पड़ रहा है।
2: धन्यवाद
1: जी अर्जुन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब अभी आप हमारे श्रोता को जो जवाब दे रहे थे उस बीच आपने जिक्र किया हम गाड़ियों पे चलते हैं, बैठक ज्यादा हो गई है, यानी कि शारीरिक गतिविधियां जो है वो कम हो गई है। हालांकि गांव में अभी देखते हैं कि फिर भी गाड़ियों का उपयोग अभी कम है शहरों के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कम होना पेट के लिए स्पेशली क्या कैसे हानिकारक है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें हम।
0: शारीरिक गतिविधि में कमी का के कारण जब पेट में जो हम कैलोरीज हम ले रहे हैं, जो ऊर्जा हम खाने से ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम जैसे हमारे खाने में गेहूं बहुत चलता है, ये जो गेहूं है ये गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाइड उस समय का गेहूं है जो भारत में बहुत ज्यादा भुखमरी की और कुपोषण की शिकायत थी 80 और 90 दशक में।
1: जी जी जी।
0: तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं का बीज है जो उस टाइम क्या कहते हैं लोगों का पोषण उत्तम करने के लिए बनाया गया था। पर अब ये गेहूं जो है ये मोटापे का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था मोटे अनाज का प्रयोग करें, कैंटीन में भी अब ज्वार बाजरा इस तरह का गेहूं को कम करके मोटे अनाज का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो यदि शारीरिक गतिविधि में कमी होगी, आप अपना पूरा ऊर्जा का प्रयोग है वो तो लेते ही रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ जाएगी? ये लीवर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैट के रूप में जमा होगी, पेट में जमा होगी, जिसके कारण पेट का आपका वजन बढ़ेगा,

0: पेट की कमर का वजन बढ़ेगा, फैटी लीवर होएगा, हार्ट में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़े जमा होगा, हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल, शारीरिक गतिविधि की कमी होना तो शरीर के अंदर जितनी अतिरिक्त ऊर्जा है उसको फैट में कन्वर्ट करेगी और फिर हमारी जितनी बीमारियां हैं वो सब उसकी और हम बहुत ज्यादा
1: बढ़ते चले
0: बढ़ते
1: जाएंगे।
0: चले जाएंगे।
1: जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट में दर्द अलग अलग तरह के होते हैं, उनके कारण क्या है? गैस की वजह से भी दर्द होता है, एसिडिटी से भी दर्द होता है, लूज मोशन यानी दस्त अगर है तो उससे पहले भी मरीज को दर्द होता है, और भी जैसे अब इसके लिए डॉक्टर मतलब संकेत क्या है कि पेट की
0: पेट दर्द को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि कभी एक आध बार पेट में दर्द हुआ, दोबारा नहीं हुआ तो अलग बात है। यदि आप किसी भी कारण से किसी भी तरह का पेट में दर्द बार बार महसूस कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि एक बार जरूर एक डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि पेट में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार हार्ट पेशेंट्स को भी पेट में दर्द होता है, स्टोन्स वगैरह तो फेमस है कि चलो स्टोन्स की वजह से दर्द होता है। आजकल जिस तरह से बता रहा हूँ खाना आ रहा है, आजकल कैंसर के केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आजकल इवन बच्चों में हम कैंसर देख रहे हैं। कल ही मैंने 15 साल की लड़की में आंतों का कैंसर देखा, तो हर तरह की आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आज के जमाने में मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, यदि किसी भी तरह का पेट में दर्द है, बार बार हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन या महीने में 2-3 बार भी हो रहा है, तो एक बार तो आप उस
1: तुरंत
0: डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, उसकी टेस्ट करा लेनी चाहिए सारे के सारे। उसको सिर्फ अपने लोकल उपचार करके ठीक करने का मतलब नहीं, एक या दो बार समझ में आता है कि दोबारा कभी हुआ ही नहीं, पर बार बार हो रहा है
1: तो नजर
0: अनावश्यक दिमाग न लगाएं, घर बैठे बैठे और डॉक्टर से मिल लें।
1: जी जी जी। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संदीप गोयल हमें दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पेट हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है, इसलिए इसकी छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना, सही समय पर डॉक्टर की सलाह न लेना, खुद डॉक्टर बन जाना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम घरेलू उपचार भी कर लेते हैं, कई बार वो कारगर होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, तो सही समय पर इन बीमारियों को, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें। और श्रोताओं को एक बार पुनः बता देते हैं पेट संबंधी रोगों के कारण और उपचार, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संदीप गोयल से। कार्यक्रम आरोग्य वाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। आपका कोई सवाल है तो स्वागत है आपके फोन कॉल का, नंबर है 0744 कोटा का एसटीडी कोड है ये, और हमारे स्टूडियो का नंबर इसके बाद लगाएं 2491142 0744 उसके बाद 2491142 और सीधे डॉक्टर संदीप गोयल से आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज की एक और गंभीर समस्या है तनाव, चिंता। क्या ये भी पेट दर्द या हमारे पाचन तंत्र को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है, जिससे पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है?
0: जब हम तनाव लेते हैं या तनाव बढ़ता है तो हमारे शरीर से एक हार्मोन बनता है कॉर्टिसोल, जो एक स्टेरॉइड होता है। जब हम ये स्टेरॉइड हमें कम मात्रा में होता है जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जिससे हम तेज भाग पाते हैं, सब कर पाते हैं। यदि अत्यधिक तनाव लेते हैं तो ये कॉर्टिसोल का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसे भगवान ने स्ट्रेस से लड़ने के लिए बनाया है, जिससे हम कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसके लड़ पाते हैं, हमारी बॉडी तेज काम करती है।
1: अच्छा।
0: तनाव लेने से भी कॉर्टिसोल हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, फिर ये मोटापे को बढ़ावा देता है। मोटापा होता है तो मोटापे के कारण फिर आप जैसे हमने भी बात करी है बहुत सारी फैटी लीवर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सब होती है।
1: जी जी।
0: कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण फिर शरीर का रंग काला पड़ना, डायबिटीज होना, बालों को उड़ जाना, ये सब समस्याएं भी होती है। तो तनाव एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि तनाव के कारण हमारे शरीर से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है।
1: जी जी जी। तो सब एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं हमसे, बात करते हैं उनसे। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, कार्यक्रम आरोग्य वाणी में स्वागत है आपका।
2: मेरा थोड़ा मैं मरीज बोल रहा हूँ ना।
1: जी
2: मैं जी। जो दवाई बंद करते हैं अपन तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर साहब जी, जैसे आपने कहा मल्टीग्रेन, तो गेहूं के अलावा अपन जौ वगैरह काम में लें तो उसमें भी कुछ होता है क्या?
0: जैसा कि पहला किया कि अचानक बंद कर दें, अचानक अगर लंबे समय से ले रहे हैं तो अचानक बंद ना करिए, पहले उसको एक एक दिन छोड़ के ले लीजिए, एक एक दिन छोड़ के फिर धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। फिर आपको लगता है कि अभी आपको पेट में जलन होती है तो उसे आप कभी कभार ले सकते हैं। और यदि मैंने बताया कि इसमें जैसे आपको खून की कमी होती है, वजन में कमी होती है, भूख खाना कम खा पाते हैं, जैसे आप 2 चपाती की डाइट है, आप आधी चपाती पे आ गए, तो आप फिर डॉक्टर से मिलिए एक बार कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ गोली खा के काम ना चलाएं। नंबर दो, जैसा कि हमने बात करी कि अभी मल्टीग्रेन की रोटी, मल्टीग्रेन के देखिए बहुत सारे फायदे हैं। सबसे ज्यादा फाइबर होता है, तो फाइबर होता है तो आपको फाइबर रहेगा, पेट साफ रहेगा। जो सबसे बड़ी समस्या कब्जी तो हो गई है आजकल, एक पेट साफ नहीं होता। यदि ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, इनका एक तो प्रोटीन भी बढ़ेगा आपका, पेट भी साफ रहेगा और गैस भी कम बनेगी।

0: मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे बिल्कुल गैस बनना ही बंद हो जाएगी, है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट ही, मोटापा वो भी बढ़ाते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली उसमें फाइबर ज्यादा होता है जो अवशोषित नहीं होता, जिसके कारण थोड़ा सा वो कम हानिकारक है और बेहतर पाचन के लिए बेहतर है।
1: और जौ
0: उनकी भी मात्रा कम
1: जैसे
0: रखी है। हाँ, जौ भी खा सकते हैं मिला के, यदि आपको सीलिएक डिजीज नहीं है तो जौ से भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसका भी एक एक चपाती ही खानी है, क्योंकि मल्टीग्रेन की रोटी थोड़ा सा खाने में भारी होती है, पानी का अवशोषण ज्यादा मांगती है, तो जो तो गेहूं की चपाती लोग तीन या चार खाते हैं, तो मल्टीग्रेन की रोटी एक या दो रोटी पर्याप्त होती है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी फिर आपकी।
1: थैंक यू डॉक्टर
2: जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मोटापे की,
0: तनाव और
2: तनाव और चिंता। जी जी जी। अच्छा, आपने फैटी लिवर के दो तीन इन्फेक्शनों का जिक्र किया, उसमें एक तो फैटी लिवर खुद एक अपने आप में बीमारी है ही सही, उसके और भी क्या कारण है?
0: फैटी लिवर, जैसे मैंने बताया कि जितनी हम ऊर्जा ले रहे हैं, जितना हम गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं या डीजल डाल रहे हैं, उतनी गाड़ी को नहीं चला रहे हैं तो क्या होगा, गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसमें इंजन में ऑयल जमा होगा। फैटी लिवर सेम ऐसी ही समस्या है। ये नाम एक ऐसा है कि फैटी लिवर, तो लोग सोचते हैं कि हम तेल चिकनाई नहीं खा रहे तो हमें फैटी लिवर नहीं होगा,
2: नहीं हो सकता।
0: ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
2: जी जी जी।
0: फैटी लिवर का मतलब है जितनी आप ऊर्जा ले रहे हैं उतनी ऊर्जा आप खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी ऊर्जा की अत्यधिकता शरीर में। यदि आप दो चपाती ले रहे हैं, खर्च आप एक चपाती कर रहे हैं, तो फिर वो अतिरिक्त जो चपाती है वो आपके लीवर में फैट के रूप में जमा हो रही है, क्योंकि लीवर का स्टोरेज का जो माध्यम है वो फैट ही होता है। ये है, तो फैटी लीवर में जितना आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, गाड़ी को उतना नहीं चला रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि मैं दिन में एक चपाती सुबह दो चपाती खाता ही नहीं हूँ, उसके बाद मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है, उसके भी बहुत बड़े महत्व है तनाव। फिर यदि आप तनाव में रहते हैं तो आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, तो फिर वो भी मोटापा बढ़ाएगा। नंबर दो, नींद का पूरा नहीं होना। कम से कम हमें 8 घंटे की नींद एक स्ट्रेच में लेनी ही चाहिए। आज के जमाने में जैसे सोशल मीडिया चल रहा है, लोग लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहते हैं। अपने यहाँ गाँव में लोग गाड़ी पे नहीं चलते, लेकिन गाँव में सोशल मीडिया बहुत चलता है। आजकल इंटरनेट की एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि हर गाँव गाँव में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को एक तरह की न्यू स्मोकिंग बोला जाता है, न्यू सिगरेट है ये, जिसे लोगों को पता ही नहीं लगता, वो दो दो तीन तीन घंटे कब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे उंगलियों को चलाते हैं। आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए, पर डे का 3 से 4 घंटे 2-3 घंटे आएगा ही आएगा। तो यही एक बहुत बड़ी एक लत है सोशल मीडिया की, जिसकी वजह से हम बैठे रहते हैं, पता ही नहीं लगता, आधा आधा 2-2 घंटे मोबाइल पकड़े बैठे हुए हैं और हमने कोई ऊर्जा खर्च नहीं करी।
2: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट की समस्याओं में कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हमें रोजमर्रा में खाना चाहिए, और कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए?
0: खाद्य पदार्थों में खाना हमारा रंगीन होना चाहिए, हमें सभी तरह के रंगों वाला खाना खाना चाहिए, सब तरह की चीजें खानी चाहिए।
2: ये बड़ी अच्छी बात है आपने।
0: तो ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, खाना सब है,
2: संतुलित संतुलित भोजन तो अच्छा है, लेकिन रंगीन खाना ये आपने एक नया।
0: इसमें टमाटर भी होना चाहिए, पपीता पीला भी होना चाहिए, हरी सब्जी भी होनी चाहिए, दही भी होना चाहिए, सभी तरह के रंग होने चाहिए खाने में। खाने को सब खाइए, संतुलित मात्रा कम मात्रा में खाइए।
2: डॉक्टर साहब, ये रंगीन खाना की जो चर्चा है यही रोकते हैं, एक श्रोता से बात करते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं जानते हैं। हेलो हेलो हेलो,
3: राम राम साहब।
0: राम राम।
2: राम राम, कौन बोल रहे हैं?
3: बोल रहा हूँ।
2: अच्छा, आप बूंदी से बोल रहे हैं, बस इतना ही समझ में आया, थोड़ा सा नेटवर्क में आए आप।
3: खलुंदा से बोल रहा हूँ।
0: हाँ, बताइए,
2: पूछें क्या पूछना चाहते हैं।
3: सवाल है कि पेट दर्द करने के कारण क्या है लगता?
2: अच्छा,
0: पेट दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। आपका किस ऊपर मतलब नीचे है, दाई बाई कहाँ पे होता है, कितने सालों से है, हल्का है, तेज है, खाने के बाद होता है, मल त्यागने के बाद होता है,
3: खाने के बाद
0: यदि ऊपरी हिस्से में दर्द है तो ये मैंने बताया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कीटाणु होता है जो आमाशय में रहता है, इसके कारण कि इसके इसके से संक्रमण होता है, ये संक्रमण सक्रिय हो जाता है तो इसकी वजह से भी दर्द होता है। तो इसको अगर आपको बहुत लंबे समय से पेट में खाना खाने के बाद दर्द है, वजन कम नहीं हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक बार हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कीटाणु का उन्मूलन का कोर्स ले सकते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको एक दवाई लिखेंगे इसके लिए 15 से 20 दिन की, तो उससे आपको आराम पड़ जाएगा।
2: धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे रंगीन खाने की।
0: तो खाने में हर सब चीजें खानी चाहिए, जिस तरह के मैंने बताया कि सब्जियां भी होनी चाहिए तरह जी, तरह जी, की जी, ऐसा नहीं कि हरी सब्जी खाएं, और सब्जी जैसे कैरोटीन के लिए वो टमाटर भी खाना चाहिए, और तरह कीवी फल फूल है, सब लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खाते, पपीता सेब भी खाना चाहते हैं, और भी फूल है, एवोकाडो है, कीवी है, इस तरह के फलों का भी आप सेवन करिए, सिर्फ रोटी से पेट ना भरिए।
2: आपने रंगीन खाना कहा तो क्योंकि अब महिला

0: होने के नाते मेरे दिमाग में पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च,
1: बिल्कुल,
0: हरी
1: बिल्कुल,
0: शिमला मिर्च और ब्रोकली, सफेद गोभी, तो ये सब घूम रहा था।
1: ये बहुत अच्छे खाने हैं, इससे ऊर्जा की मात्रा कम होती है पेट
0: जी,
1: हमारा पेट भी भर जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट दही है। दही में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, लैक्टोज नहीं होता है, जो बिल्कुल गैस नहीं बनाता। दही को के बारे में समाज में बहुत सारे भ्रम हैं, किसे अस्थमा होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, खटाई होती है। दही ये जो खाने का एक बहुत अच्छा लैक्टोबैसिलस इसमें होता है।

0: इससे कोई अस्थमा नहीं होता, इससे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, इससे कोई एसिडिटी नहीं
1: अच्छा, दही
0: होती।
1: रात को खाने के लिए भी मना करते हैं
0: ऐसा कुछ
1: तो
0: भी नहीं है कि
1: क्या?
0: दही रात को नहीं खाना है। एक्चुअली दही जब बनता था तो सुबह लोग रात को जमा के छोड़ देते थे, सुबह तक जम जाता था और रात होते होते खट्टा हो जाता है। हाँ, खट्टा दही जरूर आपको खाने में थोड़ा सा वो लगेगा कि इसे अजीब
1: अच्छा,
0: सा
1: सिर्फ
0: होता है।
1: स्वाद में ही खट्टा लगेगा या कोई उसके जो गुण है
0: नहीं,
1: वो वही?
0: गुड़ में कोई कमी नहीं
1: कोई
0: आती है,
1: कमी
0: लेकिन
1: नहीं है?
0: जब खाने में आएगा ही नहीं तो फिर वो दिक्कत
1: जी
0: आती
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो दिन में खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
1: हाँ
0: दही से छाछ
1: हाँ
0: बनाई जाती है, अपने चारोती में छाछ का प्रचलन बहुत
1: जी
0: ज्यादा
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य वाणी आप सुन रहे हैं। पेट की समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, पेट का अल्सर, दस्त, इन सभी विषयों पर डॉक्टर साहब ने अभी जानकारी हमें दी है और डॉक्टर संदीप गोयल हमें ये जानकारी दे रहे हैं। आप भी यदि इनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर फोन करें। स्टूडियो का नंबर 2491142 और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड लगाएं 0744। डॉक्टर साहब, अब आएंगे पानी पर। पानी कोई कहता है 5 लीटर पानी दिन का पियो, कोई कहता है 4 लीटर, कोई 1 लीटर, कोई 2.5 लीटर। पानी की क्या कितनी इम्पोर्टेंस है पेट की, पूरे पाचन तंत्र में?
0: हमारी बॉडी में 70% 70% तो पानी है, जिस तरह से हम बोलते हैं। तो पानी तो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: हमारे शरीर को बनाने में जो चीज है सबसे ज्यादा तो पानी ही है उसमें।
1: जी जी
0: अब बात करते हैं मात्रा की।
1: मात्रा
0: एक
1: जी
0: मात्रा सबके लिए निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे एक नाप का कपड़ा हर आदमी नहीं पहन सकता, कोई स्मॉल शर्ट, कोई मीडियम शर्ट, कोई एक्सेल साइज पहनता है। तो उसी तरह से ये कहना कि सभी को 4 लीटर पानी पीना है, ये भी गलत है। तो उसके लिए हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक केंद्र होता है, जिसे हम थर्स्ट का केंद्र या प्यास केंद्र बोलते हैं। तो यह अपने आप ही पानी के, शरीर में पानी की कमी और अधिकता के अनुसार ही प्यास का अनुभव कराता है। तो कई बार आपको जब भी प्यास लगती है आप पानी पीजिए, और मिनिमम, हाँ, न्यूनतम 2 लीटर 2.5 लीटर तो जब आपको हाड़ौती की गर्मी है इसके हिसाब से तो पीना ही चाहिए।
1: जी जी जी
0: कई बार
1: जी
0: लंबे समय तक एसी में बैठे रहते हैं, आजकल सब जगह लोग एसी में बैठे रहते हैं, तो शायद उस टाइम पसीना नहीं आता तो प्यास का अनुभव कम करते
1: कम
0: हैं।
1: होता है।
0: या कई लोग बार बार चाहते हैं कि हमें बार बार बाथरूम ना जाना पड़े, महिलाएं होती
1: तब
0: हैं
1: भी पानी नहीं
0: खासकर, इसलिए वो
1: पीते
0: पानी
1: यार।
0: नहीं पीती हैं। तो इसके कारण स्टोन्स वगैरह की समस्या, ये
1: जी
0: सब
1: जी
0: समस्याएं,
1: जी
0: पेशाब में जलन होना, यूरिन इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो बिल्कुल पानी पीते रहें, ऐसा नहीं कि प्यास होने पर ही पिए। प्यास होने पर तो बॉडी अपने आप ही इंडिकेट करेगी, संकेत देगी कि हाँ आपको पानी पीना है, शरीर में पानी की कमी हो रही है। इसके अलावा भी थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें,
1: जी
0: जिससे
1: जी जी
0: शरीर में आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। और पानी के माध्यम से ही तो जब शरीर के जितने ही प्रवाह होते हैं, रक्त का
1: जी
0: प्रवाह, ये सब बना रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता है, फोन चेक कर दिया। जी डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे कि कब पेट की समस्या को गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए?
0: सबसे बड़ा तो जैसे आपने बताया कि पेट में दर्द, यदि आपको लगातार पेट में दर्द बना हुआ है,
1: डॉक्टर
0: जो
1: साहब, एक एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो,
2: हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम आरोग्य वाणी में। कौन बोल रहे हैं?
2: अरे मुकेश बोल रहा हूँ, कुनाड़ी से।
1: जी मुकेश जी, पूछें।
2: अरे मेरा, मैं क्या कब्जे की शिकायत है मेरे, बहुत टाइम से ठीक है। जब तक दवाई गोली लेता हूँ तब तक पेट साफ रहता है, जब दवाई गोली छोड़ता हूँ तो वापिस समस्या बन जाती है।
1: डॉक्टर साहब,
0: आपकी उम्र कितनी है मुकेश जी?
2: मेरी है 48।
0: 48 की उम्र है आपकी। और चलना फिरना आपका, पेट का वो कैसा है, मतलब आपका वजन ठीक है, संतुलन में है, ज्यादा है पेट का वजन?
2: नहीं तो संतुलन में मेरा,
0: क्योंकि मतलब आपका पेट बाहर तो ऐसा है कि पेट की कमर का वजन कितना होगा, कमर कितनी रहेगी आपकी?
2: मेरे कमरे 36 के आसपास।
0: और फाइबर अगर पर्याप्त लेते हैं खाने में, आप सब्जियां वगैरह पर्याप्त मात्रा में खाते हैं?
2: अब फाइबर तो कैसे, वही सब्जी रोटी खाना है, बताया सुबह शाम।
0: तो व्यायाम वगैरह करके देखा आपने उसके लिए? व्यायाम करके
2: हाँ,
0: देखिए।
2: मॉर्निंग में मैं घूमता भी हूँ, लेकिन मैं समझता मैं यही कि मैं टेबलेट वगैरह लेता हूँ तब पेट साफ रहता है, जब छोड़ता हूँ तो अभी वही समस्या बन जाती है।
0: नहीं, घूमने के अलावा थोड़ा सा पेट का व्यायाम चालू करिए। पेट की जो मांसपेशियां होती हैं, उसको, जो नीचे की, जो पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां होती हैं, उनके लिए थोड़ा व्यायाम करिए, जिससे आपको कि मल त्यागने में आसानी रहेगी और आपको उसके फायदा होगा। और नंबर दो, आप बिल्कुल नियमित समय पर सुबह शौच के लिए जाइए। जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी होती है, माइंड के अंदर, तो आप मल के इच्छा होने का अनुभव का इंतजार ना करें। एक फिक्स समय पर सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पी के, जो हमारे शरीर को संकेत देता है कि आप सुबह आत्म संकुचन का समय हो गया है, और आप मल त्याग, इसके लिए बाथरूम में जाके बैठिए। जब आप लगातार 15-20 दिन तक लगातार एक फिक्स समय पर बाथरूम में जाके बैठेंगे, तो धीरे धीरे बॉडी की मेमोरी सेट हो जाती है और उस टाइम फिर कब्ज का इलाज हो जाता है। एक, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद भी आंतों में संकुचन होता है बहुत ज़्यादा। यदि आप दवाई लेने लेना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद भी यदि आप बाथरूम में जाके बैठेंगे तो आपका प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे बेहतर मैं आपको कहूँगा, घूमना एक एक्सरसाइज नहीं है, घूमना एक फिजिकल एक्टिविटी है। घूमने से ठीक है, हमें हमें शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, थोड़ा हार्ट की रेट मजबूत होती है,

0: लेकिन उससे और दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा व्यायाम करना ही पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा पीटी हो गया, सूर्य नमस्कार होता है जैसे, यदि आप घुटनों में दर्द नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप सूर्य नमस्कार करिए, 4 से 5 बार सूर्य नमस्कार करिए। सब उसमें 12 आसन होते हैं, तो आप 5 बार भी करेंगे तो आपका उससे पूरे पेट का मांसपेशी मजबूत होगी, कमर मजबूत होगी, तो आपके जो पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होंगी, तो आपको कब्जी से मुक्ति में मिलेगी।
1: थोड़ा खान पीन में चल चल लिया जाता है, पेट में
0: खान पीन घर का बना खाना ही, जैसे हम तो चर्चा कर रहे हैं कि आप फाइबर बढ़ाइए, मल्टीग्रेन की रोटी खाइए, सब्जियां खाइए, हर तरह का खाना खाइए, दही लीजिए, दही 100 ग्राम दही रोज लीजिए, 100 से 200 ग्राम दही।
1: अच्छा,
0: टाइमिंग फिक्स रखिए, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी चल जाता है, पर मोटा मोटा अनुशासन में, एक ऐसा नहीं कि जब भूख लगे तभी खाएं, भूख तो
1: मतलब कोई बीमारी नहीं, मतलब ये है
0: नहीं बीमारी, यदि कमल में खून नहीं आ रहा है, वजन नहीं कम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
1: हाँ, मैंने भी कहा जाँचों वैसा ही करा है, लेकिन जाँचों में कुछ भी नहीं आता।
0: जाँचों में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जाँचों में नहीं आ रहा तो अच्छी बात है ना।
2: जी जी जी मुकेश जी, आप कार्यक्रम अंत तक सुने, आपसे अनुरोध है हमारा, और जुड़े आप हमसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके
2: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पेट दर्द की।
0: तो पेट दर्द तो कभी भी आप नजरअंदाज ना करें, यदि आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है, बल्कि हल्का हो रहा है, तेज हो रहा है, तो आप तुरंत इसके लिए डॉक्टर से मिलें कि इस पेट दर्द का कारण क्या है। वजन में कमी होना, खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, मल का रंग काला आ रहा है, मल में खून आ रहा है, खाने की मात्रा में कमी होती जा रही है, जैसे किसी की 2 चपाती है, 3 चपाती की डाइट है, उसको वो डाइट आधी चपाती पे आ गई, 2 चपाती की जगह, खाना खाते ऐसा लगता है कि खाना क्यों खा लिया, खाना खाने में डर लगने लगा है,
2: जी, जी, जी, जी।
0: ये सब समस्याएं ऐसी हैं, तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका मतलब ये बताती है कि हमारे पाचन तंत्र की अंदरूनी सतह पे कुछ ना कुछ अल्सर ट्यूमर कुछ हो रहा है।
2: जी जी डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे दवाओं से गैस बनने की, तो जो बीपी के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें तो मतलब लगातार दवाएं खानी ही होती है, क्या उनसे जो गैस बनती है वो भी आगे चल के पेट में किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकते हैं?
0: दवाइयों से बड़ी बीमारी नहीं होती है, पर जो जनरली किसी को जैसे ब्लड प्रेशर है, तो उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस तरह की दवाइयां चलती हैं, ठीक है। वो बीपी को कम कैसे करती हैं, क्योंकि वो खून की नसों को थोड़ा सा खोलती हैं, उनको उनका दबाव कम करती हैं, तो इनका एक साइड इफेक्ट होता है कि कब्जी भी करती हैं, ये उससे आंतों का दबाव भी कम कर देती हैं। किसी को बाथरूम, किसी को हार्ट के फेलियर की शिकायत है, तो उसे बाथरूम आने की दवाई दी जाती है, उसे बाथरूम ज्यादा आता है तो पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी होती है उससे भी कब्ज हो जाती है, मल टाइट हो जाता है।
2: जी जी जी जी।
0: बहुत सारे लोग हैं जिनको जो पॉलीफिल मल्टीपल दवाइयों पर होते हैं, वो पेंटोप्राजोल तो खाते ही रहते हैं बिना किसी डील के, उसकी वजह से जैसे बताया कि पेट के जो जीवाणु होते हैं, फिर वो हानिकारक जीवाणु बढ़ जाते हैं, तो उससे और ज्यादा गैस बनती है। तो दवाइयों का प्रयोग भी करें, डॉक्टर की सलाह से करो, जो जरूरी जरूरी दवाइयां हैं उनका प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से सिर्फ की प्रसाद के रूप में ये भी खाना है वो भी खाना है। मल्टीविटामिन भी लोग फालतू में बहुत खाते रहते हैं कि मैं मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, जबकि मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है बॉडी को, आप फिर भी मल्टीविटामिन खाते हैं।
2: अच्छा,
0: मल्टीविटामिन में बहुत सारे ऐसे एडिटिव होते हैं जो फिर लीवर को नुकसान भी कर जाते हैं, कई बार लंबे समय तक ऐसे मल्टीविटामिन भी नहीं खाने चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, एक अंतराल के लिए रुकते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य वाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और अब प्रोग्राम बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। अब चलते चलते आप अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को इस पेट से संबंधित समस्याओं से जूझना न पड़े?
3: जैसे कि वो सब तो लोग कहते ही रहते हैं कि अच्छा जीवन शैली अपनाइए, अच्छा खान पान। मैं कहूँगा कि तो आप नींद पूरी करिए, कम से कम रोज 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद एक स्ट्रेच में पूरी करिए।
2: जी जी जी जी।
3: नंबर दो, तनाव नहीं लीजिए। तनाव लेंगे तो आप बिना किसी कारण भी मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, तभी मुझे बीमारी क्यों हो गई? क्योंकि तनाव के कारण हो गई। आप तनाव लेंगे आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी। नंबर तीन, सब तरह का खाना खाइए और उसको जलाइए भी, अर्न एंड बर्न। गाड़ी में पेट्रोल डालिए, खूब डालिए, लेकिन उसको फिर जलाइए भी।
2: जी, जी, जी।
3: तो यदि आपको अपने लाइफ को एंजॉय करना है, भगवान ने एक बार जन्म दिया है, मानव जीवन दोबारा मिले ना मिले, खाइए लेकिन उसको साथ साथ बर्न भी करिए। घूमते फिरते रहिए, कुर्सी पे ना बैठिए, सोशल मीडिया में अपना टाइम देखिए कितना आप स्पेंड कर रहे हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में आधा घंटे से ज्यादा कुर्सी पे नहीं

0: बैठना चाहिए। बहुत सारे अभी रिसेंट ऐसे स्टडीज भी हैं जिन्होंने बताया कि यदि आधा घंटे से ज्यादा आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आपकी उम्र कम होती है। तो
1: जी।
0: लगातार चलते फिरते रहिए, खाते भी रहिए।
1: तो श्रोताओं, उम्मीद है आज की चर्चा आपके लिए लाभदायक रही होगी। याद रखें, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी और समय पर नींद और स्वस्थ पाचन तंत्र, ये है हमारे स्वस्थ जीवन की कुंजी। तो इसका ध्यान रखें, अपना खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और उसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अगले बुधवार को फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी साथी सीमा को। इस कार्यक्रम का संयोजन किया हिमांशु नामा जी ने और तकनीकी सहयोग हमें मिला संजीव सोलंकी जी का। अब कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न होता है। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बैठक रखी गई है। बैठक में एनडीए के शासन करने वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा आरती और प्रार्थना सभाएं रखी गई हैं। देवस्थान विभाग के सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जैसलमेर स्थित बांके बिहारी मंदिर और पोकरण के बाबा रामदेव मंदिर में विशेष पूजा की गई। वहीं पाली के सुमेरपुर के जोगेश्वर महादेव मंदिर में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पूजा कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बारा में भी जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने विशेष पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 12 सालों में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है। सवाईमाधोपुर के रहने वाले जयदीप सिंह राजावत ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को उपयोगी बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: मेरा नाम जयदीप सिंह राजावत है। मैंने सूर्यघर योजना में 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगवाया था, जिसमें मैंने मेरा जो राशि थी वो 2 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से मुझे 78,000 रुपये सब्सिडी के द्वारा दिए गए केंद्र सरकार के, और इस स्कीम से बहुत लाभान्वित हुआ मैं। मुझे अभी तक एक भी बिल का राशि देने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं इस स्कीम के लिए आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये आगे निरंतर बनी रहे।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
1: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 75 रूपये का एक विशेष स्मारक सिक्का और 5 रूपये का एक डाक टिकट भी जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ये नारी चौपाल जिला और ब्लॉक स्तर पर लगाई जा रही है। इन चौपालों का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। जैसलमेर में नगर परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नारी चौपाल रखी गई है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। बाड़मेर में होने वाले आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारी और लाभार्थी महिलाएं भाग लेंगी। अजमेर के सभी 5 ब्लॉक में नारी चौपाल लगाई जाएंगी। इनमें राजीविका से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां हिस्सा लेंगी। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सभागार में होने वाली नारी चौपाल में महिलाओं के लिए विभिन्न सत्र रखे गए हैं।
2: नारी चौपाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम जैसे विषयों पर जागरूकता संवाद सत्र आयोजित कर महिलाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजीविका समूहों की सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन तथा विभिन्न विभागों की महिला प्रतिनिधि भाग लेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। कल हुई इस आगजनी की घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। 3 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी जबकि अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा है कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। मामले की जांच की जा रही है तथा अवैध रूप से संचालित गोदाम और फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। ये भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 4 सूत्री रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि बंदरगाह प्राधिकरण इस विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल देवांशी शर्मा ने अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर बी हैंड बैलेंस की व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने सीनियर सी महिला बैक बेंडिंग इंडिविजुअल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों को ये पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी ये सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। तेज उमस भरी गर्मी और धूप की तपिश से लोग प्रभावित हैं। कल ज्यादातर

0: स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकांश हिस्सों में पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू में पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने और कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने तथा तेज धूल भरी हवाएं चलने की आशंका जताई है। वहीं आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आपने ट्यून किया है FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज। साथ ही साथ आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। और पहला गीत आपके लिए लाए हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की युगल आवाजों में। गीत लिखा संतोष आनंद ने और संगीत दिया आनंद मिलिंद ने। फिल्म का नाम संगीत।

श्रोता आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर फिल्म संगीत का। और अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। फिल्म का नाम आपको बताते हैं, लाल दुपट्टा मलमल का। यह है फिल्म का नाम, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार है आनंद मिलिंद।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवाएंगे, उससे पहले लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज शाम 7 बजे से 7:30 तक सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। ये कार्यक्रम आज सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा और विषय आपको बता देते हैं, खरीफ फसलों को कीट रोगों से बचाव कैसे करें, ये रहेगा आज की चर्चा का विषय। और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नाथूलाल मीणा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान। यदि इस विषय में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें। पहले कोटा का एसटीडी कोड लगाएं 0744, उसके बाद हमारे स्टूडियो का नंबर 2941142 लगाएं और सीधे डॉक्टर नाथूलाल मीणा जी से बात करें। समय एक बार फिर से आपको बताते हैं, आज शाम 7 बजे से 7:30 तक कार्यक्रम चौपाल।
1: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही होगी।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आखिरी गीत आपके लिए लाए हैं फिल्म हीर रांझा से। लता मंगेशकर और अनवर के युगल स्वर हैं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तो श्रोताओं, फिल्म हीर रांझा के इस दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा घड़ी मजरसा। सखियों, कैसी हैं आप? स्वागत करती हूं आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। महिला जगत के सफर में आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी सुनीता जैन। मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, महसूस कीजिए उस छांव को जो जिंदगी की कड़ी धूप में आपको महफूज रखती है। जी हाँ सखियों, बात कर रहे हैं हम संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार वो होता है जहाँ दिल और रिश्ते एक साथ रहते हैं। सखियों, लगता है बिखरे हुए रिश्ते फिर से एक डोर में बंध रहे हैं, जुड़ रहे हैं टूटते परिवार। एकल से संयुक्त परिवार की ओर कदम बढ़ाने वाले लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि जिंदगी सभी रिश्तों के बीच ही बेहतर ढंग से खिलती और मुस्कुराती है। सखियों, वाकई संयुक्त परिवार उस वट वृक्ष की तरह होता है जिसकी छांव में हजारों छोटे बड़े पौधे पलते हैं, खिलखिलाते हैं, लहलहाते हैं। हमारी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी छांव हमें भावनात्मक संबल प्रदान करती है, सारी जिम्मेदारियां खुद उठाकर हमें बेफिक्री की जिंदगी देते हैं। ये हमें स्नेह और सुरक्षित जीवन देते हैं। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें हमारी विफलताओं में संभालते हैं और हमें सहज और खुशनुमा जिंदगी देते हैं, यही तो हमारे संयुक्त परिवार की खूबी है। सखियों, यदि संयुक्त परिवार के लाभ की बात की जाए तो सबसे पहले तो संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ मिलकर रहती है। संयुक्त परिवार के लाभ जैसे मजबूत भावनात्मक सहारा मिलता है। परिवार के सदस्य सुख या फिर दुख एक दूसरे के साथ खड़े मिलते हैं। आर्थिक सुरक्षा की यदि बात की जाए तो आय के कई सारे सूत्र होते हैं। घर के खर्च बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारी का बोझ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता। और हमारी सखियों की महिलाओं की बात की जाए तो घर का जो काम होता है उसका तनाव उन पर नहीं होता, क्योंकि घर के काम भी सभी के बीच बढ़ जाते हैं। परिवार के वृद्ध लोगों को अकेलापन महसूस नहीं होता, उनकी देखभाल अच्छे से होती है और उनके अनुभव का लाभ सभी को मिलता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे आपस में तालमेल बिठाना, त्याग करना और मिलजुल कर रहना। सबसे अहम बात, बच्चों का बेहतर लालन पालन होता है, क्योंकि कई रिश्तों के बीच रहने के कारण उनमें संस्कार, संस्कृति और नैतिक गुणों का विकास होता है। सखियों, जब हम संयुक्त पारिवारिक संस्कृति की बात करते हैं

0: तो एक ऐसा परिवार जहां आपस में सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हो, खुलकर आपस में बातचीत करते हो, एक दूसरे के कार्यों की तारीफ और सराहना करते हो, साथ में आपस में क्वालिटी टाइम यानी गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हो, कोई भी छोटी बड़ी समस्या का समाधान आपस में मिलकर सहयोग से हल करते हो ताकि आपस में जुड़ाव और सुरक्षा की भावना रहे, एक दूसरे के प्रति सभी कृतज्ञ भी रहते हैं। इन छोटी छोटी बातों से एक खुशनुमा और संयुक्त परिवार बनता है। तभी तो सखियों हमारा दिल कह उठता है,
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, संयुक्त परिवार की जब हम बात कर ही रहे हैं अभी, तो सबके साथ सबका विकास और बच्चों की यदि बात की जाए तो बच्चे बहुत ही जल्द बोलना भी सीख जाते हैं परिवार में, क्योंकि परिवार में इतने सारे सदस्य होते हैं कि उनके साथ उनका बोलना करना सभी कुछ होता है। स्पीच थेरेपी एक ये विषय है जिसमें हम कई बच्चों को आजकल देख रहे हैं जो एकल परिवारों में रहते हैं, उनमें बोलने की समस्या आ रही है, कई बार बहुत देरी से बोलते हैं। तो आज इसी विषय को हमने हमारे कार्यक्रम में शामिल किया है। मैं और मेरी एक और साथी संज्ञा शर्मा बात करेंगे डॉक्टर तिथि जैन से कि स्पीच थेरेपी की क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से इनका समाधान है। तो आइए सुनवाते हैं आपको ये भेंटवार्ता। संज्ञा, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाओं को आसानी से पहुंचाता है।
3: लेकिन सुनीता, समस्या तब खड़ी होती है जबकि एक बच्चे का बचपन बाल्यकाल होता है और कुछ महीने के बाद, ये कह सकते हैं एक साल की अवधि के बाद भी वो किसी तरह की अभिव्यक्ति देने में समर्थ नहीं होता। यानी हम उसे उम्मीद करते हैं कि अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बा पापा इस तरह के कुछ कुछ छोटे शब्द कहेगा लेकिन नहीं कह पाता।
2: बिल्कुल संज्ञा, कुछ शब्द और कुछ अपने संकेत, कुछ हाव भाव उसके हमें नहीं दिखाई देते हैं, तब हमें लगता है कि ये कुछ न कुछ समस्या है। तो ऐसे में इस समस्या का निदान होना भी आवश्यक है
3: और उसके लिए सुनीता हमें जरूरत पड़ती है स्पीच थेरेपिस्ट की। और यही सोचते हुए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर तिथि जैन को, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद आकाशवाणी।
2: डॉक्टर तिथि जैन, आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में, लेकिन ये बात हम शुरुआत करें उसके पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे का बचपन, उसके बोलने की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या वो संकेत होते हैं, क्या वो हाव भाव होते हैं और क्या उसकी वो बोली होती है जिसके माध्यम से हमें पता चल सके कि इस बच्चे को स्पीच से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है।
4: देखिए, बच्चे में दो चीजें होती हैं, सुनना और बोलना। बच्चा जो सुनता है उसी को सीख करके वो बोलना सीखता है। और बोलने के लिए हमारे डेवलपमेंट के दौरान तीन मेन पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव जो कि एक 3-4 महीने की उम्र में आता है, जिसमें बच्चा सिर्फ आवाजें निकालना सीखता है, कुछ सिंपल आवाजें जैसे कि आ ऊ या पा बा, इस तरह की आवाजें। जब भी वो अपने किसी फैमिलियर फेस को देखता है या किसी अच्छी चीज को देखता है तो वो इस तरह की आवाजें निकालता है। और फिर एक पड़ाव आता है जिसमें बच्चा पहला शब्द बोलना सीखता है। पहला शब्द लगभग बच्चा 1 साल से 14 महीने की उम्र में बच्चा शब्द बोलना सीखता है। वो शब्द तभी माननीय होता है जब वो किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेट करे। जैसे कि अगर उसने पापा बोलना सीखा है तो वो अपने पापा को ही देख के हमेशा पापा बोले। और फिर आखिरी पड़ाव होता है जब बच्चा एक वाक्य बोलना सीखता है, जिसमें बच्चा 2 या 3 शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य बनाता है। ये पड़ाव लगभग 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में पड़ता है। हर बच्चे में ये पड़ाव अलग अलग टाइम पर आता है, पर मैक्सिमम हम देख सकते हैं कि 2.5 से 3 साल की उम्र में ये पड़ाव आ जाना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर बच्चा ये अचीव नहीं कर पा रहा है इन 3 पड़ाव को, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चों में बोलने या सुनने से रिलेटेड कोई समस्या है जिसके कारण उसने इन 3 पड़ावों को अचीव नहीं किया है।
3: तो ये बात आपने बताई कि बच्चे के स्वाभाविक जो प्राकृतिक प्रदत्त उसको

0: शक्तियां हैं बोलने की और सुनने की, उसमें उसको किसी तरह की समस्या दिखाई दे रही है, तो ऐसे में बात उठती है स्पीच थेरेपी की। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्पीच थेरेपी क्या है।
1: मैं बोलूंगी स्पीच थेरेपी एक माध्यम है जिससे अफेक्टेड कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाता है। मेरे इस कथन से मतलब है कि देखिए, कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है जिससे इंसान अपनी भावनाओं को या वो जो भी कहना चाहता है उसको एक दूसरे इंसान तक पहुंचाता है, अपने से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है या दूसरे से दूसरे की बातों को समझता है। अब इस कम्युनिकेशन का किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त होना, जैसे कि सुनने के कारण वो दूसरे की बात समझ नहीं पा रहा है या उसको समझने में ही दिक्कत है, वो दूसरा क्या कह रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है, या और किसी कारण वश उसका कम्युनिकेशन अगर अफेक्टेड है, क्षतिग्रस्त है, तो स्पीच थेरेपी के दौरान पहले हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा माध्यम है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण उसका ये मेन कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, और फिर उसी को हम ट्रीट करते हैं।
0: बिल्कुल, स्पीच थेरेपी के अंतर्गत आप समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत समस्याएं वो कौन कौन सी है? एक आपने बोलने की समस्या बताई, एक आपने सुनने की बताई, इसके अलावा भी क्या कुछ और अन्य समस्याएं होती है?
1: बिल्कुल, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि बच्चों का तुतलाना, हाइपर एक्टिव बच्चे, बच्चों में मानसिक कमजोरी का होना, या फिर बच्चों में कटे फटे तालू से संबंधित समस्या, आजकल बच्चों को पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई संबंधित समस्या हो, जैसे कि हम आमतौर पर डिस्लेक्सिया कहते हैं, या फिर चेहरे पर लकवा होने के कारण बोलने में परेशानी होना, बड़ों को हकलाना, बच्चों या बड़े किसी में भी हो सकता है, बच्चों में ऑटिज्म एक रोग होता है उसका पाया जाना, सेरेब्रल पैल्सी, या बड़ों में भूलने की बीमारी जो कि स्ट्रोक या हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, या किसी भी एज में आवाज का खरखरी होना, मोटी पतली आवाज होना, जैसे कि लड़कों में लड़कियों जैसी आवाज होना, 14-15 साल की उम्र में जब लड़कों की आवाज मोटी होती है उस समय, तभी भी उनकी आवाज लड़कियों जैसी तीखी हो उस तरह का, या लड़कियों में मोटी आवाज होना, या फिर बड़ों में अफेजिया की प्रॉब्लम होना, अफेजिया मतलब कि एक तरीके से भूलने की प्रॉब्लम होना।
0: तो ये तो थी बहुत सारी समस्याएं, हमें लगता है कि बहुत एक बड़ा वृहद क्षेत्र है स्पीच थेरेपी में किसी तरह की समस्या आए और आपके लिए काम आना और उन समस्याओं का निदान करना, लेकिन ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो प्रमुख रूप से सामने आती है?
1: देखिए, प्रमुख रूप से आजकल मेन जो आती है वो है एक तो डिलेट लैंग्वेज, यानी कि बच्चों का ये जो मैंने आपको तीन पड़ाव शुरू में बताए थे, ये तीन पड़ाव को सही समय पर अचीव ना करना, जिसको हम कहते हैं डिलेट लैंग्वेज। दूसरा, हकलाना, बड़े या छोटे इसमें हकलाने की प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। और तीसरा, अफेजिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादातर के लोगों में पाई जाती हैं।
0: बिल्कुल, ये समस्याएं डॉक्टर तिथि जैन आपके सामने जब आती है तो इन समस्याओं में से वो कौन सी समस्याएं होती है जो कि वंशानुगत होती है?
1: देखिए, कोई भी समस्या, जो भी मैंने आपको अभी डिसऑर्डर्स या बीमारियां बताई हैं, इनमें जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये तो बीमारी को देख के या उस इंसान को देख करके ही हम पता लगा सकते हैं कि ये जेनेटिक कॉज है या नहीं, बट मैं ये कहूंगी कि जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, कुछ परसेंट तक जेनेटिक प्रॉब्लम माननीय होती है कुछ बीमारियों में।
0: तो ये तो बात आपने कही कि अनुवांशिकता कितनी होती है या समय परिस्थिति के हिसाब से क्या बात समस्या निकल के सामने आती है, लेकिन एक बात यह है कि इन समस्याओं के लिए आपको निदान करना है कि कौन सी समस्या सही अर्थ में उसके बॉडी में है या नहीं, तो इसके लिए कुछ क्या विशेष प्रकार की जांचें की जाती हैं?
1: हाँ, देखिए, इंसान अगर आया है तुतलाने की समस्या लेकर या डिलेट लैंग्वेज लेकर के, जैसे कि सपोज इंसान आया है कि मेरे बच्चे ने अभी तक बोलना नहीं सीखा है या क्या, तो उसके लिए हम उसकी भाषा की उम्र निकालते हैं। भाषा की उम्र निकालने से क्या मतलब? देखिए, हम हमारे लिए शरीर की ऑर्गन का एक एज होता है, तो इसी तरीके से समझने और बोलने की भी एक उम्र होती है, तो हम उसमें बच्चा कितना समझता है उस क्रोनोलॉजिकल एज, यानी बच्चे की एक्चुअल एज में होने के बावजूद भी उसकी समझने की और बोलने की एज डिफरेंट हो सकती है, तो हम जांचों से उसकी समझने और बोलने की एज निकालते हैं। अगर बच्चा तत्लाने की समस्या लेकर आया है तो वो बच्चा किस अक्षर में अटकता है, किस अक्षर में कहां उसको दिक्कत आती है, हम जांचों के द्वारा इस तरह के निष्कर्ष निकालते हैं।
0: और इन जांचों में जब आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं तब आप इन समस्याओं का निदान किस तरीके से करते हैं?
1: इन समस्याओं का निर्धारण स्पीच थेरेपी देकर किया जाता है। जैसे कि अगर ऑटिज्म की समस्या है और बच्चे में ग्रीटिंग्स को लेकर प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी भाषा बिल्कुल सही है, जितना एक 5 साल के बच्चे को बातें समझने बोलने आनी चाहिए उसको सब समझना बोलना आता है, लेकिन उसका दूसरों बच्चों के साथ खेलना कूदना या दूसरों के साथ बात करना

0: अफेक्टेड है। तो जो भी चीज अफेक्टेड होती है हम उसको मेन गोल बना करके ट्रीट करते हैं, वो हमारा लक्ष्य होता है और उसको हम ट्रीट करते हैं। अगर तुतलाने की समस्या में किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर अक्षर में दिक्कत है तो हम उसको लक्ष्य बना करके उस पर्टिकुलर अक्षर को सिखाते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो बात तिथि जी हम कर रहे थे आपसे स्पीच थेरेपी की और उससे संबंधित ढेर सारी समस्याओं की। लेकिन एक बार ये लगता है कि हम किसी तरह का व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बीच में कुछ हमारी रुचियां होती हैं, शौक होते हैं, तो आप

0: समस्याओं की, लेकिन एक बार ये लगता है कि हम किसी तरह का व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बीच में कुछ हमारी रुचियां होती हैं, शौक होते हैं, तो आपको किस तरह की रुचि है, किसी तरह का अलग तरह की कोई हॉबी है तो वो आप बताइए।
1: जी, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप ये बताइए, क्यों ना हम आज आप ही के पसंद का कोई गीत सुनवा देते हैं, तो आपने पसंद का गीत बताइए।
1: जी, अगर आप मुझे बर्फी मूवी से इतनी सी खुशी इतनी सी हंसी गाना सुना सकें तो मैं बहुत आभारी रहूंगी आपकी।
0: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का यह गीत।

0: बहुत सुंदर गाना डॉक्टर तिथि जैन अभी आपने सुनवाया हम सभी को और आपने भी सुना। बाकी जीवन में हंसी और खुशी इसका तो अपना एक विशेष महत्व हम कहते हैं होता ही है, और जो आप समस्याओं का निदान करती हैं स्पीच थेरेपी के माध्यम से तो आप सभी के चेहरे पर एक हंसी और खुशी ला देती हैं। जब हम इन समस्याओं का निदान करने के लिए किसी डॉक्टर के पास स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो अपने तरीके से समस्याओं का निदान करता है, लेकिन उसके परिवार की भूमिका ऐसे समय में उस बच्चे के साथ या उस व्यक्ति के साथ कैसी होनी चाहिए?
1: देखिए, परिवार का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी इंसान को कोई भी दिक्कत होती है, मेन प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल, उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है माइंड का। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस से ही ठीक हो जाती है। अगर उसे पता है कि पूरा परिवार उसके साथ है या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सभी उसका हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी बीमारी एकदम आधी हो जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि परिवार का जितना ज्यादा योगदान रहे उतना ही उसकी बीमारी ठीक होने में समय कम लगता है।
0: तो क्या परिवार वालों की आप लोग काउंसलिंग करते हैं उनके साथ में?
1: जी बिल्कुल, हम परिवार वालों को उनकी बीमारी के बारे में, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताते हैं, और किस तरीके से उस परिवार वाले अपने उस रिलेटिव को या इंसान को हेल्प कर सकते हैं उसके डेली रूटीन की चीजें अचीव करने में, वो सब समझाते हैं, ताकि इंसान अपने मानसिक साइकोलॉजिकल स्टेटस से बिल्कुल खुश रहे।
2: जो ये समस्याएं आती हैं उनमें कौन कौन सी समस्याओं को संक्षेप में आप थोड़ा सा बता दें, किस तरह से आप निदान करती हैं?
1: मैं बोलूंगी सुनने की तकलीफ। ये सुनने की तकलीफ किसी इंसान को एक कान में भी हो सकती है या दोनों कानों में भी हो सकती है। अब इस सुनने की तकलीफ के लिए इंसान को सबसे पहले जांच करानी पड़ेगी कि तकलीफ कितनी होती है, और फिर उसके बाद उसके लिए मशीन लगाई जाती है सुनने की। जिस तरीके से हम आंखों में अगर हमें देखने में तकलीफ होती है हम चश्मा लगाते हैं, उसी तरीके से सुनने के लिए भी मशीन होती है, वो लगाई जाती है। और अगर बच्चे में ऐसी दिक्कत है, जन्म से ऐसी दिक्कत है, तो बच्चे को मशीन लगाने के बाद तुरंत सुनाई नहीं देता, मतलब उसको आवाजें आती हैं पर वो किस चीज की आवाज है वो उसको समझ में नहीं आता, वो किस चीज की आवाज है और उस आवाज को किस तरीके से रिएक्शन देना है वो हम स्पीच थेरेपी के दौरान उसको बताते हैं। और एक तरह की तकलीफ होती है वॉइस प्रॉब्लम्स, वॉइस डिसऑर्डर से रिलेटेड। वॉइस प्रॉब्लम में क्या होता है कि देखिए, वॉइस में मेन तीन चीजें होती हैं, एक इंसान की पिच, जो कि पुरुष में धीमी पिच होती है और फीमेल्स में हाई तीखी पिच होती है, जो हम कहते हैं कि बहुत चुभ रही है वैसी। दूसरा होता है लाउडनेस इंसान का, यानी कि धीमी आवाज या तेज आवाज। और तीसरा होता है क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि आवाज किस तरह की है, खरखरी आवाज है कि बहुत मीठी आवाज है। जैसे हम कहते हैं भाई सुनिधि चौहान की आवाज बहुत मीठी है, वहीं पे किसी आम इंसान की आवाज बहुत

0: खरखरी हो सकती है। तो इन तीन फैक्टर्स में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम पहले पहचानते हैं और उस तरीके से उस प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ट्रीट करते हैं। फिर एक होता है हकलाने की दिक्कत, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमरिंग। आमतौर पर इसमें इंसान बोलते समय बार बार अटक जाता है, उसको शब्दों को बार बार अपने शब्दों को दोहराता है, वो बोलते समय हिचकिचाता है। जब कई सारे लोग होते हैं, हो सकता है वो उन सिचुएशंस में जाने से डरता हो, या फिर वो लंबा रुकता हो अपनी बात को बोलते समय, जिसको हम पॉजेस कहते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल स्पीच में भी होती है, लेकिन जब ये जैसे कि ये इस तरह से, लेकिन जब ये एक जरूरत से ज्यादा होते हैं तो ये अबनॉर्मल माना जाता है। तो इसमें भी स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंसान को फ्लुएंटली बोलना सिखाया जाता है। फ्लुएंटली मतलब इनका जो अटकना, रोकना, टुकना है वो सब हटा करके उसको कंटिन्यूअस बोलना सिखाया जाता है।
1: बहुत ही अच्छे समाधान आप बता रही हैं कि समस्या कोई भी हो स्पीच से संबंधित, आपके पास सभी समस्याओं का निदान है। यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है तो ऐसे में परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए?
0: परिवार वालों के लिए देखिए, इस पहले तो इंसान को उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग हंसेंगे मेरे बारे में, उनको पता चलेगा कि मुझे ये दिक्कत है, हो सकता है वो दूसरों से बात करने में हिचकिचाए। वो उस चीजों के लिए परिवार वालों को उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ दूसरों से बात करो। उसको जितना ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं उनको करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम को एक तरह का नेगेटिव फैक्टर लेकर के उसको दबाए ना। बल्कि मैं बताऊंगी, कई मशहूर हस्तियां रही हैं जिनको इस तरह की दिक्कत रही है, अटक अटक के बोलने की दिक्कत रही है, और आज हम देख रहे हैं कि वो अपने करियर में कितने टॉप पर हैं।
2: तो चलते चलते तिथि जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी बहनें जो हमारे श्रोता है, अपने कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके लिए हम कुछ खास बात कहना चाहेंगी।
0: मैं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स हर किसी को होती हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को दबा कर रखना या दूसरों से शेयर ना करना आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकता है। मैं कहूंगी कि अपनी प्रॉब्लम को आप सामने लाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप अपनी प्रॉब्लम से जितना भागेंगे आपको उतनी ही परेशानी होगी।
1: तो डॉक्टर तिथि जैन, आज आपने स्पीच थेरेपी पर बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे सभी सुनने वालों को उपलब्ध कराई। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बल्कि मैं कहूंगी कि आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाई आपके माध्यम से।
1: सखियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी थी अभी हमने ली स्पीच थेरेपी के, किस तरह से इसके माध्यम से हमारे जीवन में बच्चों के साथ जो कठिनाइयां आती है बोलने में, उसका हम समाधान पा सकते हैं। और अब जानकारी की बातों में आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में। सखियों, टीबी मुक्त भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान है, जिसका उद्देश्य देश से तपेदिक यानी टीबी को पूरी तरह से खत्म करना है। इसके तहत संभावित मरीजों को त्वरित जांच, मुफ्त इलाज और निक्षय पोषण योजना के जरिए मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इलाज के दौरान मरीजों को पोषण के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी सीधे बैंक खाते में दी जाती है। सखियों, समुदाय की इसमें भागीदारी, इस पहल के तहत कोई भी नागरिक या संस्था, कॉरपोरेट या एनजीओ निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद ले सकते हैं और उन्हें पोषण और भावनात्मक सहायता प्रदान कर सकते हैं। टीबी के लक्षण पहचानें, जांच कराएं, और यदि आपको या आपके किसी परिचित को लगातार खांसी, 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार है, वजन कम होना है या बहुत कमजोरी होना जैसे लक्षण हैं, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी की जाँच आप अवश्य कराएं। सखियों, टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों एवं सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है। तो सखियों, ये था हमारा आज का महिला जगत कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार, अपने सुझाव आप हमें लिख भेज सकती हैं। हमारे कार्यक्रम का पता है महिला जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कोटा, पिन कोड 324001। साथ ही हमारा मेल आईडी है enjoyairkota@gmail.com। और सखियों, आपको व्हाट्सएप नंबर भी हम साझा कर देते हैं, क्योंकि इससे मैसेज करना हो गया है और भी आसान। 9530012020। 9530001200। तो हमारे इस कार्यक्रम में आप और क्या जानकारी चाहती हैं और मनोरंजन के लिए भी आप कोई गीत सुनना चाहती हैं?

है तो वो भी हमें लिखकर मैसेज के माध्यम से भेज सकती है। तो आज का आपका और हमारा साथ बस यहीं तक, मिलेंगे महिला जगत के नए कार्यक्रम में नई नई जानकारी और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो सखी सुनीता जैन को अनुमति, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही हैं जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदा हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं

0: साल की थी, फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में, उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से जमींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे, तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं है। हीरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजुलु माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और खत्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलकर देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कहने?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर? तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ, और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं, हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहां मुलाकात हुई। तो कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम,

0: फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली?
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासे की बातें करें, उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वह बहुत ही खूबसूरत गाना है और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। अब याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें, कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों

0: में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था. हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है. तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है. और राजखोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया. अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी. यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है. तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे.
1: गुरुदेव साहब हाँ को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
0: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है. उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ.
1: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
0: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है. इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं, मगर बिना लिप मूवमेंट के. ये जैसे दिल की आवाज है. और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आपकी कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है. ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा.
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए.
0: हाँ एक्सप्रेशन लाने थे, और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी.
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: हाँ
1: है, और इसकी मेलोडी जो है आज तक
0: हाँ
1: बहुत दिल को छू लेने वाली.
0: बिल्कुल,
1: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं.

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हैवी है और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पीछे नहीं चलने वाली।
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म। फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया, अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा विधि जी, साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शेडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहां गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी?
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं, एक एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
0: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है कोई आपको?

0: याद तो कोई प्रसंग याद आता हो?
1: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरुदेव जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं कर रहे। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुआ भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है टाइटल रोल नहीं है क्यों करेंगी आप। तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल डिफरेंट है डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी तो इसलिए मैंने किया।
0: तो इसका जिक्र चला है क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
1: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे।
1: जी, जी।
0: तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो,

0: वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदेव फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर 14वीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर 14वीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं। अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो you know? और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदेव जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
1: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
0: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
0: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो CID में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ।
1: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
0: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, तो ठीक है। एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है। मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगा था। तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहां यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
0: खोया खोया चांद।

0: वहीदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया है और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए. वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था. उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था. तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे. कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की, और ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था. तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं. तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं. तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बापरे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना. मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा. खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं.
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं. वेला जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने. वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है. तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी.
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था. क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था. फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है. वो कैरेक्टर वैसा नहीं था, वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी. रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं. मैंने कहा क्यों?

0: तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है, और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली, तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया, जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही है, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
1: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा, आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला,
0: बिल्कुल सही है,
1: कमल के लिए भी मिला। कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
0: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उसे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी,
0: हाँ।
1: सुनील दत्त साहब के साथ में,
0: हाँ जी,
1: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया, हाँ। उनके साथ में, उनकी ट्रूप,
0: हाँ।
1: के साथ में जाती,
0: हाँ
1: रही ना,
0: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो, और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था,

0: एक और आपकी बड़ी ऑफ बीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने ही उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उषा और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए, जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मज़ा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते तो थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था तो बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग मेन रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
0: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
1: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
0: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
1: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कवर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटे की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहां आंटी बैठी थी,

0: तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कह लिए तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक फिर छह तमाचे पड़ेंगे उसको तो हंसने लगी। बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारो, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा कैसे वो एक मीठी सी चुबन, एक
1: जी
0: हाँ बहुत मीठा गाना।

0: यहाँ हम रेशमा और शेरा, जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, ये कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
1: रेशमा का वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन,

0: महिदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देके ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है. फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़ा डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और

0: उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और, आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे? एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे?
1: जैसे मैंने कहा वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे,
0: इतना हक
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे। तो बड़े कोऑपरेटिव बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन स्विट्जरलैंड बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। तो ही इज़ वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
0: और एक एनर्जी से भरे हुए
1: बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके कभी, मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़ फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी सो यू आई will call you ever ready battery.
0: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
1: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जोश जौहर थे बेचारे, उनसे उनके फैमिली से वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

0: 사랑.
1: 랑따랑.
0: 랑 तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई. स्वीकार कीजिए नमस्कार. इस मिश्र संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ अलग अलग तरह के गीत अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए. लीजिए पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको लकी अली की आवाज, शब्द रचना भी इन्हीं की और संगीत भी लकी अली का. एल्बम का नाम अक्स.

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय को, डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

आइए सिफर एल्बम का गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में। इससे संगीत से सजाया है लकी अली ने और लिखा है सईद असलम ने।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो

0: वो तो सिवाय चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पॉप एल्बम का ये गीत, आवाज गुल सक्सेना की और किरण ने साथ दिया है। गीत और संगीत किरण, प्रगति तोमर और सौरभ ठाकुर का।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है

0: अविनाश कुमार अभिषेक शुक्ला की आवाजों में अभी आपने सुना, इन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत और रचना भी थी इन्हीं की। और आपको अगला गीत सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए, फिल्म का नाम सात खून माफ। उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज की आवाजें, गुलजार के बोल और धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।
2: आंखों से आंखों

साथ खून माफ इस फिल्म के इस गीत के साथ ही रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर दोपहर के 12 बजे

0: सप्तांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
3: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
3: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
3: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
3: जी।
1: तो आज
3: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
1: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
3: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
3: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
1: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
3: जी।
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
3: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
3: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
3: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
3: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
3: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
3: जी।
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
3: जी।
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
3: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
3: जी।
1: फिर क्या होता है विमलेश?
3: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
3: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
3: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
3: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
3: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
3: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि

0: ये टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पी उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल।

ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा।

0: लग रहा है।
1: चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा
1: जी।
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ
0: जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
0: ओ,
1: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु

0: निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी। और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
3: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं।

0: जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथुवन, कादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
3: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी।
0: भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
4: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो आप अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 बजे हैं। आइए आपको पुनः लिए चलते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर. मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत.

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म

0: तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था।

0: 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में पूजा आरती और प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की और देश प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। नेत्रदान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से नेत्रदान का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नेत्रदान का निर्णय किसी की अंधेरी दुनिया में नई रोशनी और नई उम्मीद बन सकता है। नेत्रदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आम लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक वाहन चलाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष यातायात और कानून पालन अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के 8वें दिन कल करीब 8,500 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि इस दौरान वाहनों पर काली फिल्म लगाने, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों तथा बिना अनुमति के वाहन मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर रखरखाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कई उपाय शुरू किए हैं। इसके तहत NHAI ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों के मशीनों के जरिए रखरखाव और साफ सफाई तथा स्वचालित गड्ढा भरने के लिए उपकरणों की तैनाती के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों और रखरखाव प्रक्रियाओं को अपनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव और गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रदेश में कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से 14 जून तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच आज तेज गर्मी से हाल बेहाल है। पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। कल कई सीमावर्ती इलाकों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: कई साल पहले की ये बात है।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं चुरमी, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

तो अगर अब मैं ये कहूँ कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है, गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्यांश या नायक नायिका जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाजें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए कुछ जो टिप्पणियां आई है हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां करते ही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहां दिल की

बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहां आंखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला प्यार जब होता है तो हमें लगता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियां हैं वो भी यही सब कह रही हैं। बहरहाल सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, शिवहरी का संगीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी जरूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है, पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है। यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है, इन पलों को जाया ना होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार, इकरार, तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए जरूरी हैं, जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब

आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: बताइए बताइए
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए,
0: आप यहाँ आए किस लिए? मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा सादा है, नीना एक वादा है।
0: अच्छा,
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके जमाने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं जिंदगी के नए सफर में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा जरूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो। जब आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफर की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कने ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

0: गाएंगे ऐश करेंगे और क्या।
1: और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत, फिल्म हमसे आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है, जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और

वह कुछ भी नहीं कहूंगा कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है। जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्मपत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

शेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं न कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए, आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अच्छा।

0: कौन मैं?
1: हाँ तुम,
0: बस तुम।
1: ओफो।
2: तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोकझोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस

इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

पर जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं, भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझे, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है।

0: स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A

0: के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े दुबई और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक

0: का हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कोणार्क होस्ट और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जवलालाबादी के बोल और कल्याण जैनन जी का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है,

0: आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो
3: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए। आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है।
0: हाँ।
1: एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में।

0: पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल,
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज नया, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। यानी उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार
1: होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है, या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है, या संवाद पीछे छूटता जा रहा है,
1: और किस तरह का संवाद होता है,
0: है ना? हाँ
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार,
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है, है ना? और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए, यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके, मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि हाँ ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का, और अब क्या करें।
1: जी, अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत बातें हो गई हैं।
0: जी, सुनते हैं गीत।
1: ठीक।

0: तो नेहा मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊं।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना?

0: उन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
1: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
0: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
1: जी।
0: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती है तब तक। अब ये हमें पता नहीं था क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वे मुझे नेत्रदान करना है और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी
0: नहीं हो पाई
1: तो हमें बहुत बुरा लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
0: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
1: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी तो उनकी भी आंखें ले गए और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
1: बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
0: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: सोनाली जी बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने. उन्होंने लिखा है नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें. मैं खुद नेत्रहीन हूं तो मैं समझ सकती हूं कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती है. इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे. आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं. तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: कर सके. और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी.

0: ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख सके। और जब भी खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां। और साड़ी में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
1: झलक उठता है।
0: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरीकारी के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
1: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
0: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है। जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
1: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
0: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है। और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है। कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
1: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
0: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
1: क्या बात है।
0: मुझे शौक है तो पहनती हूँ। और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है। और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं। उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
1: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
0: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
1: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: और जैसे
1: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ न मिलना, ऐसे कई कारण है।
0: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल,
0: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव,

0: और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था, इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
1: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
0: हाँ, सच कहा आपने।
1: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
0: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही, और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम, धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
0: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही है, सुना लीजिए।
1: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीट बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
0: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनकी गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
1: डेवलप हो जाते हैं।
0: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
1: उसे करेला भी दीजिए।
0: हाँ, उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
1: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
0: हर
1: आप जो खाते
0: थोड़ी थोड़ी,
1: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
1: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने समझदार इंसान है,
1: ऐसे लोग घर में होना चाहिए।
0: हाँ, तो घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया
0: संवाद।
1: हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल के उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है। सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना?
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं। इसलिए
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से

0: जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता उसमें और उसमें टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब आप उन्हें चखाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं।
0: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है कि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे।
1: हाँ,
0: और दोस्त सहेली ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है, घर के नखरे भले ही हजारों लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है,
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछिए मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहिणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
1: हाँ सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा, जब हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले, ऐसा नहीं। बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो, जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए, बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे। इस तरह से इन्हें मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो गृहणियां हैं जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें,
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

सवाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छीलकर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंचफोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8-10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: चाहिए। बहुत टेस्टी हो गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद

0: अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है। फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है। पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
1: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
0: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे। बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक

0: थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमे आंच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है। पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती। मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें,
1: गीत सुने
0: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में।
0: हाँ।
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से। रिश्ता है ही जन-जन।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था

0: तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी जी जी।
0: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
0: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था, तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे,
1: गजब,
0: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाएं, कुछ भी कर पाएं, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाई चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है।
1: जी जी।
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है। एक आदमी है फिराक गोरखपुरी, जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है।
1: जी।
0: अकबर इलाहाबादी, जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं।
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था।
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा।
0: मैं टिपिकल, जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान।
1: जी।
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा, तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर दाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
1: 3 पेज
0: की चिट्ठी
1: सर्वेश्वर जी
0: और
1: की।
0: हाँ, उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैं लिख डाला। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे, या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई। तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई दी। बोला कि ये तो कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मेरे पास

0: ऐसे ही दे दी।
1: हाँ।
0: तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है।
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पे कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा, ये बताओ ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
0: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
1: जी जी,
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात
1: जी। तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक है, एक जाने माने प्रखर पत्रकार है, कवि है और लेखक है। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर आपका सहभाग होता है, उसमें मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना

0: चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की
1: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
0: अच्छा।
1: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
0: अच्छा।
1: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयंक कौन है जो पोस्टमैन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो, मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो, कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है, मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
0: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक
1: जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं, फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
0: जी।
1: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
0: जी, जी जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
1: संग्रह वाली कविता एक
0: दो लाइन सुना,
1: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है, तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के वे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
0: जी,
1: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी पोस्ट बॉक्स में, मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
0: रोक लिया।
1: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई, उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली

0: गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो उनकी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या बीएससी पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाए हमारे,
0: हाँ,
1: तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है। घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं।
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंद और सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपके गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी।
1: तो
0: दुष्यंत कुमार साए में धूप उनकी
1: साए में धूप
0: मशहूर रचना।
1: तो फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा। तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी
0: जी, जी,
1: तो हम
0: जी।
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे
0: जी, जी।
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बैंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं
0: जी। तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई

0: नाम का नाटक हाँ। जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या कहानी है?
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक कैरेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से
0: जी,
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं
0: जी।
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं
0: जी।
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी
0: जी जी।
1: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई ये। मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है
0: जी, जी।
1: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: इसका तो मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है
0: जी जी,
1: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
0: क्या बात है।
1: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा
0: जी।
1: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था
0: जी,
1: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ, इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
0: जी,
1: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला, बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे, तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा
0: कहाँ पर था, किस
1: वेदा कुंभा थिएटर में।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
1: जी, 9 भाषाओं में अब तक
0: मराठी में
1: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
0: जी
1: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है, तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
0: लोई नामकरण कैसे,
1: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
0: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
1: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
0: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है, और जग

0: जीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
1: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
0: जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफ जई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परिदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता, तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
0: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
1: तो एक कविता है आंसू की खबर।
0: जी सुनाए।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
0: वाह वाह, मार्मिक कविता।
1: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर।
0: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए।
0: हाँ।
1: पान खाएं सैया हमार।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की ये तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मतलब... मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है?
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक तो... और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बनाकर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बनाकर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में और वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी

0: दूर जाए वो उतना हंट करता है
1: जी जी।
0: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हंट करता है या उससे पहले ही।
1: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन,
0: क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
1: जी क्या बात है।
0: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना,
1: क्या बात है।
0: तो ये जो उधर से भी उसी तरह का प्यार रहता है।
1: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
0: देखिए। पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
1: जी जी।
0: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं
1: जी जी,
0: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है, तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
0: नहीं नहीं,
1: यहाँ सकारात्मक।
0: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
1: जी।
0: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम
1: आए
0: लगाने आए हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
1: सृजन करने आए हैं। जी जी।
0: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत किया। मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
1: नजरिया।
0: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
0: पहली बार देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गाँव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
1: जी जी।
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना, उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा,
1: इलाहाबाद के
0: अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ
1: जी।
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी
1: जी।
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा
1: जी।
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
1: जी।
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसपे सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
1: जी।
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई

उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।

0: वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
1: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप बहुत क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है, लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है हाँ। तो वो फिर प्रचार की कविता है, ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
1: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
1: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन समझा दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा, तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे
1: जी। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी खुशी,
1: और खुशी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त मुनमुन। स्वागत है आपका युवाओं के अपने जोश से भरे, दिल से जुड़े कार्यक्रम युवाणी में, जहाँ बातें होंगी आपकी, सपने होंगे आपके, और अंदाज होगा बिल्कुल युवाओं वाला।
0: दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कॉलेज की टेंशन, कभी करियर की प्लानिंग, तो कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, इन सब के बीच थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना भी तो जरूरी है।
1: और बस इसीलिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी पॉजिटिव बातें, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां और प्रेरणा से भरे किस्से, और आपके पसंदीदा गीतों का शानदार साथ।
0: तो चाहे आप सफर में हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हो, अगले कुछ पल हमारे नाम कर दीजिए,
1: क्योंकि अब शुरू हो चुका है वो सफर जहाँ हर आवाज में है उत्साह, हर बात में है अपनापन, और हर पल में है युवाओं की धड़कन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं युवाणी सिर्फ आकाशवाणी पर।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: फिर से आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, जिंदगी हमें भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इस जिंदगी में हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और अपने परिवार व समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनका असर हमारी जिंदगी के बाद भी लोगों पर बना रहता है, और उन्हीं में से एक है नेत्रदान।
1: बिल्कुल मुनमुन, हमारी आँखें हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन्हीं आँखों से हम ये खूबसूरत संसार देखते हैं, इन्हीं आँखों से हम अपने परिवारजनों का चेहरा देख पाते हैं, दोस्तों के साथ खूबसूरत पल बिताते हैं, प्रकृति के रंग देखते हैं और इस दुनिया की हर छोटी बड़ी खूबसूरती को महसूस करते हैं।
0: लेकिन खुशी, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आँखों की रोशनी से वंचित हैं। उन्होंने कभी उगते सूरज की लालिमा नहीं देखी, कभी बारिश की बूंदों की खूबसूरती महसूस नहीं की और शायद अपने परिवारजनों का चेहरा भी नहीं देखा।
1: सोचिए, अगर व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को देख ही ना पाए तो उसकी जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। लेकिन ऐसी जिंदगी में भी उम्मीद की एक किरण होती है और वह किरण बन सकती है नेत्रदान।
0: बिल्कुल दोस्तों, नेत्रदान का मतलब है किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी आंखों को दान करना, ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस लाई जा सके। यह ऐसा दान है जिसमें व्यक्ति दुनिया छोड़ने के बाद भी किसी की जिंदगी में उजाला छोड़ जाता है।
1: और कई बार लोग नेत्रदान के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान से शरीर खराब हो जाता है, कुछ परेशानी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर पूरी प्रक्रिया बहुत सावधानी और सम्मान के साथ करते हैं।
0: बिल्कुल, जरूरत है सिर्फ जागरूक होने की और दूसरों को जागरूक करने की। अगर हम सब अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: हाँ, और कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। पैसा, दौलत और चीजें यहीं रह जाती हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में किया गया अच्छा काम हमेशा याद रहता है।
0: जी हाँ, हमें यह समझना चाहिए कि नेत्रदान सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में नई उम्मीद, नई खुशी और नई रोशनी देने का एक माध्यम है। तो आइए दोस्तों, इस नेत्रदान विषय पर आपकी आंखें किसी और की उम्मीद बन सकती है, इस पर और जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर कुलवंत गौड़ से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हिमांशु नामा।
2: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, प्रकृति की तरफ से हमें कई सारे तोहफे दिए गए हैं और उन तोहफों में एक बहुत बड़ा तोहफा जो हमें दिया गया है वो है हमारे नेत्र, जिनकी सहायता से हम इस अनूठे संसार का दर्शन करते हैं। जिन व्यक्तियों के नेत्र नहीं है उनकी पीड़ा को वो स्वयं ही समझते हैं, लेकिन आज इस आधुनिक युग में विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है नेत्रदान के रूप में, जिसकी सहायता से ऐसे व्यक्ति जिनके नेत्र जो दुनिया को देख नहीं सकते वो भी पुनः इस संसार को देखने का लाभ ले सकते हैं। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम मना रहे हैं विश्व नेत्रदान दिवस, और विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर हमारे साथ आकाशवाणी कोटा के स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं शाइन इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर कुलवंत गौड़ साहब। डॉक्टर कुलवंत, आपका बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
3: धन्यवाद। मैं डॉक्टर कुलवंत गौड़ और हम पूरे हाड़ौती संभाग में पिछले 15 सालों से 200 किलोमीटर के रेडियस में नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी तक हम 1600 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति जो दुनिया छोड़ चुके हैं उनके नेत्रों से करीब 2000 से ज्यादा लोगों को वापस रोशनी दे पाए हैं।
2: जी, बहुत अच्छा काम, बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे हैं सर। और अगर बात की जाए आज जो हम मना रहे हैं विश्व नेत्रदान दिवस, तो सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं कि विश्व नेत्रदान दिवस क्यों मनाया जाता है और किस लिए मना रहे हैं हम लोग, क्या क्या कार्यक्रम इस दिवस पे आयोजित होते हैं।
3: 10 जून को पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में हम लोग नेत्रदान दिवस मनाते हैं, और नेत्रदान दिवस मनाने के पीछे कारण यह रहता है कि आमजन तक नेत्रदान के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि लोगों में अभी कई भ्रांतियां हैं, लोग नेत्रदान के प्रति जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी पहुंचा दी जाए कि नेत्रदान क्या होता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किस तरह के अंधता का निवारण कोरोना के माध्यम से, ये नेत्रदान के माध्यम से किया जा सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है।
2: जी बिल्कुल। अगर हम नेत्रदान की बात करें तो नेत्रदान किस तरह से किया जाता है, या नेत्र किस तरह लिए जाते हैं, किन व्यक्तियों के लिए जाते हैं और किस तरह से उन्हें दूसरे व्यक्तियों

0: रोपित किया जाता है, इस बारे में थोड़ी आप जानकारी दें।
1: हिमांशु जी, नेत्रदान के बारे में हम बात करें तो नेत्रदान एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। वैसे तो इसको नेत्रदान न कहकर पुतली का दान कहना चाहिए। नेत्रदान का मतलब यह है कि हमारी आंख के ठीक सामने का जो हिस्सा जो कि हमें काला दिखाई देता है, असल में काला नहीं है, इसके ठीक ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो बिल्कुल कांच की तरह से होती है, पतली होती है, इसको हम पुतली कहते हैं और इसको आम बोलचाल की भाषा में कॉर्निया भी कहा जाता है। जब भी कभी ऐसी घटना कहीं घटती है और परिजन हमें बुलाते हैं तो हम जो प्रक्रिया करते हैं उसमें इस कॉर्निया को ही लिया जाता है और इसमें मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का समय लगता है। इसमें कोई ब्लड नहीं आता, चेहरे में कोई गड्ढा नहीं होता है और एक बहुत साधारण प्रक्रिया के तहत ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जब हम कॉर्निया ले लेते हैं तो उसके ठीक बाद आंखों को बंद करके उसके ऊपर मतलब आंखों के अंदर एक पतली प्लास्टिक की एक प्लेट लगा देते हैं जिससे आंख पूरी तरह बंद हो जाती है। ऐसा पता ही नहीं चलता है कि नेत्रदान भी जैसा कुछ हुआ है। जो आपने पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें नेत्रदान होता है और किसमें नहीं होता है, तो साधारण मृत्यु जो कि घरों पर होती है या अस्पतालों में हुई है जिसके अंदर किसी तरह का ब्लड इन्फेक्शन नहीं है या कोई हेपेटाइटिस, एड्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सबसे हुई कोई मृत्यु नहीं है और साधारण मृत्यु है तो हम नेत्रदान ले सकते हैं। 2 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र का नेत्रदान संभव है। 80 वर्ष की उम्र के बाद भी नेत्रदान संभव है यदि व्यक्ति स्वस्थ है और अपना दैनिक दिनचर्या कार्य कर रहा है और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में 80, 85, 90 वर्ष की उम्र में भी नेत्रदान संभव है।
0: जी, आपने भी बताया कि कुछ विशेष बीमारियां हैं उनसे अगर व्यक्ति ग्रसित है और मृत्यु उस कारण से होती है तो उनका नेत्र नहीं लिया जा सकता। एक्सीडेंट में कई सारी मृत्यु होती है या ऐसी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो क्या इन सब वाक्यों में भी हम नेत्रदान कर सकते हैं या नेत्र लिया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की हम बात करें तो युवाओं में बहुत ज्यादा दुर्घटना ऐसी होती है कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ और उनकी अचानक मृत्यु हो गई है। तो यदि चेहरे पे कहीं कोई धूल मिट्टी के कण नहीं आए हैं और उनपे कोई ब्लड नहीं आया, चेहरा बिल्कुल साफ है, आंखें बिल्कुल क्लियर है और उस कंडीशन में हम उनकी आराम से नेत्रदान ले सकते हैं। और आपने बोला कि आकस्मिक घटना जैसे अचानक हृदयघात हो जाना या किसी ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली है तो ऐसी कंडीशन में भी नेत्रदान संभव है। अगर परिजनों की सहमति रहती है तो पोस्टमार्टम हो चाहे न हो, लेकिन परिजनों की सहमति है तो नेत्रदान संभव है।
0: नेत्रदान की जब बात आती है तो लोगों के मन में कई सारी ऐसी भ्रांतियां होती है कि नेत्रदान कर रहे हैं तो आंखें पूरी तरह से निकाल ली जाएंगी, लेकिन अभी आपने बताया कि सिर्फ एक पतली झिल्ली निकाली जाती है, तो इसी तरह से और भी कई भ्रांतियां होती है कि नेत्रदान जो करने वाला व्यक्ति है उसके कोई बीमारी है तो वो जो कोई नेत्र ले रहा है तो उसके भी बीमारी लग जाए, इस तरह की कई सारी भ्रांतियां हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी ऐसी भ्रांतियां अभी तक आपने इतने सालों के आपके कैरियर में आपके सामने आई है कि ये भ्रांतियां लोगों के ये कन्फ्यूजन होते हैं?
1: ज्यादातर भ्रांतियां 2-3 तरह की होती है। सबसे पहली मूलभूत भ्रांति तो ये आती है कि अगर हमने जन्म में आंखें दी है तो पता नहीं अगले जन्म में हमारे आंखें आएंगी नहीं आएंगी, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन भ्रांति है। लेकिन हम जो सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, देखिए दान ये सिखाता है, ये बताता है कि जब आप कोई चीज को दान करते हैं तो आपको अंतरमन में बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है और ईश्वर हमें उसको दुगुना या चौगुना करके भेजता है। तो जो आयु रही आपकी उस आयु में यदि आपने आंखों का दान किया है तो ये मान के चलिए कि अगला जन्म यदि आपका मनुष्य का होता है तो आप कुछ अच्छा ही पाकर वापस आएंगे। और दूसरा अगर चिकित्सा के कारण देखें हम तो आप देखिए ना, मेडिकल प्रोसीजर्स में कई बार शरीर के कुछ अंगों को निकाला जाता है, अपेंडिक्स काफी कॉमन है, अपेंडिक्स निकाल देते हैं हम लोग। बच्चेदानी का ऑपरेशन महिलाओं में बहुत कॉमन है, निकाल दिया जाता है। किसी भी शरीर का कोई अंग यदि कैंसर से ग्रसित हो गया है तो हम उस अंग को भी निकाल देते हैं, लेकिन हम उस समय ध्यान नहीं देते कि अगले जन्म में ये नहीं आया तो। लेकिन ये सब भ्रांति है, वो खुद जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस तरह की भ्रांति सबसे ज्यादा कॉमन है। दूसरी भ्रांति होती है कि चेहरे का बिगड़ जाना, कि भाई अगर नेत्रदान लेंगे तो चेहरा खराब हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, ब्लड आएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेत्रदान एक बहुत सरल प्रक्रिया है, पतली सी झिल्ली हम निकालते हैं, उसमें चेहरे पे कोई विकृति नहीं आती है और कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड सप्लाई होती भी नहीं है। तो जब हम कॉर्निया लेते हैं तो किसी तरह का कोई ब्लड भी नहीं आता है, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई कॉर्निया जैसा निकाला भी गया आंखों से। जैसा शरीर का चेहरा पहले रहता है वैसे ही नेत्रदान के बाद में भी रहता है।
0: बिल्कुल, नेत्रदान करने की प्रक्रिया क्या होती है? क्या व्यक्ति अपनी जीवित अवस्था में अपने जीवन में नेत्रदान के लिए कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर सकता है, मरने के बाद उसके परिजन भी नेत्रदान कर सकते हैं?
1: नेत्रदान के लिए ऐसा कोई फॉर्मेलिटी जैसा कुछ नहीं है कि फॉर्म भरना जरूरी है नहीं है। आज हमारी संस्था के पास में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो संकल्प पत्र भर चुके हैं, लेकिन अभी हमें यह भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु भी हो गई होगी तो परिवार वालों ने हमें संपर्क किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हम बात करें हमने जिनके नेत्रदान ले लिए, तो मैं समझता हूं कि आज 1600 नेत्रदान हमारे माध्यम से पूरे हाड़ौती संभाग में हुए हैं, उनमें से 1500 भी नेत्रदान ऐसे होंगे जिन्होंने कभी संकल्प पत्र भरे ही नहीं है। तो जागरूकता का कार्य, संकल्प पत्र भरना मतलब जागरूकता का कार्य। आपने संकल्प पत्र भरा, आपने लोगों में शेयर किया, उसका सर्टिफिकेट लोगों को दिखाया, सोशल मीडिया पे डाला तो लोग और ज्यादा जुड़े, बस ये सिर्फ जागरूकता का कार्य है। बाकी काम तो अंत समय में पीछे परिवार के लोगों को ही करना है, सूचना पीछे पैसे वाले लोग ही देंगे तभी ये कार्य पूरा होगा।
0: जी बिल्कुल, ये हमने बात की नेत्रदान के बारे में। जिन व्यक्तियों को नेत्र रोपित किए जाते हैं या जिनको आंखें

0: की जाती है उन व्यक्तियों को किस तरह से उनकी रोशनी वापस आती है और क्या ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको नेत्रदान नहीं किया जा सकता, इस बारे में थोड़ा बताएं।
1: देखिए कॉर्निया प्रत्यारोपण के बाद में बहुत अच्छे से रोशनी आती है, शुरुआत में 50% धीरे धीरे फिर रोशनी बढ़ती जाती है, 60-70% तक भी आती है। इसमें मूलतः ध्यान ये रखना होता है कि जब कॉर्निया प्रत्यारोपण के बाद में आंखों के अंदर दवाई बराबर डालें, धूल मिट्टी के कण बराबर न जाएं, धूप में ज्यादा काम न करें, 6 महीने के अंदर अंदर उसके अंदर काफी अच्छा चेंजेस मिलता है और एक कॉर्निया जिसको प्रत्यारोपित कर ऐसा व्यक्ति दोबारा दुनिया देख पाता है। अब आपने पूछा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नेत्रदान के माध्यम से रोशनी नहीं देख पाते, तो देखिए हम जिस तरीके की अंधता को दूर कर रहे हैं वो कॉर्निया की अंधता है। जो हिस्सा हमने लिया वो हिस्सा यदि सामने वाले का खराब हो रहा होगा तो हम उसके अंदर लगा देंगे और वो दुनिया देख सकता है। लेकिन जब हम काम करने के दौरान पाते हैं कि कई लोग हमें जब संपर्क करते हैं कि हमारा बच्चा या मेरा पास का कोई रहता है पड़ोसी वो दुनिया नहीं देख पा रहा है काफी समय से, हम उससे पूछते हैं भाई कब से, कि बचपन से ऐसा है, तो बचपन से होने वाली अंधता का इलाज हमारे यहाँ संभव नहीं है। हम जिस तरीके की अंधता को दूर कर रहे हैं वो है कॉर्निया की अंधता। कॉर्निया की अंधता विटामिन ए की कमी, चोट लगना, केमिकल गिरना, कई बार बच्चे आजकल जैसे खेल कूद में कुछ शार्प इंजरी लग गई वो हो गया, बच्चों को बहुत ज्यादा आंखों को मसलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं स्कूल क्लास में बैठे हुए हैं, धूल मिट्टी के कुछ कण है, आंखों को बहुत ज्यादा मसला, तो उसकी वजह से भी कॉर्निया के जो कर्वेचर है, कॉर्निया का जो घुमाव है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से भी कॉर्निया की अंधता पैदा होती है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने के बाद भी कई बार कॉर्निया की अंधता देखी गई है। विटामिन ए की कमी जैसे मैंने बताया, फटाके वटाके भी जो कई बार केमिकल गिर जाता है ना, बच्चे दिवाली में फटाके चलाते उसका कुछ केमिकल अंदर आंखों में चला गया उससे भी कॉर्निया खराब हो जाता है, तो उनके अंदर ही कॉर्निया लगाया जाता है। और हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख से ज्यादा कम्युनिटी ऐसी है जो कि कॉर्निया की अंधता से पीड़ित है, लेकिन जो कॉर्निया मिल रहे हैं वो सिर्फ हजारों की संख्या में मिल पाते हैं। और ये तो 1.5 लाख वो लोग हैं जो कि नोटेड हैं, मतलब जो कि चिकित्सकों के पास में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो आज भी चिकित्सकों के पास में नहीं आए।
0: बिल्कुल, तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस संबंध में जागरूकता की, और नेत्रदान के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा तब जाके ये समस्या कुछ हद तक हल हो सकेगी। अगर हम बात करें आपकी, तो आपका जो अनुभव है इस क्षेत्र में वो क्या रहा है? कई सारे ऐसे वाकई होंगे आपके सामने जिनसे आपको पता लगा होगा, नेत्रदान करने हम जाते हैं जब ऐसा भी होता है, तो इस तरह के क्या वाकई आपके साथ हुए हैं ताकि हमारे जो सुनने वाले श्रोता उनको थोड़ी जानकारी मिले कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: देखिए हमें काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं, पिछले 5 सालों से हमारे अनुभव बहुत अच्छे जा रहे हैं, मतलब हमें बड़ा खुशी होती है कई बार कि हमने ग्राउंड लेवल पे लोगों को जाके समझाया, तब आज लोगों में इतनी जागरूकता आ चुकी है कि अब जब कभी कोई ऐसी दुखद घटना कहीं घटती है तो आधे घंटे के अंदर हमारे पास संपर्क कर लिया जाता है, मृत्यु जैसे डॉक्टर्स ने कहा कि डेथ हो गई है, तो अब वो लोग पंडितों को और मतलब लकड़ियों के लिए बाद में फोन करते हैं, पहले वो हमें फोन करते हैं कि एक शुभ कार्य हो जाए, क्योंकि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। एक समय था जब हम उनके घर जाते थे तो लोग हमें मना करते थे कि हमें ये कार्य नहीं करना है, और वही सब भ्रांतियां जिस पर हमने बात करी वो सब भ्रांतियां उनके दिमाग में रहती है कि हमें अंतिम संस्कार में भी समय लगेगा और आंख चेहरा खराब हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अब जब लोगों को समझ में आ गया कि एक बहुत पुण्य का कार्य है ना, और जब हम वहां से 2 आंखें लेकर जाते हैं तो कहने के उनके मन में संतोष रहता है कि हमारा व्यक्ति अभी भी जीवित है। आज भी कई घर ऐसे हैं जब उनके घरों पर हम मिलने जाते हैं जहां नेत्रदान हुआ है, तो उन्हें अपने मृत परिजनों की तस्वीर पर माला ही नहीं चढ़ा रखी, क्योंकि वो उनके लिए तो आज भी जीवित है। तो ये भावना डेवलप करना, इतना लोगों में विश्वास पैदा करना कि मृत्यु होते ही वो हमें संपर्क करके पहले नेत्रदान की प्रक्रिया को पूरा कराते हैं, हम मानते हैं कि ये हमारे कार्य की असली जीत है।
0: एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि आंखों के संबंध में जब बात आती है तो मोतियाबिंद या काला पानी जैसी समस्या एक आम समस्या है जिसका इलाज लगातार चलता रहता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति जिनके मोतियाबिंद हो चुका हो वो भी नेत्रदान कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, हर वे व्यक्ति जो चश्मा लगाया हुआ है, जिसके थायराइड, ब्लड प्रेशर या इसकी कोई भी ऐसी मेडिसिन चल रही हो, जो रेगुलर हार्ट की कोई मेडिसिन चल रही हो, वो सब लोग अपना नेत्रदान कर सकते हैं। क्योंकि मोतियाबिंद होना और चश्मे का लगना ये सब लेंस की कमजोरी, और लेंस तो बहुत पीछे होता है, हमें तो केवल कॉर्निया चाहिए। कॉर्निया आंख के ठीक सामने का वो हिस्सा है जो पतला है और सफेद सामने से ट्रांसपेरेंट होता है, ये ठीक वैसे ही होता है जैसे घड़े के ऊपर कोई ढक्कन रखा हुआ है, ये हेलमेट का जो कांच होता है। अब इतना सा पार्ट हमने लिया है और उसको भी वैसे भी जब मृत व्यक्ति को थोड़ी देर भी कोई आदमी घर पे नहीं रखता है और जल्दी से उसको जलाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं या दफनाने की तैयारी करते हैं, उससे पहले अगर ये छोटा सा दान हो जाए और उससे किसी की जिंदगी रोशन हो जाए तो इससे बढ़िया श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती है।
0: बिल्कुल, नेत्र दान लेने के बाद किस तरह से आप उन नेत्रों को सुरक्षित रखते हैं और कितने समय के अंदर उनको रोपित करने का अवसर आपके पास रहता है?
1: हमारी संस्था पूरे हाड़ौती में आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान, जो कि जयपुर की एक राजस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है, हमारे पूरे राजस्थान से लिए हुए नेत्रदान, चाहे फिर हमने लिया है किसी और संस्था ने लिया है, वो सीधे वहीं पर ही जाते हैं। उनका प्रत्यारोपण अगले 14 दिन के अंदर निःशुल्क रूप से करा दिया जाता है
0: जी।
1: तो एक डायल्यूशन होता है जिसके अंदर हम उस कॉर्निया को रखते हैं, फिर उसको कोल्ड चेन यहां से मेंटेन करते हुए यहां से उसको बस में रखा जाता है, यहां से जयपुर

0: पहुंचाया जाता है। जयपुर के अंदर जब उनका सारा आकलन किया जाता है, उसके बाद में सरकार के द्वारा दी गई मान्यताओं के आधार पर, मानकों के आधार पर उन बच्चों को उनके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, सारा निःशुल्क होता है।
1: जी बिल्कुल। तो ये नेत्र देने वाला सुनिश्चित हो सकता है कि उसके नेत्रों का एक सदुपयोग ही होगा, किसी तरह से उसमें कोई नुकसान नहीं होगा।
0: बिल्कुल। जब भी हम यहाँ से कॉर्निया को लेते हैं और जिस द्रव्य में डाल के भेजते हैं, लिक्विड में, उसमें एक नाम लिखा हुआ होता है, उसके बाद आगे कहीं वो नाम जाता नहीं है। ठीक है, जब राज्य सरकार के पास, जब आई बैंक के अंदर, आई बैंक सोसाइटी में जब वो कॉर्निया पहुंचते हैं, तो उनका प्रत्यारोपण शत प्रतिशत सही रूप से किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को पहले दे दिया या किसी का कहीं कोई आर्थिक लाभ लेकर किसी को पहले दे दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और अगर कभी कोई व्यक्ति ये जानना भी चाहता है कि नेत्रदान के बाद में पूरी प्रक्रिया का होता क्या है, तो जयपुर में आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान का एक बहुत बढ़िया आई बैंक है, वहां पर जाएं, पूरे प्रोग्राम को देखें कि किस तरीके से कॉर्निया आता है और किस तरीके से कॉर्निया दूसरे दृष्टिबाधित लोगों को लगाया जाता है।
1: जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई नेत्रदान के संबंध में, और अब इस विषय में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि नेत्रदान से डरे ना और नेत्रदान को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं।
0: देखिए, अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मृत्यु के बाद में शरीर को जलाए जाने से बेहतर है कि उसके वैसे अंग, चाहे फिर वो आंखें हो, त्वचा हो, और यदि ब्रेन डेथ होती है तो उसके अंग हो, लीवर, हार्ट, किडनी, सब हो, वो सब दान करके जाएं। क्योंकि देखिए, जन्म हो गया, ये तो एक आप आ गए दुनिया में, और लेकिन आपका जाना बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। कहते हैं कुछ लोगों ने कहा है कि आपकी जन्म इतना महत्वपूर्ण है जितना आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। आप दुनिया में कुछ आए तो ऐसा कार्य करके जाइए कि लोग आपको याद करें।
1: जी,
0: तो नेत्रदान अंगदान से बड़ा कोई ऐसा है नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी कभी इस दुनिया से जाएं तो अपनी दोनों आंखों का दान करें, जिससे दो दृष्टि बाधित लोग दुनिया देख सके।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर कुलवंत गौर साहब, आप आकाशवाणी कोटा के स्टूडियो में आए विश्व नेत्रदान दिवस पर, और आपने नेत्रदान के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी हमें श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना नेत्रदान विषय पर, आपकी आंखें किसी और की उम्मीद बन सकती है, और इस पर जानकारी प्रदान की डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने, और इनसे बातचीत कर रहे थे हिमांशु नामा।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवानी और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मुनमुन
1: और मैं हूं आपकी अपनी खुशी।
0: दोस्तों आज जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। इस दुनिया में कितनी अलग अलग चीजें हैं, कहीं अलग अलग भाषा बोली जाती है, कहीं अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, कहीं खाने का स्वाद अलग होता है और कहीं त्योहार मनाने का तरीका। क्यों खुशी?
1: और यही तो हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत बात है। सोचिए अगर हर इंसान एक जैसा होता, हर जगह सब कुछ एक जैसा होता, तो शायद दुनिया इतनी रंगीन और दिलचस्प नहीं लगती।
0: हाँ, और इन्हीं अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और सोच के बीच आपसी समझ और प्यार को बढ़ाने के लिए, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
1: दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संवाद इतना जरूरी क्यों है, यानी कि कम्युनिकेशन। तो दोस्तों जवाब बहुत आसान है। जब हम किसी से बात करते हैं, उसकी सोच को समझते हैं और उसके विचारों का सम्मान करते हैं, तब दूरियां कम होने लगती हैं।
0: और हाँ खुशी, और कई बार हम बिना जाने किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं ना, लेकिन जब

0: बातचीत करते हैं उस संबंधित व्यक्ति से, तो हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती
1: बिल्कुल
0: है, एक सोच होती है और एक अलग अनुभव होता है।
1: तो दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। हम कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। ऐसे समय में सिर्फ जुड़ना ही काफी नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना भी उतना ही जरूरी है।
0: हाँ, और खुशी जब समझ बढ़ती है ना, तो सम्मान बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: और जहाँ सम्मान होता है, वहाँ प्यार, शांति और भाईचारा अपने आप आ जाता है। इसलिए ही तो मनाया जाता है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: तो दोस्तों, अलग होना कोई दूरी नहीं बनाता, बल्कि हमें एक दूसरे से कुछ नया सीखने का मौका देता है। तो आज से कोशिश करें कि किसी को देखकर राय बनाने से पहले उससे बात करें, उसे समझें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें,
0: क्योंकि जब बात दिल से होती है तब दुनिया और भी खूबसूरत बन जाती है।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।
1: मुनमुन, आज तुमने जो कुर्ता पहना है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
0: बिल्कुल, थैंक यू।
1: इसकी जो प्रिंट है ना वो बहुत अच्छी लग रही है।
0: हाँ, वो तो है ही सही।
1: और राजस्थान में अगर हम प्रिंट्स की बात करें तो जैसे राजस्थान तो प्रिंट्स के लिए ही जाना जाता है, हमारे यहाँ कितनी विभिन्न प्रकार की कलाएं देखने को मिलती हैं।
0: हाँ, और राजस्थान ही क्या खुशी, अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो भारत की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, हस्तकलाएं हैं, उनके लिए तो वो पूरी दुनिया में मशहूर है। हर राज्य की अपनी एक पहचान है। और जैसे कि तुम कह रही थी, बात करें हमारे राजस्थान की, तो यहाँ के तो रंग, कला और परंपराएं लोगों का दिल जीत लेती है।
1: हमारे यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, परंपराएं हैं, प्रिंट्स हैं, वो आज भी पुराने गांवों में देखने को मिलती हैं।
0: बिल्कुल मिलती हैं।
1: और राजस्थान की जो पारंपरिक कलाओं में सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें जो देखने को मिलती है वो है सांगानेरी और बगरू पेंट।
0: हाँ,
1: ये एक विशेष स्थान रखती हैं। ये सिर्फ कपड़ों पर बनी डिजाइन नहीं बल्कि ये राजस्थान की संस्कृति और कलाकारों की मेहनत की पहचान है।
0: और जब तुमने बात की है सांगानेरी प्रिंट की, तो सांगानेरी प्रिंट जो है ना वो राजस्थान के सांगानेर क्षेत्र से प्रसिद्ध हुई।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रिंट की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी बारीक और सुंदर डिजाइन।
1: हाँ,
0: इसमें है ना फूल, पत्तियां, बेल, बूटे और पक्षियों की भी ना, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो हाथी की जो डिजाइन है ना, हाथी हुए
1: जो हमारी लोक संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं,
0: और पशु पक्षियों में जैसे चिड़िया हुई, इनकी जो प्रिंट होती है वो सांगानेरी प्रिंट में बहुत खूबसूरती से दिखाई देती है।
1: क्या बात है। और सांगानेरी प्रिंट में ज्यादातर सफेद और हल्के कपड़े पर चमकीले रंगों का यूज किया जाता है। इसकी सुंदरता और साफ सुथरी डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आती है।
0: और ये तो थी बात सांगानेरी प्रिंट की, और अब मैं तुम्हें बताऊं बगरू प्रिंट की। तो बगरू प्रिंट राजस्थान के बगरू क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें नेचुरल कलर्स और पारंपरिक लकड़ी के ब्लॉक से तैयार किए जाते हैं।
1: हमारे यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत फेमस है। और बगरू प्रिंट का खास बात एक ये भी है कि इसमें गहरे रंगों जैसे लाल, काला, भूरा और नीला रंग अधिक यूज किया जाता है, और इसकी डिजाइन सरल लेकिन बहुत आकर्षक लगती है देखने में।
0: खुशी, देखो ना कि हमारी एक दोनों सांगानेरी और बगरू प्रिंट दोनों राजस्थान की है, लेकिन एक प्रिंट में तो हम हल्के रंगों का यूज कर रहे हैं और एक में हम डार्क कलर्स का यूज कर रहे हैं।
1: यही तो हमारे राजस्थान की पहचान है।
0: बिल्कुल। और जो दोस्तों सांगानेरी और बगरू प्रिंट है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। इन प्रिंटों से बने कपड़े, साड़ियां, दुपट्टे आजकल लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।
1: जैसे मैंने पहचान लिया कि तुमने कुर्ता भी कोई राजस्थानी डिजाइन का पहना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये भी हमारी पहचान है कि लोग यहाँ आएंगे, हमारी वेशभूषा को पहचानेंगे।

0: ये हमारे कपड़े खरीदेंगे तो ये हमारा प्रचार प्रसार भी होगा।
1: बिल्कुल। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हमारी प्रिंट है, चाहे वो कोई भी हो, राजस्थान की कोई भी कला हो, कोई भी परंपरा हो, कोई भी हस्तकला हो, इनको बनाने में हमारे कलाकारों की मेहनत और कला छिपी होती है। तो इसका हम सम्मान करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन सबका यूज़ करें।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, और आप सुन रहे हैं आपके दोनों रेडियो दोस्त आपके अपनी खुशी और
1: मुनमुन को।
0: दोस्तों, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए देश के कोने कोने से देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे ही वीर नायकों में केरल के ए दामोदर मेनन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, दामोदर मेनन का जन्म 10 जून 1906 को केरल के करमलूर यानी कोच्चि में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा केरल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने त्रिवेंद्रम के महाराजा कॉलेज और बर्मा के, जो कि अभी वर्तमान में म्यांमार में है, वहां से रंगून यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की।
0: हाँ, और मुनमुन, दामोदर मेनन जी ने महात्मा गांधी के विचारों और उनके अहिंसा के सिद्धांत से गहराई से प्रभावित हुए। फिर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
1: हाँ, और गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। पालक्काड़ में एक बैठक के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोयम्बटूर सेंट्रल जेल में 9 महीनों की सजा काटनी पड़ी।
0: लेकिन मुनमुन, इसके बाद भी वो नहीं रुके। जेल से रिहा होने के बाद 1931 में केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन बाद में फिर 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।
1: यहाँ दामोदर मेनन की गिनती केरल के प्रथम श्रेणी के पत्रकारों में होती थी। उन्होंने समदर्शी, स्वतंत्र, कहालम, पावर, शक्ति जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
0: और कन्नूर जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने राष्ट्र विज्ञानियम नामक एक पुस्तक भी लिखी,
1: और उन्होंने एकीकृत केरल आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता और संयुक्त केरल कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में भी काम किया।
0: दोस्तों, दामोदर मेनन का जीवन हमें ये सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से प्रेम देश की सेवा कैसे की जाती है। उनके द्वारा दिए गए त्याग, उनकी निर्भीक पत्रकारिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा आज हर भारतीय को प्रेरित करती है।

0: आइए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको करंट अफेयर्स की दुनिया में और बताते हैं कि क्या कुछ खास रहा देश दुनिया में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए 14 दिवसीय योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की है, जिसका समापन 21 जून को अमरावती में होगा।
1: हाँ, और वहीं दोस्तों, भारत ने जापान को 4-1 से हरा कर 2026 पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी का खिताब रिकॉर्ड तीसरी बार अपने नाम किया।
0: और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह चरण एक के दौरान कुल 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसमें गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री एयर कमांडर प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया।
1: और वहीं दोस्तों, बीकानेर के गजनेर वन्य जीव क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने छिपकली एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की, जिसे मैसालीना विश्नोई नाम दिया गया।
0: और दोस्तों, ग्रासा मिलेट्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को मोटे अनाजों पर शोध और न्यूट्रिशन इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 में इमर्जिंग हेल्थ टेक एंड न्यूट्रिशन इनोवेशन स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। तो श्रोताओं, ये थे करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आज की शानदार यात्रा को यहीं ब्रेक लगाने का, पर याद रखना, जिंदगी की इस भाग दौड़ में अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना, सेहत का ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना और अपनी पॉजिटिव वाइब से दुनिया को रोशन करते रहना। फिर मिलेंगे आपसे नई नई बातें, नई सोच और ढेर सारी एनर्जी के साथ। तब तक रेडियो ऑन रखना और दिल को ट्यून रखना। अब अनुमति दीजिए आपकी दोनों रेडियो दोस्त, मुझे यानी मुनमुन को
1: और खुशी को, नमस्कार।

0: हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक और पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को है, अब आप सुनेंगे हम

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। श्रोताओं, शाम के 6:05 होने को हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम फिल्म संगीत की ओर। लेकिन उससे पहले आपको दे देते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आज शाम 7 चौपाल कार्यक्रम में आप सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनेंगे। खरीफ फसलों को कीट रोगों से कैसे बचाव करें, ये विषय होगा। इस विषय पर अगर कोई भी श्रोता, कोई भी किसान भाई ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नाथूलाल मीणा। आप उनसे फोन करके इस संदर्भ में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। विषय होगा खरीफ फसलों को कीट रोगों से, खरीफ फसलों का कीट रोगों से बचाव कैसे करें। चौपाल कार्यक्रम शाम 7 आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। शाम 7 कार्यक्रम चौपाल के तहत। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम और फिल्म संगीत कार्यक्रम में पहला नगमा फिल्म हम है राही प्यार के से।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे देते हैं। शाम 7 बजे आज किसान भाइयों के अपने कार्यक्रम चौपाल में सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप जुड़ेंगे। खरीफ फसलों का कीट रोगों से कैसे बचाव करें, इस विषय पर जो भी किसान भाई ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो डॉक्टर नाथूलाल मीणा जो विशेषज्ञ हैं वो इस कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम में स्टूडियो से जुड़ेंगे। तो आप कॉल करके इस विषय पर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सजीव फोन इन कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत आप खरीफ फसलों का कीट रोगों से बचाव कैसे करें, इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जुड़ते हैं फिर से फिल्म संगीत कार्यक्रम से और आपको सुनवाते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया से ये गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। श्रोताओं, चौपाल कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको दे देते हैं। आज शाम 7 से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम चौपाल में रहेगा। सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ फसलों को कीट रोगों से कैसे बचाएं। इस दौरान विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नाथूलाल मीणा, जो कि डीन हैं कृषि महाविद्यालय हिंडोली बूंदी से। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके। टेलीफोन नंबर है 0744, यानी कि कोटा का एसटीडी कोड 0744। फोन नंबर नोट कर लीजिए 29411 42 294 1142।

फिल्म इम्तिहान से अगला गीत किशोर कुमार की आवाज है मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको दे देते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में गुरुवार यानी कि कल दिनांक 11 जून को प्रातः 8:15 पर आप हेलो डॉक्टर कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। इस दौरान हमारे विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर राजश्री गोहदकर। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0744 जो कि कोटा का एसटीटी

कोड भी है 0744। फोन नंबर आप नोट कर लीजिए 2941142। जी हाँ, 2941142। एक बार फिर से सुन लीजिए, दिनांक 11 जून गुरुवार प्रातः 8:15 से 9 बजे तक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह, इस विषय पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर राजश्री गोहदकर से इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान फोन करके जुड़ सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0744 2941142।

आज शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आप सजीव फोन इन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो भी किसान भाई खरीफ फसलों को कीट रोगों से कैसे बचाएं इस विषय पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नाथूलाल मीणा से आप फोन करके बातचीत कर सकते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0744-29-4-1142, 0744-29-1142, आज शाम 7 बजे। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार एवं जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। शाम के 6:27 हुए हैं और आपसे बस थोड़ी देर में पहले सुनिए शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर होगी जिले की चिट्ठी, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक अवसर को देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को राष्ट्रीय यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग बताया है। इस उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी विकास योजनाओं और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बनाने के दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक में शिरकत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री के सम्मान में आज एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास का प्रतीक बताया।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें पत्र लिखकर 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा कि श्री मोदी की नीतियों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आधुनिक स्वरूप मिला है। इस उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में देवस्थान विभाग की ओर से विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई।
2: ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शक्ति यजमानो अविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बुद्धिर्षगं समान आयुः प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: इस उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर नारी चौपाल, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी रखे गए। प्रदेश भर से विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। प्रगतिशील किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लमोरिया ने भी राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में

0: होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री वैष्णव आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वे MNIT भी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज जयपुर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं जो राज्य के 94% क्षेत्र को कवर करते हैं। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल FM ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन पद्मश्री प्रसून जोशी भी जयपुर पहुंच गए हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 168 मेगावाट क्षमता का ये केंद्र गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक होगा, जहां उत्पादों और AI क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4-लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। इससे करीब 1,359 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से BOT मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पर विकसित किया जाएगा। इससे नागौर और बीकानेर के बीच संपर्क बेहतर होगा, साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से उत्पादन इसी महीने शुरू होने के आसार हैं। मुख्य सचिव V.श्रीनिवास ने बताया कि इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकेंगे। मुख्य सचिव आज दिल्ली से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि HPCL रिफाइनरी के LPG और अन्य उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक यहां से 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल सालाना रिफाइन किया जा सकेगा। उन्होंने रिफाइनरी उत्पादनों की बिक्री संभावनाओं को तलाशने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। जयपुर खो नागौरियान पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में थानाधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इस भीषण अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं पुलिस टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाते हुए अब तक 5 अवैध पटाखा फैक्ट्री गोदामों को सील किया है। हादसे के बाद इस क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, मशीनें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच FSL टीम मौके से नमूने इकट्ठे कर मामले की जांच कर रही है। राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। अधिकतर हिस्सों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं दिल्ली और हरियाणा से सटे राज्य के कुछ जिलों में

बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी आंधी चली। अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई। इस बीच श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, फलौदी, बीकानेर और जैसलमेर में दिन के पारे में उछाल आने से लू का सबसे अधिक असर रहा। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। राज्य में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 14 जून तक तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसी दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। विभाग ने इन संभागों के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी। और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ोला ने तैयार किया है। जल संरक्षण से विकास तक प्रशासनिक सक्रियता और जनभागीदारी का एक अनूठा संगम बीते माह जिले में देखने को मिला। एक तरफ राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचा, तो दूसरी ओर जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े अभियानों में आमजन की भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। इस दौरान मौसम ने भी कई रंग दिखाए। मई के अधिकांश दिनों में तेज गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, लेकिन जून की शुरुआत में आंधी, बादल और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कुल मिलाकर बीता महीना सलूम्बर में विकास कार्यों, धार्मिक आयोजनों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सक्रियता के नाम रहा। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक पेयजल की समस्या कई जगह सामने आई। ऐसे समय में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना रही। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने विभिन्न पेयजल योजनाओं, जलाशयों और हैंडपंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी गांव में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। इस बीच जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सबसे बड़ा और चर्चित अभियान बनकर उभरा। 25 मई से 5 जून तक चले इस अभियान के तहत जिले भर में जल चौपाल, श्रमदान, पौधरोपण, साइकिल रैली, जल स्रोतों की साफ सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरणी नदी, जयसमंद झील, कमल तलाई और विभिन्न गांवों की बावड़ियों और तालाबों पर सफाई अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास था कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम रहने के बजाय जन आंदोलन का रूप ले। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, महिलाएं और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इन गतिविधियों में शामिल हुए। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां पूरे महीने चलती रहीं। जिले में संचालित 10 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए। पंचायती राज विभाग को 6 लाख, शिक्षा विभाग को 4 लाख और वन विभाग को 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई और जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। एक पेड़ माँ के नाम

0: और एक पेड़ लोकतंत्र के नाम जैसे अभियान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहले हुई। टीबी मुक्त भारत अभियान, एचपीवी वैक्सीनेशन, डेंगू जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग ने योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। वहीं जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन शटर डाउन की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान के तहत बिना पंजीकरण और बिना डिग्री संचालित क्लिनिकों, झोला छाप डॉक्टरों और अवैध जाँच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में योगाभ्यास का सिलसिला चल रहा है। जैसमन की पाल और सेरिंग तालाब पर नियमित योग किए जा रहे हैं। जिला कारागृह में बंदियों के लिए योग कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रशासन और आयुर्वेद विभाग का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुँचाना रहा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसमंद की पाल स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी लोगों ने देखा। इसके अलावा विभिन्न गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, कथा, भजन संध्या और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी रही। ईद उल अजहा पर भी लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। सलूमर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माय प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माय शिरकत करण रो कार्यक्रम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ना 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। और पचपदरारी तेल रिफाइनरी इनी महीना उत्पादन शुरू है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। श्री नरेंद्र मोदी देश माए सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी ने ई सारू बधाई दीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए राष्ट्रपति इन देश री जनता रा वारी अगुवाई माए अटूट भरोसा रो सबूत बतायो। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन वारा बधाई संदेश माए प्रधानमंत्री मोदी रा ई कार्यकाल ने देश माए बदलाव लावन वालो जमानो बतायो। ए मौके आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए री नई दिल्ली माए खास मीटिंग राखी छी। मीटिंग माए एनडीए गठबंधन रा सदस्य दला और भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता मौजूद रहा। इस दौरान देश रा विकास रा न्यारा न्यारा कार्यक्रम और बुनियादी योजनावां सागे साल 2047 ताई देश ने विकसित बनावन रा नजरिया रो जायजो लियो छियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई मीटिंग में शामिल थिया। केंद्रीय मंत्रिमंडली प्रधानमंत्री मोदी रमान माए आज एक प्रस्ताव पास कैरर वाना ई उपलब्धि सारू बधाई दीनी। मंत्रिमंडल री मीटिंग पाछे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने इन री जानकारी दीनी। वे प्रधानमंत्री री ई उपलब्धि ने देश री 140 करोड़ जनता रा भरोसा री निशानी बतायो।
2: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई प्रधानमंत्री मोदी रा लाडला 12 साल रा बेहतरीन कामकाज सारू वाना कागज लेखर राज्य री 8 करोड़ जनता री ओर शुभकामनावां दीनी है। मुख्यमंत्री खतमाए मांडियो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए प्रदेश ही विकसित राजस्थान 2000

0: 2047 रो संकल्प साचो करण ओड़ी बढ़ रियो है। ई मौके आज देवस्थान विभाग री ओरु आखा राज्य माय खास पूजा अर्चना कर खुशहाली री कामना करी ची।
1: ओम तत्वाजानी ब्रह्मणा वंदमान सुदा जास्ती यजमानो अविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयु प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली माय कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली एनडीए सरकार हर हलका और हर तबका रा भला सारू काम कीनो है।
2: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: ई मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में राखी चिया। देश परदेश न्यारा न्यारा नेतावा और संगठन नारी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने आ उपलब्धि हासिल करन पर बधाइयां और शुभकामनावां मिल रही है। प्रगतिशील किसान यूनियन रा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लामोरियाई देश सेवा सारू समर्पित प्रधानमंत्री मोदी रा व्यक्तित्व ने अनुकरणीय बतायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली माय नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग री सदारत करन रो कार्यक्रम है। राष्ट्रपति भवन माय भेवन वाली मीटिंग रो खास मुद्दो 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास राखी जियो है। मीटिंग माय उद्यमिता और कौशल विकास ने बढ़ावो देवन और देश माय काम धंधा रा स्थायी मौका मुहैया करावन रे बारा माय विचार करियो चावेला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल जयपुर पधारण रो कार्यक्रम है। वे आकाशवाणी परिसर जैसलमेर रा रामगढ़ माय 20 किलोवाट बूतारा एफएम ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करेला। इस आगे प्रदेश माय एफएम ट्रांसमीटर री तादाद 39 हो जावेला। फिलहाल राज्य माय आकाशवाणी रा 38 केंद्र है जो प्रदेश रा 94% हलका ताई पहुंचे है। श्री वैष्णव रो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो करन रो ही कार्यक्रम है। ई पाछे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माय कृषि अनुसंधान केंद्र माय राख्या जावन वाला विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माय शामिल भेला। इरे जरिए देश माय लारला 12 साल माय भिया ऐतिहासिक विकास सुशासन और जनता रा भला रा कामारी जानकारी समाज रा हर तबका ताई पुकाई चावेला। केंद्रीय मंत्री प्रदेश भाजपा मुख्यालय माय राखे चावन वाली प्रेस वार्ता नई संबोधित करेला। प्रसार भारती रा अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जयपुर पथार क्या है। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार चैनी आज जयपुर पधार्या। अमरीकी कंपनी मेटा गुजरात रा जामनगर माय मारो पहलो एआई सक्षम डेटा सेंटर खोलन रो ऐलान कीनो है। ओ दुनिया रा सब बत्ती हलचल वाला डिजिटल बाजारा माय शामिल फैला जठे सामान और एआई जुड़िया बूता ने मजबूत बनावन सारू विश्व स्तर रो बुनियादी ढांचो मुहैया करायो चावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो है कि देश में CNG री कोई कमी नहीं है। वे कहो कि घरां ताई पाइपलाइन रे जरिए ही रसोई गैस रिपूर्ति करी जा रही है। श्री पुरी कहो कि LPG कनेक्शन ने PNG कनेक्शन माय बदलन री कोशिश करी जा रही है। केंद्रीय मंत्री कहो कि कुछ लोग गलत जानकारियां देर दुनिया रा मौजूदा हालात रो फायदो उठावन री कोशिश कर रिया है।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है। तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन

राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन रा काम ने मंजूरी दे दी नी है। इन्ने करीब 1,359 करोड़ रुपए बत्ता खर्चू बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल माथे विकसित करियो चावेला। इन नागौर और बीकानेर बीच जुड़ाव बेहतर वेला। बालोतरा जिला रा पचपदरारी राजस्थान रिफाइनरियों उत्पादन इनी महीना सरूभे वन रा आसार है। मुख्य सचिव V. श्रीनिवास बतायो का

0: गांव गांव और गलिया गलिया में घूम रहे गोपाल, सुन लो बण भायो आ गिरे चौपाल, अजी घर में छालर बच गया जी और आंगन में तरपाल, ओ दाजी बड़ाओ ना आवाज रेडिया की आग्यो च कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम को आनंद ले बाला संदा बण भाया काना श्यामा बना के अड़ीसू घणी घणी राम राम। बण भायाओ तावड़ो जोरा को पड़ रो छे ना अजी, अब तो जाना डासा डूसो आबा लाग गयो गर्मी के मारे, छाटा छूटा पड़ता ही तो और मौसम खराब हो गयो। पर अब आबा वाली जो अपनी खरीफ की फसला छे वहां को भी तो स्वास्थ्य देखनो छे, तो वहां कशा कीट और रोग लाग सके छे, वहां सु आपन कशा बचाव करा, यो तो सोच बागो विषय छे। पर विषय पर अगर जानकारी विशेषज्ञ सु ही मिल जाओ और सीधा फोन पर पूछबा को भी अवसर मिल जाओ तो इसु बड़ी बात कही छे। अजी आज ले रहा छा सजीव फोन इन कार्यक्रम चौपाल, और चौपाल में आज को विषय छे खरीफ फसला का कीट और रोगा सु कशा अपन छे ना बचाव करा। और आज आपनी लारा स्टूडियो में मौजूद छे डॉक्टर नाथूलाल मीणा जी, आप छे डीन कृषि महाविद्यालय हिंडोली में। लियो स्वागत करा अपन डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत।
1: राम राम साहब।
0: डॉक्टर साहब अपना बण भाया ताई बता दिया कि जो सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहे तो इमें सीधा आप फोन कर सको छो, और फोन नंबर नोट करो 07442941142, और विषय खरीफ फसला में कीट और रोग आसू अपन कशा बचाव करा। बण भाया जब आप फोन करो तो या तो रेडियो से दूर चल जाओ, या रेडियो से दूरी बनाए रखो, या रेडियो ना बंद कर लो, और विषय पर ही अगर आप प्रश्न पूछेगा तो ज्यादा अच्छी रहेगी, और आवाज थोड़ी ऊंची रखो ताकि आपकी आवाज वहां तक पूगे और डॉक्टर साहब जो है सही को उत्तर दे पाओ। डॉक्टर साहब बात खरीफ फसला की चल रही है, तो अबार खरीफ फसला में कशा कशा रोग या कशा कशा कीड़ा लाग सके?
1: श्यामा बहन, निश्चित रूप से खरीफ फसलान की तैयारी को जो टाइम चे वो अपना आगे हो कहे चे, जैसे आषाढ़ी चे इनको टाइम शुरू हो गयो, तो अपने यहाँ हाड़ोती में मुख्य रूप से धान चे, सोयाबीन चे, उड़द चे, मूंग चे, मक्का चे, तिल चे, ये फसलान की खेती मुख्य रूप से हो चे। परंतु इस पहले एक और जानकारी मारे दिमाग मारी चे जो किसान भाईयान सु चर्चा करबो चाहू छो। जो आपने रबी में जो फसला काट तैयार करी छे, गेहूं छे, सरसों छे, चना छे, मूंग छे, मसूर छे, जितनी भी दाल वाली फसला छे, वाने साल भर कशे सुरक्षित राखा। देखबा में यह आई छे कि आपन कतरी कोशिश करा, जो आपन नाज बीज के लिए राखा, चाहे खाबा के लिए राखा, चाहे दाल राखा, सब में कीड़ा लागे छे।
0: बिल्कुल।
1: तो आज एक ऐसी जानकारी मु आप लोगों के बीच में चर्चा करबो चाहो, जो कया बात ध्यान से सुन ली तो आज बार बार नाज में कीड़ा न लगेगा, और या कोई छोटी मोटी नुकसान कोई न आपने फसल कटाई के बाद में अगर आपने उचित भंडारण न करा तो 9-10% तक अनाज भंडारण में खराब हो जाओ छे, और या एक बहुत बड़ी मात्रा छे जिसो आपने सही ढंग से भंडारण करके जो भूखा पैसा लोग छे जहाँ के लिए टाइम पर रोटी न मिल रही, 9-10% लोगों को पेट भरबा में मदद कर सके जा। और कोई लंबी चौड़ी बात कोई न, अनाज को जो भंडारण करा जा उसमें 2-3 बातें याद रख ले आदमी, सिर्फ साफ, सूखा और ठंडा।
0: अच्छा।
1: कोई गणित न लगानी, कोई दवाई न छाड़नी, कोई केमिकल कोई न, साफ, सूखा और ठंडा। तो साफ को मतलब जो कि जो भी नाज आपन बीज कांड राख रहे जा, चाहे खावा कांड राख रहे जा, उमा भंडारण के टाइम पर कटे हुआ दाना न होना चाहो।
0: अच्छा।
1: फामी न होनी चाहो जिस वजह आप बारीक कचरो, अगर कटे हुआ दाना होगा, फामी होगी, कचरो होगा, तो उमे कीड़ा जल्दी लागेगा बजाय साफ सुथरा दाना के, पहली बात। दूसरी बात सूखा अनाज के भंडारण के टाइम पर जब आपन काट लाओ जा तो उमें नमी ज्यादा रह।
0: बिल्कुल।
1: और भंडारण करते टाइम पर कतरी नमी हो बचाए जैसी बात की आपने जानकारी न रहे। साथ ही अगर भंडारण करते टाइम पर अनाज में 10-12% से ज्यादा नमी छे तो में कीड़ा लागबा की प्रबल संभावना रहे छे। 14% से ज्यादा नमी होगी तो में फफूंद लागर डीमा बंधवा की ज्यादा संभावना रहे छे। और अगर 14 से भी ज्यादा नमी होगी तो उमा रासायनिक परिवर्तन हो और वह जहरीले हो जाओ, जिसे कई बार सुनी होगी आपने मूंगफली के अंदर, तिल के अंदर, कई अनाज के अंदर एफ्लोटॉक्सिन एक जहर बन जाओ।
0: हाँ।
1: जो न वो आपने खाबा का काम करे न पशुओं के खाबा का काम।

0: हमको रहे, तो अनाज भंडारण के टाइम पे जो नमी चे वह 9-10% हो बचाई चे। अब आपने पास कोई मशीन तो रहे कोई ना जिसो आपनों की नमी चेक कर लिया, तो सबसे बढ़िया तरीको चे भंडारण करते टाइम पे दाना ने डाड के नीचे दबावा और उमा कट के आवाज आवे तो समझ जाओ इमा भंडारण के लायक नमी चे, और उमा गच्च के आवाज आवे तो समझो का आली में नमी ज्यादा चे उन्हें और सुखावा की आवश्यकता चे। ठीक बात। तीसरी चीज री ठंडा। आज दिन तक ये चीज पे कोई को ध्यान नहीं गयो का अनाज को भंडारण सुबह करबो चाहे जिसे शाम को करबो।
1: बिल्कुल।
0: और अमूमन किसान भाई जो गलती करे छे दिन भर अनाज ने तपाओ छे
1: और शाम की बर दे छे,
0: का बर दे छे, यो सबसे गलत तरीको छे। अगर आप अनाज ने शाम की टाइम भरेगा तो पक्को में कीड़ो लागे वो लेकर ले लो बोले,
1: क्यों मत तो गर्मी रहेगी ना,
0: गर्मी रहेगी क्योंकि जी टाइम पर अनाज को भंडारण करा जा उनको जो तापमान छे वो 20 डिग्री से नीचे आवे।
1: अच्छा।
0: ढेर में पाव मला तो शीड़ो शीड़ो लागे तो उमा अंडान की हैचिंग नो केड़ा का की। अगर 20 ऊपर टेम्परेचर बढ़ो तो 46 जा रहे जो नाज बात मिलेगा तो 27-28 तो मिलेगो। तो अगर आपने शाम के टाइम अनाज भंडारण करेगा तो कीड़ो लागेगो और सुबह के टाइम पे भरेगा तो कीड़ो न लागे। हो गया तीन चीज, साफ सूखा और ठंडा। कोई या कह दे के साहब ये तो डॉक्टर लोग छे शही खच मां तो दवाई मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: दवाई मिलबा का भी लखन को न बोली, बहुत कड़वी बात बता रही हूँ। 90% आदमिया ने दवाई मेलवा का भी लक्षण कोई न, एक गोली कोटा का पागा में मेल देगा, एक बीचा में मेल देगा और उमे नाज बढ़ देगा,
1: बिल्कुल
0: तो उमे कीड़ो लागेगो।
1: अच्छा।
0: आपने यह याद को ना कि कीड़ो किसी जगह लागे जे, अनाज भंडारण को पात्र चाहे खोटी हो चाहे बंडो हो चाहे बड़ो गोदाम हो, भंडारण के अंदर अनाज में ऊपर का 1 फीट से लेकर 2.25 फीट की गहराई तक कीड़ो लागे छे, इनसे ज्यादा गहराई पे कीड़ो न लागे, गारंटेड बात छे। पहली बात। दूसरी बात, आपन जो उनके अंदर जो गोली रखा चा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो सेल फोस के नाम से भी जाना जा अपन, उसे जो गैस निकला छे वह हवा से भारी रह छे। अब आपने कोटा का पागा में जो मैली गोली उनकी गैस तो नीचे की, बीचा में मैली उनकी गैस भी नीचे की, जहाँ ऊपर का 1 फीट से 2.25 फीट की गहराई में जहाँ कीड़ा लागे जा
1: वहाँ तो गोली रखी कोई ना,
0: फिर कह जे साहब आपने गोली भी मैली चाहिए पर आधा तो गेहूँ छुका खटिया आधा में केड़ो लागो जिसु लागे छे। अगर गोली मेल नीचे तो ऊपर ही ऊपर मेलो, 4-6 आंगल दबा दो ना ऊपर से कोई भी पाल पल्ला से डांग दो और भूल जाओ न 6 महीना के लिए, गारंटेड बात छे का आपको एक दाणो भी खराब न हो। कब संभालाऊ न, अक्टूबर नवंबर में जब
1: ठंडक हो जाओगी,
0: जब काम लेगा,
1: काम लेगा
0: भाणो जो नाच भरेगा जो कब काम आओगे, गेहूं पाचा नवंबर में दीपावली के आसपास काम आओगा वहां तई उन्हें छेड़ा को न। यहाँ भी किसान भाई गलती करे छे, जो भी आपनो भंडारण को पात्र जैसे खोटो छे या लोहा की टंकी छे तो चौमासा में ढक्कन खोल खोल और देखे छे देखा कीड़ा लग गया,
1: बिल्कुल साची कह रहा छे।
0: अगर उन्हें चौमासा में खोल और देखेगा तो न लाग तो भी कीड़ो लागे क्योंकि मैं नमी की मात्रा बढ़ जाओगी तो कीड़ा लागेगा, स्वाभाविक बात छे। बाहर उन्हें पैक कर मेल दो और नवंबर तक भूल जाओ, नौरता में खोलो नाज ने एक भी दानो आपको खराब न हो। तो यह जानकारी मो किसान भाई के बीच में चर्चा करबो चाहो जो जिमें कोई पीसा न लाग रहा कोई दवाई काम में ना रही विशेष रूप से। दूसरो एक जो दाल वाली जितनी भी चीजें छे वहां न खाई दवाई भी रखबा की जरूरत को न, कोई भी ड्रम वगैरह ले लो उनका अंदर दाल वाली फसल भर दो, चना चाहे मटर चाहे मसूर चाहे जो भी उमा ऊपर ही ऊपर 1 इंच मोटी राख की परत लगा दे
1: बानी
0: की और उन्हें भूल जाओ, फिर कहेगा साहब चना में भी कोई कीड़ा रुके जगह दाड़ियान में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ो छे उमा बच्चा भी देगो परंतु जो बच्चों पैदा होगो उन्हें खावा गले कान गई छाई जी और उन्हें बच्चा ना आगे बढ़वा के लिए ऑक्सीजन चाहिए जे, तो जितना भी कीड़ा चे वो ऊपर आरू में अंडा देगा बानी पर। जो ही बच्चों निकला गो ना खाबा के लेकर आना कहीं चाहे उफाचो नीचे जाओगो, जो ही वो मोमेंट करोगो, जो हाल चाल करोगो, बच्चों बहुत मुलायम रजू टाइम पर, तो आप बानियों का शरीर में
1: बिल्कुल
0: लागेगी,
1: नाव का चढ़ जाओगी
0: जब उन्हें खो

0: आपण ड्रम ने जो भी पात्र छे उमो ऊपर फूतरा तो नजर आऊगा कीड़ा का, लेकिन नीचे दाल वाली फसल बिल्कुल
1: सुरक्षित रहेगी।
0: यह भी एक जानकारी जिमे कोई पीछा न लाग रहा। तीसरो एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो भंडारण से संबंधित चूहा नियंत्रण। आप कतरी होशियाराई कर लिया होंदरा काट जाओ काट
1: बिल्कुल,
0: और आप मन के जाने या करे चाहे कि भाई दवाई मल दीर दो बारी मल दीर पानी का बर्तन काली कर दिया डांग दिया रिशा का टोट के आप करे जा चूहा मरे को ना
1: मरे।
0: चूहा ने अगर सीधी दवाई मिलेगा तो चूहो खावे कोई ना, इसको बोलते बेड साइनेंसिस चालाकी। अगर चूहा के लिए सीधी दवाई मेल दी तो चूहा मरे ही कोई ना, इसका जो तोड़ है वो अपने को उसके साइनेंस जो चालाकी उसको खत्म करना है। वह कैसे करेगा, पहले बिना दवाई के चुग्गो महिलाओं ने प्री बेटिंग 100 ग्राम आटो 5 ग्राम गुड़ 5 ग्राम मीठो तेल होगा, जैसे अपन लाडू बनाओ जा ऐसे चूरमा का नए मिक्स कर लिया और कागज की पुड़िया बना उन्हें कोटा की गली में बक्सा के नीचे जहां भी अपना चूहा को आवागमन च वहां रख दो। वो गुड़ की वजह से तेल की वजह से चूहा आओगो और उन्हें थोड़ो सो कतर के देखेगो, थोड़ो सो खाओ एकदम ना खाओ चूहो जितना पेट में खाओ उस 10 गुना
1: वेस्टेज कर दे।
0: थोड़ो सो खाओगो गुड़ की वजह स्वाद आओगो तेल की वजह से स्मेल आओगी, थोड़ो सो खाए थोड़ो और खाए, जब उन्हें 2-3 बार खा लियो और एक भी चूहो न मरियो तो फिर वो सोचे चाहिए मैं कहीं दिक्कत कोई ना। और या अगर चूहो एक भी मरे हुए दिखे उन्हें तो फिर न खाओगे तो वह जो चाला की चूह के अंदर वह खत्म होगी। 3 दिन तक सादा चुगो मिलो, 4th दिन दवाई मिलाओ, सारा का सारा उंदरा एक साथ मरेगा। फिर एक समस्या और आ जाओ जे आज गोलियां मिली तो कोई खोटा की गली के नीचे कोई बक्सा के नीचे ऐसी जगह जार छुपोगे जो पूरा घर में बास हो जाओगी।
1: साची बात।
0: उनको भी इलाज बता दूंगा आपने। जनाड़े भी उंदरा की दवाई मेल है, चोक के अंदर एक बोरी को टाट गीलो कर और मेल दो। जो ही चूहो दवाई खाओगो दवाई खाता है उनका शरीर में खून को पानी बना चे घबराहट हो चे वो पानी की तलाश में भागे भागे फरगो तो जो गीली बोरी चे वहां आओगो उन्हें कुतर कुतर के काटोगो और काट तो 5-7 मिनट में वहीं ढेर हो जाओगे। जब आप सुबह उठेगा तो सारा का सारा पौना एक ही जगह लादेगा बिस्तर पे वहां उठा रेवड़ी में गाड़िया वो यो रो चूहा नियंत्रण। अब री कीड़ा बीमारियां की बात। पहली बात तो आपने ये विचार करवा कि टाइम आ गयो कि कीड़ा बीमारी आवे क्यों छे। पहली तो ना उचा आज के 30-35 साल पहले आपन बाले चार काट ले चा
1: बिल्कुल
0: है जिन्हें आपन देसी खेती कह जा। आपने ज्यादा उत्पादन की होड़ में ज्यादा उत्पादन देवा वाली किस्म लाया ज्यादा खाद डालियो ज्यादा पानी पिलायो ज्यादा दवाई दी ज्यादा ज्यादा ज्यादा ज्यादा का चक्कर में आप माइनस में जा रहा जा। जो ज्यादा उत्पादन देवा वाली फसल होगी किस्म होगी में कीड़ा भी
1: ज्यादा ही
0: लगेगा। ज्यादा खाद देगा तो फसल ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगी, ज्यादा पानी देगा तो फसल ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगी। दूसरी बात जो गलती अक्सर किसान भाई करे जो वही बात करूंगा मैं कोई 2-4 दवाई को नाम बतावा ना आयो। कई रासायनिक ऐसा जे और खास तौर से जो सरदार लोबी जे एक स्प्रे तो गड़ा में शुरू में ही खाड़ दे जे बिना पूछे था जे कहीं भी कोने रोग दूसरो स्प्रे फिर खाट देगा लगाया 15-20 दिन बाद में। और में खास तौर से सिंथेटिक पाइरीथ्रोइड ग्रुप की दवाई साइपरमेथ्रिन अल्फा मेथ्रिन डेल्टा मेथ्रिन डेकामेथ्रिन जी दवाई के पाचे थ्रिन शब्द लाग रियो छे वह दवाई पौधा ने मुलायम करे छे और मीठो कर दे छे। जी दवाई ने दाल बासु पौधो मीठो हो रियो छे मुलायम हो रियो छे केड़ा कम खाओगा कि ज्यादा खाओगा
1: ज्यादा खाओगा।
0: तो कभी भी सिंथेटिक पाइरीथ्रोइड दवाई को शुरू में इस्तेमाल न करे यह भी आपने ध्यान रखनी है। साथ ही 200 अधिक दवाइयां ने मिला डाल दे जे किसान भाई
1: बिल्कुल
0: यह भी गलती न करे। तीसरी जो काम की बात है बहुत सा किसान, खासतौर से आड़ोती का किसान भाई, पाने दिन भर ओटला पे बैठा रहेगा, ताश खेलता रहेगा, घना लोगा ना हाल भी गर्मी की जुताई न करी
1: न करी। साजी बात,
0: जो फसल अवशेष से जिन्हें नोलाया खा जा, अपन डंटल खा जा, अवशेष खा जा, यहाँ का अंदर वो कीड़ान की निष्क्रिय अवस्था रहे, बार सोयाबीन की

0: बात आओगी। जहां पर भी पुरानी फसल का अवशेष गेहूं का, वो गडल बीटल का जो कीड़ा छे बार सुई वहां में अंडा देवा लाग जाओ छे, और वहां की एक जनरेशन फैली सुई
1: तैयार होगी।
0: तैयार हो जाओ छे। पहली बारिश के साथ अगर आपन सोयाबीन बाऊंगा तो मैं गडल बीटल ज्यादा लागेगो। कभी भी पहली बारिश के साथ सोयाबीन ना बाबू जाए। एक बारिश हो जाओ, टेम्परेचर डाउन हो जाओ, फिर हकाई करके फिर सोयाबीन बाबू चाहिए। उसे ही बहुत ज्यादा लेट भी ना बाबू चाहिए। लेट बाऊंगा अगर झिरमिर बारिश हो रही है तो तना मक्खी ज्यादा लगेगी। मतलब कई ऐसे जो छोटी छोटी चीजें जैसे आपन हाथ कर गड़ा में एक होपर लागे जिसे आम बोल चाल के बस हम आपन चेपो खा जा, वो किसान की गलती की वजह से लागे जा। अब धान के अंदर या सिफारिश आ गई कि धान में एक इंच ज्यादा पानी
1: ना होनी चाहिए,
0: पर किसान तो ठोकर भर दे 4 इंच 5 इंच 6 इंच जो होपर चे या जो चेपो चे वो पानी को कीड़ो चे, मच्छर की प्रजाति को कीड़ो चे। तो जहाँ ज्यादा पानी भरियो रहेगो वहाँ कीड़ो ज्यादा लागेगो कम लागेगो?
1: ज्यादा लागेगो, पनपगो भी सही बढ़िया,
0: स्वाभाविक बात। पहली बात। दूसरी बात, यूरिया की रिकमेंडेशन चे की भाई 40 किलो बीघा को देवो चाहिए चे। वो कट्टो बीघा को तो शुरू में ही दे दे चे, फिर उनके बस की चाल है तो फिर आधो पर दो और दे दे चे। 150 पौने 2 कट्टा बीघा की आपड़िया हड़ होती में एक फैशन होगी। अधिक नाइट्रोजन की वजह से रस चूस वाला कीड़ा ज्यादा लगेगा, काटबा कुतरबा वाला कीड़ा लगेगा। पहले गड़ा में लटान की सुनी जी के खान का परसाल गड़ा में भी लटान लागी चे, पत्यान कुतरबाली आर्मी वर्म या कभी सुना ही को नावी एक जिसा वो इल्ली आई जी ना अच्छा पिछले साल गड़ा में लटा लागी। ज्यादा नाइट्रोजन की वजह से ज्यादा कीड़ा लागेगा, काटबा कुतरबा वाला रस चूसक कीड़ा ज्यादा लागेगा। तो गलतियां तो आपन खुद कर रहे हैं। अगर संतुलित मात्रा में खाद देगा, और भी कई सारा तरीका जे गड़ा के अंदर एक सिफारिश है, गड़ा ने अगर आपन 20x20 cm उनकी दूरी पर लगाऊंगा तो मैं कीड़ा कम लगेगा। जो बिहारी जो लोग गड़ो लगाओ चे उन आप कहा जा खोड़ो लगाओ जे, तो आड़ोती या किसान या कहे बिहारी तो खोड़ो लगाओ जे, पर जो खोड़ो लगाओगा 20x20 cm पर वो मैं कीड़ा कम लगेगा, उमें फुटान ज्यादा होगी। पहले एक सिफारिश सी लोग बाग पुरानी चीजा ध्यान न रख गड़ा में हर 10 मीटर के बाद में यानी 1 क्यारा के बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ जा हवा पास होबा के लिए और उमे कीड़ो कम लागे चो। और ये बात नहीं कथन के साथ प्रमाणित कर सकू चु मु जी साइड पर अपना मेर रच या धोरो रच उस साइड पर फसल तगड़ी रच रच नंबर वन। नंबर टू, सरसों ने चाहे उगड़नी बाओ चाहे आथनी बाओ पाकती टाइम पर सरसों दक्षिण साइड पर झुकज ये दो कथन से एक बात सिद्ध होगी। मेर की साइड पर फसल तगड़ी रह जे मतलब फसल ने हवा और प्रकाश की आवश्यकता
1: है,
0: जितनो ज्यादा उन्हें हवा प्रकाश मिलेगो उतनी फसल अच्छी रहेगी। तुमको एक ही तरीको जे पौधा सु पौधा की दूरी कतार सु कतार की दूरी आप मेंटेन करेंगे तो उन्हें खरपतवार भी कम होगा, कीड़ा बीमारी भी कम लगेगा, फूटान ज्यादा होगी, अल्टीमेट पैदावार ज्यादा मिलेगी। उसे आपन सोयाबीन में ले लो, सोयाबीन के अंदर जो आपने बुआई की जो रिकमेंडेशन जे वो 30 cm से 45 cm
1: बिल्कुल।
0: जो कम फैलवा वाली किस्म जे वहां के लिए 30 cm, जो ज्यादा फैल वाली किस्म जे वहां के लिए 45 cm की रिकमेंडेशन जे। पर आज भी जार देख लीजिए श्यामा बना 9 इंच का उम्रा में बाव चे मतलब 22 cm पर मशीन ने एडजस्ट न कर बुझाओ कोई। अब 9 इंच भाऊंगा तो श्यांगण रहेगो, श्यांगण रहेगो तो तम्बाकू इली लागेगी
1: बिल्कुल लागेगी और वो ज्यादा बढ़ेगी,
0: पैर के जमी ज्यादा लागी। मतलब आज भी किसान भाई काफी तकनीकी टाइम आ गयो, काफी कई लोग अच्छी खेती भी कर रहे, लेकिन अमूमन जो किसान भाई चाह अपना वो जो छोटी छोटी गलतियां जो तकनीकी गलतियां वहां ने कर रहा है और आज भी अच्छी पैदावार न ले रहा। जो कीड़ा बीमारी न बुझाई जे चाह वो कीड़ा बीमारी लाग रहा है। मक्का में एक फाल आर्मी वार्म नाम को कीड़ो आयो छे और उनकी वजह से पिछला 4-5 साल में मक्का की मान के चलो 30-40% कम होगी बुआई।
1: बिल्कुल,
0: لوہا مکہ بابو ہی بند کر

जबकि बूंदी में आसपास का एरिया में बंपर अकेली बूंदी में 42,000 हेक्टर में मकाई खेती हो जी, जो गटर 10-12,000 हेक्टर पर रहेगी, क्योंकि उन्हें समझ ही ना पाओ। जब कीड़ा की प्रारंभिक अवस्था में अगर आपन कंट्रोल करेंगे कोई सी फसल को, सोयाबीन को ले लो, मक्का को ले लो, धान को ले लो, और भी ले लो, उड़द मूंग को ले लो, उड़द मूंग पर भी आऊंगा बार, क्योंकि आपकी बार बता रहे हैं जो बारिश कम रहेगी तो उड़द मूंग को एरियो बढ़वा की संभावना है। परंतु किसान भाई जो बहुत बड़ी गलती करे जे, क्योंकि अब साढ़ी छाती बजे तो एक और उदाहरण बतावो चाहूंगा आपने, किसान भाई काई करे छे लटाने गांव में कहना छे कि बात चाले 12 कोस पांगो चाले 18 कोस जियालो हिसाब किताब छे, लटाने दवाई में डबो डबो और देख बे करे छे, अरे यूं कहे छे कि साहब यह लटी छोची दवाई में डाल दी तो ही न मरी थी न छांट पासू कश्य मरेगी। तो एकदम बेचारा जो भी किसान वो कृषि पर्यवेक्षक या जो भी अधिकारी छे वो एकदम सख्ता में आ जाओ, जो बात तो सही कह रहे परंतु वह बात सही को ना, या बात सही जगह लट न मरी पी और दवाई में डाल बसू, परंतु यह बात सही को ना कहीं के छाट बस या न मरेगी, कारण पीवर दवाई जो डाला जाए अपन उनको पृष्ठ तनाव ज्यादा रहे, वह शरीर में जावे को ना, जब तक उनमें पानी न मिलाऊंगा जहां तक उनको पृष्ठ तनाव खत्म न होगो और वह कीड़ा का शरीर में न जाओ, पहली बात।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई हम आपका ताई बता दें कि सजीव फोन इन चौपाल चल रही छे और अपने साथ में डॉक्टर नाथूलाल मीणा जी बैठा हुआ छे। आप प्रश्न कर सको जो खरीफ फसला का कीट और वहां का रोगा सु बचाओ अपन कशा करा। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे अच्छा अपने शुरुआती जो रोग जो वहां की शुरुआती फसल में जो रोग लागत है एक बात और यहाँ हो चुका अगर आप बीज उपचार कर ले वहां तो फिर काई फसल की स्थिति रहेगी।
3: देखो श्यामा बना लोग बाग समझे कोई ना अपना बच्चा बच्चा ने टीका लगाओ चाहे ना लगाओ
2: बिल्कुल लगाओ
3: कोई सी फसल हो चाहे कीड़ा हो चाहे बीमारी हो प्रारंभिक जो 30 दिन यानी एक महीना अगर हम कीटनाशी से या फफूंदनाशी से या राइजोबिया से उपचार करते हैं तो 30 दिन तक फसल में कीड़ा और बीमारी नहीं लगेगा। और जो दवाई चे नाम मात्र की लागत है 2 ग्राम प्रति किलो
2: बिल्कुल।
3: तो इन आल किसान भाई समझ न पा रहे इन्हें बोला जा खेती को टीकाकरण अगर टीकाकरण पर किसान भाई ध्यान दे ले और कई बीमारियां तो ऐसी चे जो फफूंद जन्य बीमारियां चे गर्डा में ब्लास्ट आउ चे और उमन लोग बाग 1000 रुपए की दवाई डाले चे बाद में लेकिन उनको बाद में इलाज ही कोई न क्योंकि जो बीमारी चे वह बीज जनित बीमारी चे। जब गर्डा ने भजो वहां वो टाइम वो में सिर्फ 2-3 ग्राम सिस्टेमिक फंजीसाइड
2: अटी तो फोन लेना। हेलो
4: हाँ जी राम राम
2: राम राम साहब नाम बताओ।
4: नाम गोगल जी गुजर बोल रहे हो साहब प्रेमपुरा से।
2: प्रेमपुरा से हाँ जी प्रश्न करो।
4: ये प्रश्न तो यही है जो बहुत बैठा हो वो रहा सर
3: हाँ
4: लगा न रहा और उराई कर रहा
3: हाँ खाई दिक्कत कोई ना
4: भाई उमें कहीं सावधानी बरतनी पड़े
3: उमें सावधानी या बरतनी च एक तो अगर न हो रहे हो न तो खेत न रेलर हो रहा उसू कहीं चे जो कजोड़ो च न उगो और गड़ा में खाली कचरा की सबसे ज्यादा दिक्कत आओ चो और कोई दिक्कत को न बराबर पैदावार मिले चे लगाबा को खर्चो बचे गड़ को खर्चो बचे पर इमें कचरो अतरो ज्यादा हो चे घना किसान भाई जाने फैली न हो रहे वो डरप जाओ चे
2: बिल्कुल।
3: दूसरी बात जो हाँ बताओ दिक्कत को ना उराई चाल रही जे तो जिसाई दान उगा अपनो 1525 दिन के बाद में पहली जो दवाई कचरा की दवाई डाला जा वह 1525 दिन के बीच में डालना वो कहीं जगह अपने देखता रहा जगह आल तो कचरो उगबा ही लागू चे आल तो कचरो छोटो छोटो चे उच्च कर्मा अपन 35-40 दिन खाड़ दे जा कचरा की दवाई को नियम चे 35 दिन के पहले पहले डल जावो तो कचरा की दवाई काम करेगी ना तो फिर कचरा की दवाई काम न करे।
4: सर ये टेम भी बताए कोई मतलब हाँ, भाई लोगों ने भाई पूरा ही करया के बाद में
3: हां वा भी बता रही चुमो उनका जैसा गड़ो और दियो आपन में

0: अब अगर रेलर हो रहा जब तो स्प्रे करनी पड़ेगो प्रेटिला क्लोरा हो जाए कि रिफिट के नाम सु उन्हें आपन स्प्रे करके छोड़ दा। अगर रेल के न हो रही आपन सूखा में हो रही चे तो फिर वह जो बोतल के अंदर वो दवाई ने गोल लिया और यू अलका अलका छांटता चला और पाचे सु पानी छोड़ता चला तो उमा कचरो न उगे। एक पेंडामिथिलिन भी आओ चे हालांकि वह इतनी कारगर को न जो रिफिट डीएसआर जो आओ चे प्रेटिला क्लोर वह काफी कारगर चे इमा कचरो न उगे। फिर भी आपने 15-20 दिन का आसपास ध्यान रांगनी पड़ेगो अगर बारिश जिरमिर जिरमिर चालती रही तो पाचो कचरो हो गया जिसे सेकंड प्लस बोला चाहे आप तो वो टाइम पर भी कचरा की दवाई डालनी पड़ेगी। कचरा की दवाई टाइम पर डाल दी आपने तो औरत का गड्ढा में और कोई समस्या ना हो दिक्कत कोई ना। प्रेमपुर नमाणा के पास वालो जगह हाँ काई दिक्कत कोई ना काफी लोग हाँ
1: बिल्कुल
0: और आप निश्चिंत हो के कचरा की दवाई जरूर डालो मेरा
2: ना
0: हो रहेगा अब आदिवाद और लाग जाओगा अब तो
2: खर्चो न
0: 2000 गेड़ का 2000 लगागा 4000 तो सीधो सीधो यो ही फर्क पड़ रही है
2: जी सर। आजकल तो 2000
0: में खान हो रहे मान लियो आपने बोरी भी का वो कम खड़े तो भी गांठ का तो न लग गया पीसा
2: जी सर जी।
0: और बढ़िया खेचर पूरी खाद खुराक टाइम पर दी तो पैदावार और तक भी वही खड़ेगी जो लगाया तक ही खड़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न को जवाब मिल गया। अब आप जो बात खे रहा चा और रहा चा तो उसमें कचरा की दिक्कत आओगी। आपने जो खेत की तैयारी आपने करा चा वो टर्म की अगर आपन साफ सफाई करा तो फिर आपने कतरो फायदा हो सके
0: बहुत फायदा हो जाए आपने पास टाइम चे और पानी चे तो खेत ना रेलर फिर और बचाए जे रेलंगा तो जितनो भी टाइम पे खरपतवार जे उसारो अंकुरित हो जाओगो अंकुरित हो जाओगो तो फिर दूसरो खासो आओगो बीज फिर तो नए बीज ना आबा मन तो सबसे बढ़िया तरीको तो ये खेत ना रेलर उराई करा अपन कचरो हो गई कोई ना। फिर भी अगर सेकंड प्लस को डर रहे चे तो 15-25 दिन पे पहलो छिड़काव कर दो कचरा की समस्या खत्म।
1: राम राम हेलो
2: राम
1: राम साहब नाम बताओ प्रश्न करो जल्दी से जल्दी।
2: राम देव से डबराना से बोल रहे हो
1: बिल्कुल प्रश्न पूछो
0: बताओ।
2: भाई उड़दा में उड़द किसी किस्म का मामा
0: उड़द ऐसा जे किस्मा कई सारी जे आपने कोटा उड़द 3, 4, 5, 6 जो भी मिल जाओ पंत उड़द 31 जिमे पीलो रोग नाव
2: उड़दी
0: हाँ उड़दी छोटा दाना वाली पर उड़द और उड़दी में भ्रमित न हो आपने जो मैं बता रही हूँ पीयू 31 से केयू 96 3 से कोटा उड़द 3 कोटा उड़द 4 कोटा उड़द 6 इनमें से कोई सी वैरायटी बाऊंगा तो इनमें पीलो रोग ना हो।
1: बिल्कुल समय समाप्ति की ओर से डॉक्टर साहब कोई ऐसी खास बात जो आप बनवाए बताबो चाहता हो ताकि वहाँ की फसल जो जा वह सुरक्षित
0: रहे। मैं बना मारो तो एक ही निवेदन छे जागता की पाड़ी सुता को पाड़ो छे अपन फसल ने नियमित रूप से देखभाल करा और जो टाइम निर्धारित छे कचरा की दवाई 15-20 दिन में डालनी छे कीड़ा की दवाई 35-40 दिन में डालनी छे तो आधा खर्चा में किसान कीड़ा और बीमारी ने कंट्रोल कर सके छे। और आपन बाढ़ नाल बकरा गाल तो कचरो बड़ो ही न बाढ़ नाल बकरा गाल तो कीड़ा थोड़ा ही दिख रहा छे तो फिर दवाई डालवा को कोई फायदो को न। एक लिमिट रहे चूंकि थ्रेशोल्ड लिमिट वो लिमिट पर आपन दवाई डालेंगा तो कम खर्चा में कीड़ा बीमारी कंट्रोल होगा और वह लिमिट पार कर गया तो दवाई को खर्चो भी होगा और कीड़ा बीमारी भी कंट्रोल न हो।
1: और अगर बर्न भाई अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती हो कीड़ा बीमारी लाग ही गया तो संपर्क कहाँ कर कहाँ चेनी को समाधान करावो।
0: कोई भी नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक छे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र छे कृषि महाविद्यालय छे वहां पर अपनो सैंपल लेके जाओ और दिखावो के साहब मारे यो कीड़ो लाग रही है बीमारी लाग रही है तो निश्चित रूप से वहां उचित निदान मिलेगो।
1: बिल्कुल तो बर्न भाई और डॉक्टर साहब की यहाँ बात आना गांठ बांधो और आज तो कार्यक्रम को जो समय समाप्त हो रही है डॉक्टर साहब नाथूलाल मीणा जी डीन कृषि महाविद्यालय हिंडोली आपने साथ कार्यक्रम मर्याई के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद।
0: राम राम साहब
1: वर्ण भाई लियो कार्यक्रम न समाप्ति की ओर ले चला छा आप सुखाल फिर मिलेगा नई नई जानकारियां के लारा गीता के लारा आज्ञा दोषा बनाना राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर। साथ ही आप हमें प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम माटी के सुरों से सजा हुआ लोक संगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है माटी के सुरों से सजा कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर।

श्रोताओ, रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत में पहला नगमा फिल्म दिल मांगे मोर से।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। इस बीच आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं श्रोताओं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में कल सुबह यानी गुरुवार दिनांक 11 जून को प्रातः 8:15 पर आप हेलो डॉक्टर कार्यक्रम

में अलग अलग विषय में अधिक अलग अलग जानकारियां जो है वो प्राप्त करते हैं। तो कल भी एक विषय पर आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस बार हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में जो विषय है वो है महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। जी हाँ, महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। इस विषय पर आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर राजश्री गोहदकर। जी हाँ, डॉक्टर राजश्री गोहदकर आपको इस विषय में अधिक जानकारी देंगी। आप इस विषय में जानकारी चाहते हैं तो इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0744, जो कि कोटा का एसटीडी कोड भी है, यानी 0744। फोन नंबर है 2941142 29/4/1142। एक बार फिर से आप सुन ले, दिनांक 11 जून यानी कल सुबह गुरुवार के दिन प्रातः 8:15 से 9 बजे तक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे डॉक्टर राजश्री गोहदकर से।

फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से अगला नगमा रूप कुमार राठौर की आवाज है, जयदीप सहनी के बोल, संगीत सलीम सुलेमान का।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। इस बीच आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं। कल यानी कि 11 जून प्रातः 8:15 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप मुखातिब होंगे एक अलग विषय से। इस बार हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में विषय होगा महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। इस दौरान हमारे विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर राजश्री गोहतकर। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमें सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0744 यानी 0744 जो कोटा का एसटीडी कोड है 2941142 29411142। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, दिनांक 11 जून यानी कि कल सुबह 8:15 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर राजश्री गोहतकर।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अगला गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाजों में, बोल है समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कल प्रातः 8:15 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सजीव फोन इन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह, इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर राजश्री गोहतकर। आप टेलीफोन नंबर 07442941142 29411 42 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान फोन कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। थोड़ी देर में प्रसारण होगा समाचार संध्या का हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा और

0: ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद

0: तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20

0: आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर। अब श्रोता आनंद लेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे पार्श्व गायक मिका सिंह के गाए हुए गीत, क्योंकि आज के कलाकार हैं बॉलीवुड सिंगर मिका सिंह।

दरअसल श्रोताओं, आज है 10 जून। 10 जून और आज ही के दिन बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह का बर्थडे भी है। वो अपना 49वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। तो आइए आज बातचीत करते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में मीका सिंह के संदर्भ में, और सुनते हैं उनके गाए हुए वो गीत जो आपको थिरकने पर भी मजबूर कर देते हैं, और कुछ गीत ऐसे भी हैं जो गुनगुनाने को भी आपको मजबूर कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म तमाशा से ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मिका सिंह के संदर्भ में। उनके गाए हुए जो गीत हैं वो भी आपको सुना रहे हैं, क्योंकि आज मिका सिंह का बर्थडे भी है, जन्मदिन है उनका। 10 जून 1977 को दुर्गापुर में उनका जन्म हुआ था। और प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो उनका वास्तविक नाम दरअसल अमरीक सिंह है। वो प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के छोटे भाई हैं। उनके पिता अजमेर सिंह एक शास्त्रीय संगीतकार और कीर्तन गायक थे, जिनसे मिका सिंह को संगीत की प्रेरणा मिली। बचपन से ही उन्हें गायन और वाद्य यंत्रों में रुचि थी। मिका सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी पॉप संगीत से की। उनका गाना सावन में लग गई आग उस समय बेहद लोकप्रिय हुआ और उन्हें देश भर में इसी गाने से पहचान मिली। बाद में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और कई सुपरहिट गीत जो है वो उन्होंने गाए, जिसमें मौजा ही मौजा, बस एक किंग, धन्नो, ढिंका चिका, चिंता ता चिता चिता, इब्ने बतूता, कई सारे ऐसे गीत हैं जो उन्होंने इसके बाद गाए। अगर विशेष पहचान की बात करें तो उनकी अपनी ऊर्जावान जो आवाज है और मंच पर उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए वो जाने जाते हैं। भारत के जो सबसे लोकप्रिय लाइव परफॉर्मर्स हैं, जी हाँ, सबसे लोकप्रिय लाइव परफॉर्मर्स में उनको गिना जाता है और देश विदेश में अनेक संगीत के जो कार्यक्रम हैं वो कर चुके हैं। अभी आपने जो गीत सुना हीर तो बड़ी सैड है, दरअसल इससे भी जुड़ा हुआ एक कमाल का किस्सा है। फिल्म तमाशा जो 2015 में आई थी, उसका ये गीत यानी हीर तो बड़ी सैड है बॉलीवुड के सबसे अनोखे गानों में से एक है। इस गाने के बनने और मिका सिंह के इसे गाने के पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। निर्देशक इम्तियाज अली फिल्म में एक ऐसी स्थिति दिखाना चाहते थे जहां मुख्य किरदार यानी दीपिका पादुकोण अंदर से बेहद उदास है, लेकिन बैकग्राउंड में कोई रोने धोने वाला धीमा गाना नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने संगीतकार एआर रहमान को ये एक तरीके से चुनौती दी और रहमान ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने उदासी भरे बोलों को बेहद तेज भांगड़ा और ऊर्जावान संगीत यानी एक तरह से हैप्पी सैड सॉन्ग के साथ मिला दिया। इम्तियाज अली और एआर रहमान एक ऐसी आवाज चाहते थे इसके बाद जो आमतौर पर दुख भरे गानों के लिए नहीं जानी जाती हो। तो उस समय रहमान का मानना था कि अगर कोई पारंपरिक सूफी या गंभीर गायक इसे गाएगा तो गाना थोड़ा भारी हो जाएगा। उन्हें एक ऐसी बिंदास और कड़क आवाज चाहिए जो इसे गंभीर यानी कि गंभीर जो इसकी उदासी है उसको मजाकिया और हल्के फुल्के अंदाज में गा सके। तो इसके बाद उन्होंने मिका सिंह को बुलाया, एक तरीके से उनको चुन लिया। जब मिका सिंह को एआर रहमान के स्टूडियो से बुलावा आया तो वो हैरान थे। मिका ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला भी था और उन्होंने कहा था कि रहमान के साथ काम करने को लेकर वो थोड़े नर्वस थे लेकिन उत्साहित ज्यादा थे। जब उन्हें गाने के बोल हीर तो बड़ी सैड है, आजकल वेरी मैड है और उसकी तेज धुन दी गई तो उन्हें समझ आया कि रहमान तो कुछ बहुत ही अलग और ऐतिहासिक प्रयोग कर रहे हैं। गीतकार इरशाद कामिल ने इस गाने में आधुनिक समय की उदासी को पारंपरिक हीर के माध्यम से पेश किया। इश्क है माचिस दिल है डीजल जैसी पंक्तियों ने गाने को युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। मिका सिंह ने इस गाने के अवसर के लिए हमेशा, और जब जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने इम्तियाज अली और एआर रहमान का बकायदा जो धन्यवाद है वो व्यक्त किया था। इस तरह के गीत जो हैं वो उन्होंने काफ़ी सारे गाए हैं। और एक और गीत जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले वो गीत सुनेंगे और उसके बाद जानेंगे उस गीत से जुड़ा हुआ किस्सा।

फिल्म दिल बोले हड़िप्पा से अभी आपने ये गीत सुना। इसे जयदीप साहनी ने लिखा और इसका संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, जब ये गीत बन रहा था, यानी कि जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, या कह सकते हैं जब वीडियो शूट हो रहा था गाने का, तो ये टाइटल ट्रैक था इस फिल्म का। और इसका एक किस्सा है जो इसे बेहद ख़ास बनाता है, और ये सिर्फ मीका सिंह से जुड़ा हुआ किस्सा नहीं है, यह शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी जो फिल्म के अदाकार थे उनसे भी जुड़ा हुआ किस्सा है। फिल्म में रानी मुखर्जी ने वीरा यानी कि एक गांव की लड़की और वीर एक सरदार लड़के का डबल रोल निभाया था। दिल बोले हड़िप्पा गीत में रानी मुखर्जी ने पगड़ी पहनकर एक सरदार का भेष बनाया हुआ है। इस लुक को हासिल करने के लिए उन्हें रोजाना घंटों तक मेकअप करना पड़ता था, जो काफी चुनौतीपूर्ण था। शाहिद कपूर के साथ, क्योंकि शाहिद कपूर एक बेहतरीन डांसर माने जाते हैं, इस गाने में रानी ने शाहिद के

कदम से कदम मिलाकर डांस किया। रानी ने एक इंटरव्यू में उस समय बताया भी था कि एक शानदार डांसर के साथ डांस करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन शाहिद ने उनका सहयोग किया। अब इस गाने को, क्योंकि इस गाने के अंदर फिल्म का टाइटल ट्रैक भी है, फिल्म जो है वो स्पोर्ट्स पर आधारित है, तो एक एनर्जी चाहिए थी, एक सिंगर ऐसा चाहिए था जो ऊर्जा से इस गीत को गा सके। तो इसके लिए सुनिधि चौहान का तो चयन हो गया था, लेकिन मेल सिंगर की यहाँ पर ज़रूरत थी। तो इस ऊर्जा से भरे हुए गाने को गाने के लिए फिर चयन हुआ मिका सिंह का, और इन दोनों ने ही अपनी आवाज़ दी है। और गाने की बीट्स इतनी ज़बरदस्त थी कि उस साल की शादियों में इस गाने को हम ये कह सकते हैं कि ये डांस नंबर जो है उस समय बन गया था। इस गीत के बोल जयदीप साहनी ने लिखे हैं, संगीत प्रीतम ने दिया है। और जो जुगलबंदी है, सिंगर्स की बात कर लें या कंपोजर की बात कर लें लिरिसिस्ट की, तो एक बहुत ही बेहतरीन जुगलबंदी जो है वो इस गीत के माध्यम से देखने में आती है और सुनने में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सन ऑफ सरदार से ये गीत, और उसके बाद बात करेंगे उस गीत के संदर्भ में।

फिल्म दे दे प्यार दे से ये गीत मिका सिंह ध्वनि भानुशाली की आवाज में, शमशेर संधु कुमार के बोल हैं, संगीत अतुल शर्मा, मंज मुसिक का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार मिका सिंह के गाए हुए गीत, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है और आज के हमारे फिल्म संगीत के जो कलाकार हैं वो मिका सिंह है। इस बीच आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे देते हैं श्रोताओं, कल यानी कि दिनांक 11 जून को प्रातः 8:15 पर आप हेलो डॉक्टर कार्यक्रम सुनेंगे। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। इस दौरान हमारी विशेषज्ञ स्टूडियो में होंगी डॉक्टर राजश्री गोहदकर, जो इस विषय में आपको अधिक जानकारी देंगी। जानकारी के लिए आप हमें इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान भी फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0744, जो कि कोटा का एसटीडी कोड है 0744। फोन नंबर आप नोट कीजिए 2941142 यानी 29411042 2941142। एक बार फिर से सुन लीजिए श्रोताओं, दिनांक 11 जून यानी कि कल गुरुवार प्रातः 8:15 से 9 बजे तक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

फिल्म संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं मिका सिंह, जिनके गाए हुए गीत आप सुन रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य भी। श्रोताओं, गायन के अलावा मिका सिंह कई रियलिटी शो में जस

के तो जज के तौर पर भी दिखाई दिए हैं, प्रतिभागी के तौर पर दिखाई दिए हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में भी अभिनय किया है। अगर उपलब्धियों की बात करें तो बॉलीवुड और पंजाबी संगीत उद्योग के सबसे सफल गायकों में वो शामिल हैं। सैकड़ों फिल्मों और एल्बमों में उन्होंने अपनी आवाज दी है। देश विदेश में हजारों लाइव शोज जो है वो उन्होंने किए हैं। कई चार्ट बस्टर और पार्टी और डांस नंबरों के लिए तो वो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इससे इतर शास्त्रीय संगीत की तरफ भी, एक कह सकते हैं कि जो रूहानियत है संगीत की, उधर भी वो पारंगत हैं। फिर चाहे बात कर लें आप तबले की, हारमोनियम की और अन्य वाद्य यंत्र बजाना, यानी कि फिर उसमें पाश्चात्य वेस्टर्न म्यूजिक की अगर हम बात कर लें तो उसमें गिटार जो है, इलेक्ट्रिक गिटार, ये सब भी वो बजाना जानते हैं। अपने बड़े भाई बलेर मेहंदी को ही वो सबसे बड़ा जो अपना प्रेरणा स्रोत है वो मानते हैं। भारतीय जगत के उन कलाकारों में से मीका सिंह है जो अपनी अलग शैली, दमदार आवाज और मंचीय ऊर्जा के दम पर बॉलीवुड तथा पंजाबी संगीत में एक विशिष्ट पहचान बना चुके हैं।

अभी आपने फिल्म जब वी मेट से जो गीत सुना मौजा ही मौजा, इस गीत से जुड़ा भी एक बेहद दिलचस्प किस्सा है श्रोताओं, जो इम्तियाज अली जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद ने साझा किया था। दरअसल ये गाना जब बन रहा था तब फिल्म से जुड़े कई लोगों को ये डर था कि दर्शक इसके पंजाबी बोल समझ भी पाएंगे या नहीं। गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार प्रीतम वो लेकिन कन्विंस थे, उन्हें अपने गीत पर लिखे हुए बोलों पर भी और जो संगीतबद्ध किया था उन्होंने उन बोलों को, उस संगीत पर भी उन्हें भरोसा था। लेकिन कई लोगों का ये मानना था जो फिल्म से जुड़े हुए थे कि लोग एक शब्द भी नहीं समझेंगे और जो ये गाना है इसीलिए ये गाना नहीं चलेगा। इम्तियाज अली के अनुसार जब गाना रिकॉर्ड हुआ और मिका सिंह की ऊर्जावान आवाज में जब ये सामने आया तब भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इतनी तेज पंजाबी शैली वाला गीत हिंदी फिल्म में भला कैसे काम करेगा। लेकिन टीम को उसकी धुन और ऊर्जा पर दरअसल पूरा विश्वास था और आखिरकार गाना फिल्म में रखा गया, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि रिकॉर्डिंग होती है और किसी और सिंगर की आवाज़ में रिकॉर्ड होता है और बाद में जब फिल्म में आता है तो किसी और सिंगर की आवाज़ में आता है या फिल्म में कई बार गाना आता भी नहीं है। लेकिन इम्तियाज अली के अनुसार उन्होंने उस समय ये रिस्क लिया, आखिरकार गाना फिल्म में रखा गया। और उस दौरान जब ये फिल्म आई थी जब वी मेट, तो उस दौरान रिलीज के समय ये देश के सबसे लोकप्रिय जो डांस नंबर्स हैं उस दौरान देश के सबसे लोकप्रिय डांस नंबर में से एक गाना ये भी बन चुका था। एक और रोचक किस्सा इस की रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ है। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम, ये सभी लोग जो हैं मौजूद थे। तो रिकॉर्डिंग के दौरान मिका सिंह ने मजाक मजाक में प्रीतम से कहा था कि अगर मौजा ही मौजा, क्योंकि गीत को लेकर के कई सारे जो संदेह हैं, कई सारी जो बातें हैं वो पहले से ही निकल करके सामने आ रही थी। तो मिका सिंह ने जो संगीतकार हैं प्रीतम उनसे कहा कि अगर ये गीत हिट हो जाता है, सुपर हिट हो जाता है, तो क्या वो उन्हें कार गिफ्ट करेंगे। ये बात दरअसल सिर्फ मजाक में हुई थी और गाना उसके बाद जबरदस्त हिट हुआ। लेकिन बड़ी बात क्या है, मिका सिंह ने एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में फिर ये बताया था कि कुछ साल बाद सचमुच प्रीतम ने उन्हें एक महंगी एसयूवी कार जो है वो भेज दी थी। यानी कि वो गीत जो बॉलीवुड फिल्म में एक समय रखा भी नहीं जा रहा था, उस गीत ने सफलता की कई ऊंचाइयों को छुआ। फिल्म मौसम से अगला गीत मिका सिंह पंकज कपूर की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल संगीत प्रीतम का।

ये गीत सुना। ये फिल्म 2011 में आई थी। मौसम फिल्म का जो ये लोकप्रिय पंजाबी रंग वाला गीत है, इसे मिक्का सिंह ने अपनी दमदार आवाज दी, संगीत प्रीतम ने तैयार किया और बोल इरशाद कामिल ने लिखे थे। गीत से जुड़ा हुआ दरअसल एक दिलचस्प किस्सा है। फिल्म मौसम एक गंभीर और भावनात्मक प्रेम कहानी थी। ऐसे में निर्देशक पंकज कपूर, जो कि शाहिद कपूर के फादर हैं और एक जाने माने थिएटर आर्टिस्ट हैं, पूरे देश में अगर हम बात करें कि कुछ एक ऐसे उम्दा और चुनिंदा जो कलाकार हैं जिन्होंने रंगकर्म और फिल्मों में अपनी एक अलग और बेहतरीन छाप छोड़ी है, तो उसमें पंकज कपूर का जो नाम है वो भी अव्वल आता है। तो पंकज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और अभिनय किया था इस फिल्म में उन्हीं के बेटे शाहिद कपूर, जो कि इस फिल्म में लीड रोल में थे, यानी कि अहम किरदार उन्होंने ही अदा किया था। तो पंकज कपूर बतौर निर्देशक चाहते थे कि फिल्म में पंजाब की मिट्टी, लोक संस्कृति और शादी ब्याह का जो रंग है वहाँ का, वो भी दिखाई दे। इसी सोच से उन्होंने सज धज के टशन में रहना गीत जो है वो तैयार किया। गीत में पंजाबी लोक धुनों, भांगड़ा बीट्स और आधुनिक संगीत का मिश्रण किया गया ताकि विदेश जाकर बदले नौजवानों और देसी संस्कृति के बीच का जो हास्यपूर्ण टकराव है वो दिखाया जा सके। यानी कि जब उसको फिल्माया गया गीत को, तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं दर्शक उसको सिर्फ सुने ही ना बल्कि महसूस भी करे, उसे देखे भी, तो उसके साथ जो है वो पूरा जस्टिस हो, न्याय हो। गीत के बोलों में अंग्रेजी मुंडा, टाई शाई, वेरी हाई फाई जैसे शब्दों के माध्यम से उन युवाओं पर हल्का फुल्का व्यंग किया गया था जो विदेश जाकर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। यही कारण है कि ये गाना केवल डांस नंबर नहीं बल्कि एक सामाजिक टिप्पणी भी उस समय माना गया। रिकॉर्डिंग के दौरान मिका सिंह ने अपने खास पंजाबी अंदाज और ऊर्जावान गायकी से गीत में जान डाल दी। रिलीज के बाद ये गीत शादियों और भांगड़ा कार्यक्रमों का पसंदीदा गीत बन गया। कई संगीत प्रेमी आज भी इसे मिका सिंह के सबसे यादगार पार्टी गीतों में जो है गिनते हैं। इस गीत में फिल्म के निर्देशक पंकज कपूर की एक जो बड़ी बात है जो काफ़ी कम लोग जानते होंगे, इसको सुना गीत को आपने कई बार होगा। जब हम बता रहे थे इस गीत के बारे में तो मिका सिंह के साथ एक नाम और लिया था और वो नाम था पंकज कपूर का। जी हाँ, इस गीत में फिल्म के निर्देशक पंकज कपूर ने भी अपनी गायकी का योगदान दिया है जो बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है।

श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको दे देते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, जो कि कल प्रातः 8:15 पर प्रसारित होगा। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में कल यानी कि गुरुवार दिनांक 11 जून को प्रातः 8:15 पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे, महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह इस विषय पर। इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर राजश्री गोहतकर। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमें सजीव फोन इन कार्यक्रम के दौरान, प्रसारण के दौरान उसके फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0744-0744, जो कि कोटा का एसटीडी कोड है 294-1142-29-4-1142, 2941142, ये हमारा फोन नंबर है। फोन नंबर आप एक बार फिर नोट कर लीजिए 0744-294-1142, 0744-1942। कल दिनांक 11 जून गुरुवार प्रातः 8:15 से 9 बजे तक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और आज के हमारे कलाकार हैं मिका सिंह। लीजिए पेश है एक और गीत फिल्म खिलाड़ी 786 से।

श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है कि जिन अदाकारों के ऊपर आप किसी गीत को फिल्माते हैं तो वो अदाकार उस गीत को अपने हृदय में कहीं ना कहीं सहेज लेते हैं, और वो किसी भी तरीके का गीत हो सकता है, लेकिन वो किसी अदाकार को, किसी कलाकार को इतना पसंद आ जाए कि वो उस फिल्म से जुड़ी हुई जब भी कोई बात हो तो वो उसे गुनगुनाने लगता है। तो इसी तरीके का जो ये गीत है लॉन्ग ड्राइव, जो अभी आपने सुना, फिल्म खिलाड़ी 786, तो इसमें आपने देखा होगा कि इस गीत को दरअसल एक हाईवे पर फिल्माया गया था। एक लाल फेरारी में अक्षय कुमार और आसिन इस गीत में जो है दिखाई दे रहे हैं। हिमेश रेशमिया ने इसे कंपोज किया था, मीका सिंह ने इसे गाया था। एक संगीत समीक्षा में ये उल्लेख भी है कि ये उस एल्बम में आसिन, जो कि फिल्म की एक्ट्रेस थी, उनका सबसे पसंदीदा गाना था, और प्रमोशनल इंटरव्यूज में वो इसे बार बार, कई बार गुनगुनाया करती थी। जैसे मान लीजिए कि वो कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, और ये रिकॉर्डेड चीज़ है कि जब भी वो कहीं इंटरव्यू देने गई तो ऐसा कई बार उस समय देखा गया, यानी कि आसिन को उस समय ये गीत जो है वो काफ़ी पसंद आ गया था। तो श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। फिल्म संगीत में आज के हमारे कलाकार थे मीका सिंह, जिनके गाए हुए गीतों को आपने सुना और आप तक इस प्रोग्राम को लेकर के आया मैं, आपका रेडियो दोस्त अभिषेक तिवारी।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर। साथ ही आप हमें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे रात्रि के 11 बजे तक विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, छायांकित कार्यक्रम बस।

जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से। क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है तब।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा

चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: ना ना।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे,

सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 11:10 पर प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला का। आज इसमें थीम होगी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप सुनेंगे पहले हिंदी, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों

0: की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport.

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब हमारी आज की अंतिम प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।